0: guest we have today to discuss spirituality and to learn about religion and spirituality and its practices, we have A.V. Jayaraman sir. So, आगे बढ़ते हुए मैं बस उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में थोड़ा हमें बताएं, भला वो कहाँ हैं, क्या करते हैं, कौन है वो. So, Jayaraman sir, you are most welcome in this beautiful, lovely morning. And I would request you to please talk to our listeners.
1: Yeah, I am Jayaraman from Bangalore. So I originally I belong to Bombay during my school and college days, and then I completed my engineering in Bombay and started my career from Tata Electric, and then moved on to Middle East for my further career, and I would stay in Middle East, Saudi, Bahrain, UAE, Qatar, Muscat. Ultimately, from Muscat, I retired and then came and settled in Bangalore. So, but after my retirement, I chose another career, that is, I pursued medical alternate therapy in acupuncture and acupressure. I took a master's diploma and then MD also in acupuncture, and then now I'm practicing in Satya Sai Hospital as a voluntary service. On weekly basis I go there and then practice at home also the same therapy, treating patients on voluntary service. This is my
0: profile. Good, great. तो दोस्तों आपको पता चला कि एवी जयरमन सर एक्यूप्रेशर के थ्रू भी कई सारे लोगों की मदद कर रहे हैं. चलिए तो एवी सर, हम जिस बारे में बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हमारे जीवन में पूजा यानी कि भगवान से जुड़ने का बहुत सारे तरीके होते हैं और हम लोग उसमें बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, तो हम उसको नाम दे देते हैं अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी. किसी एक भगवान के बारे में बात ना करते हुए, ये जो पूरी विधा है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मेडिटेट करना, प्रेयर करना, भगवान के ध्यान में मग्न हो जाना, अपने आप को पीसफुल करना, इसको स्पिरिचुअलिटी अगर कहें, तो हमें थोड़ा अपने वर्ड्स में स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लेन कीजिए.
1: हाँ, एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी नो ब्रॉड वर्ड बोल सकते हैं. स्पिरिचुअलिटी बचपन में कुछ अलग मीनिंग होता है. रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी बेसिकली बचपन में हमको हमारे माता पिता हमको इंट्रोड्यूस करते हैं भगवान के श्लोक बोलने के लिए. सो दैट इज वेयर वी गेट इंट्रोड्यूस टू गॉड बेसिकली. तो मदर एंड फादर आर द फर्स्ट गुरुस हु टीच यू फ्यू श्लोकास एंड इंट्रोड्यूस टू गॉड. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सुबह नाश्ते ना धो के भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं इसके सामने खड़ा हो जाओ हाथ इस करके, नहीं नो यू स्टार्ट चैंटिंग, दे विल टीच यू फ्यू श्लोकास, दैट इज स्टिल एम्बेडेड इन योर ब्रेन. बचपन में जो सीखते हैं वो काफी अस्त तक रह जाते हैं ब्रेन, तो मम्मी के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. आई रिमेम्बर गोइंग यू नो टू टेम्पल्स विद पेरेंट्स एंड देन पापा की थोड़ा गुजर गए मैं 6 साल में, तो मम्मी बिकेम माय फादर एंड मदर बेसिकली. सो आई वाज ऑलवेज ट्रैवलिंग विद माय मम्मी. तो मम्मी मुझे प्रोफेशन के लिए लेके जाती है, तो दैट वाज लिटिल हाई फॉर मी. उनके लिए ठीक होगा, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रवचन होते हैं यू नो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, स्वामी जी वहां बोलते थे

0: सोहम बोलो, सोहम बोलो, वेन एवर यू डू एनीथिंग यू टेल सोहम। सोहम का यू नो संस्कृत मीनिंग इज आई एम दैट। सी आई एम गॉड बेसिकली। तो उसको संस्कृत में सोहम बोल देते हैं। तो वो बोलते हैं, तो आप चलते टाइम सोहम बोलो, कान भरने टाइम बोल सोहम बोलो, घर में यू नो यू आर कुकिंग मदर को बोलते हैं। तो आई इवन यूज टू टीस माई मदर, अरे आप बोलते क्यों नहीं हो सोहम, रोड क्रॉस करने के टाइम भी सोहम बोलो। तो शी इज टू चाइड मी, अरे रोड क्रॉस करने नहीं बोलेगा तो कोई गाड़ी आके मार देगा मुझे। तो आई यूज टू टीस देयर, बट आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग दी डेप्थ ऑफ दैट स्टेटमेंट। एंड देन माई इम्प्लॉयर्स वॉज यू नो वेन आई वॉज द यंगेस्ट फेलो ऑफ फाइव सन्स एंड वन सिस्टर। सो आई वॉज द यंगेस्ट एंड आई वॉज 6 7 years, एंड शी इज टू रीड लॉट ऑफ आध्यात्मिक टेक्स्ट यू नो अबाउट ऑल द सेंट्स। आई यूज टू जस्ट स्लीप इन हर लैप जस्ट, एंड दिस वेंट ऑन इन टू माई सबकॉन्शियस माइंड। दैट इज वॉट इज वंडरफुल। आई वॉज नॉट लिसनिंग बट ड्यूरिंग स्लीप इट हैज गॉन सबकॉन्शियस माइंड, एंड ऑल दी स्टोरीज आई रिमेंबर इवन नाउ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, ऑल दो सेंट्स का लाइफ हिस्ट्रीज। सो दिस हैज हेल्प मी अ लॉट यू नो बिकमिंग रिलीजियस आप कह सकते हैं, विच हेल्प मी इन माई लेटर लाइफ। देन दैट इज यू नो स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट लेसन्स जो है, इट वॉज वेरी यूजफुल इन माई लाइफ। देन कॉलेज डेज में आई गॉट एसोसिएटेड विद मिशन, विद रिलीजियस मिशन वेयर दे वर टीचिंग भगवद गीता। दैट वॉज अनदर ग्रेट ब्लेसिंग। भगवद गीता और स्पिरिचुअलिटी के काफी कनेक्शन हैं। प्रेयर एक्चुअली इज नो इट इज आध्यात्मिक शुद्धता बोलते हैं ना, इट इज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड। इनिशियली बचपन में तो प्रेयर ऐसे ही होता है कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलना है, आई वॉन्ट टू बी यू नो आई वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स। इट स्टार्ट लाइक दैट यू नो, एंड देन प्रेयर स्टार्ट विथ चैंटिंग ऑफ यू नो ओम। ओम जो सिलेबल है
1: राइट सर,
0: तीन अक्षर का, आ ओ एन एम, एंड दैट रियली गिव्स यू द सोलेस एंड यू नो पीस इन द माइंड। एंड समथिंग सरप्राइजिंग व्हेन वी गो टू टेंपल इज वी सी द गॉड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड वी क्लोज अवर आईज। व्हाई वी हैव कम
1: बिल्कुल
0: ऑल द वे टू सी द टेम्पल, हम
1: करेक्ट
0: अपने आप को आंख बंद कर देते हैं। दैट इज बिकॉज वी रिफ्लेक्ट गॉड इन अवर ओन कॉन्शियंस। वी प्रे फॉर द वेल बीइंग ऑफ द फैमिली। इट स्टार्ट्स विथ पर्सन, देन फैमिली, देन कम्युनिटी। इट गोस ऑन एक्सपैंडिंग। तो बचपन में सिर्फ हमको हमको बोला जाता है अरे आंख बंद कर लो, इवन लिटिल बिट स्लाइटली खोल के देखते हैं क्या होता है, देखें। सो बट लेटर ऑन व्हेन वी स्टार्ट स्टडीइंग और नोइंग अबाउट गॉड, स्पिरिचुअलिटी, द ऑल स्पिरिचुअल टेक्स्ट लाइक भगवद गीता, एंड वी देन वी गेट टू नो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द होल थिंग। सी हमारे बॉडी, हमारे जिस्म होते हैं, माइंड होते हैं, इंटेलेक्ट होते हैं, बुद्धि, मन बुद्धि, एंड देन वी आर व्हेन वी चैंट ओम सिंसियरली एंड यू नो क्लोजिंग अवर आईज, यू एक्चुअली रिफ्लेक्ट गॉड इन योर ओन अंतरात्मा।
1: राइट सर, यहां पर एक और बात भी आ जाती है सर, आप बोल रहे थे तो मेरे को ख्याल आया, आपने बोला मंदिर में जाके हम आंखें बंद कर लेते हैं और वी विश फॉर द वेल बीइंग ऑफ एवरीबॉडी, बट मुझे लगता है मंदिर में हम गए हैं, ऐसा ही मेरे दिल में विचार आया, थॉट आया सर, मंदिर गए हैं, भगवान के दर्शन करने गए हैं, तो हम आंखें खोल के उनका दर्शन क्यों नहीं करते, हम आंखें क्यों बंद कर लेते हैं, जबकि हम गए वहां पर उनका दर्शन करने के लिए ही तो हैं। तो हमें भर भर के उनको देखना चाहिए, उनकी मूर्ति को प्यार से सराहना चाहिए कि क्या है, कैसे हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितने पावरफुल हैं। वी शुड कीप ऑन डूइंग दैट इंस्टेड वी जस्ट क्लोज अवर आईज। मुझे समझ में नहीं आया।
0: दैट इज द ब्यूटी ऑफ द होल थिंग, यू नो, गॉड इज गाइडिंग यू टू लुक एट यूरसेल्फ। तुम अपने अंतरात्मा को देखें।
1: अरे तो सर वो घर पे भी तो आके कर सकते हैं, उधर ही क्यों?
0: क्योंकि बाहर जो है, बाहर जो, यस, यू आर लुकिंग एट गॉड, यू आर लुकिंग एट गॉड एंड आपने देख लिया काफी, देन व्हाट इज नेक्स्ट, यू नो, देन यू कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड विद द सराउंडिंग, यू नो,
1: ओके,
0: जो आजू बाजू में को इधर उधर हिल रहे हैं, चल रहे हैं। So by closing your eyes, you are able to concentrate on the God and your prayers, and then slowly you are looking inwards.
1: All right.
0: क्योंकि बाहर की दुनिया इतना हलचल मची हुई है, तो अब अंदर की देख, that is what they and all the scriptures say, you know, look at inside, turn your direction inside. बाहर की दुनिया तो मेटीरियलिस्टिक है, इट इज नॉट गिविंग यू फुल सोलेस, यस, इट गिव्स यू मोर डिजायर्स रादर देन, यू नो, एंड देन मन अशांत हो जाते हैं, अरे हमको वो चाहिए, ये चाहिए। वेयर एज व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट इनसाइड दैट पीस, स्पेशली व्हेन यू चैंट ओम, वी जनरली हैव मेडिटेशन सेशन इन द मॉर्निंग, सो उसमें वही होता है कि आप चैंटिंग करो, ओम ओम रेवरबरेट करो, चैंट लाउडली क्लोजिंग योर आईज, दिस इज व्हाट गिव्स यू सोलेस, पीस ऑफ माइंड।
1: ऑलराइट,
0: अल्टीमेटली वी वांट टू बी हैप्पी, इज इट नॉट, वी वांट टू बी हैप्पी,
1: एब्सोल्युटली,
0: यस, हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड, दैट्स व्हाट द स्क्रिप्चर्स से, हैप्पीनेस इज इनसाइड।
1: ओके, आई गेट इट,
0: या।
1: तो दोस्तों, जाहिर से बात है, हमको मंदिर में जाकर आंख बंद करनी इसलिए होती है कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो भी ईश्वर का स्वरूप हमने देखा वो हमारी आंखों में बसा रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक भजन का आनंद लें, फिर वापस आते हैं एवी सर के पास।

0: बहुत सुंदर भजन। एवी सर, आगे बढ़ते हुए इस पूरे प्रोग्राम को अगर आज के प्रस्पेक्टिव में बात करें, थियोरिटिकल नहीं थोड़ा प्रैक्टिकल बात करें, तो आज का प्रस्पेक्टिव में आप जैसे प्रबुद्ध पढ़े लिखे अनुभवी मनुष्य भी यहां पर मौजूद हैं और हमारी इस दुनिया में बहुत छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, युवा भी मौजूद हैं जिनको आगे बढ़कर अपनी जिंदगी सुधारनी है, अच्छी जीनी है। अब हमारा फर्ज अपने आप से बन जाता है कि हम उनको कुछ सिखाएं, कुछ बताएं। तो स्पिरिचुअलिटी को और रिलीजन को, सर स्पिरिचुअलिटी को और रिलीजन को आप यूथ के लिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
1: एक्चुअली वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ। अर्लियर टाइम्स में क्या होता था कि ग्रैंड पेरेंट्स वर स्टेइंग टुगेदर, इट वाज अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। बट आजकल बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर और द जॉब अपॉर्चुनिटीज, चिल्ड्रन गेट अवे फ्रॉम द पेरेंट्स एंड दे आर स्टेइंग अलोन, इट्स बिकम अ न्यूक्लियर फैमिली। तो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, दे आर जस्ट सेंट टू द स्कूल एंड स्कूल डज नॉट गिव दिस सॉर्ट ऑफ एजुकेशन। तो हमारे बच्चे को पहले ये आध्यात्मिक नॉलेज को एक्सपोज करना है, प्रेयर्स। सो दैट्स द रीजन आफ्टर कम ऑफ कोर्स दैट वाज आवर ड्रीम आल्सो दैट व्हेन एवर वी यू नो Whenever we get time, we have actually started a class called Bal Vikas class in our own home, and all the children from around our layout, they come here on every Sunday, and we teach them slokas, we give them some bhajans, and then we give value based stories. So these children now become so wonderful. The parents are amazed and surprised that children have, their attitude has changed. They are doing namaskar to their children before going to school. So all these values we are trying to inculcate in children. The similar way we are planning to do it for the youth also. Once they become teenagers, by teaching them in the next level, they are getting graduated from all these bhajans, slokas. Next level is teaching them, adhyatmic books, basically. Ramayana, Mahabharata ke kahaniyan, Bhagavad Gita introduce karna hai. So that will make them fit for entering into their real life of getting a job and then getting married, and because that is the life, middle age life jo hai, you should be prepared mentally to handle all these situations. So Bhagavad Gita is one of the best. I don't know whether you know the background of Bhagavad Gita, to uske bare mein main thoda baat kar sakta hu. Bhagavad Gita started because Arjuna was one of the best warriors, in the Mahabharata war. And when he lands in the, they all decided that they should have a dharmic war. But when he comes to the battlefield, he puts down his weapons and says, I cannot fight. I am seeing all relatives, my guru, my pitamaha. So Arjuna takes a huge lecture, 18 chapters, in teaching Arjuna what is his role as a chief archer of the Pandava, this thing. So this is a very beautiful explanation given by Krishna and educating him what is you are supposed to do. And the whole philosophy of basically the what I mean a person, how you have to do bhakti, how you have to do karma, your duty karma nevadigaraste is one of the famous this thing. And the philosophy of, you know, the facing the material world, you know, there is one beautiful sloka where he says that if you do this, yeah, it is your downfall, you know. It's called, you know, the, beautifully the verses is in, let this, Dhyayate Vishayam Punsaha, Sangaste Shupajayate, Sangat Sanjayate Kamaha, Kamat Krodo Vijayate, Krodat Bhavati Sammoha, Sammoha Smriti Vibrama. In short, this is, when you look at the world,

0: If you even snatch a mobile from a youth, it causes disaster. He becomes upset. He forgets what is good, what is bad. Even he can hurt his own relatives, parents. So this is what beautifully explained by Bhagavad in Krishna, Lord Krishna, in the simple verse of this which I narrated. So this youth requires a wonderful explanation of the whole thing and how to handle the situation. Stress. Aajkal ke stress ke liye kaise fight karna hai?
1: All right, sir. तो दोस्तों आपने जाना कि यूथ को हम किस तरीके से, यंग जनरेशन को हम किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी के पास ला सकते हैं. चलिए यहाँ पर रुकते हैं, विचार करते हैं.
0: दे शुड बी टॉट बेसिकली, या दे शुड बी टॉट. आवर स्क्रिप्चर्स आर फुल ऑफ यू नो एजुकेशन फॉर द यूथ एंड द जनरल पब्लिक, हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर यू नो स्टाइल एंड मेंटल पीस. Yeah, ultimately we are all wanting to become happy and peaceful. How? By controlling your own mind, intellect. English may be a wonderful statement. Aap English language koi dekh lijiye. If you say it is my book, my pen, my laptop, my mobile, anything you call mine is not me. We should try to understand. My body, my mind, my intellect is not me. Okay, this me, who is this me? This me is something who is different, who is observer of this all, you know. Ye antakarana, the soul bolte hai na, atma bolte hai, brahman bolte hai. You can give any name to this, but this is that inner consciousness which is observing all our activities. वो कॉन्शियंस बोलते हैं ना, हमारा अंतकरण मानता नहीं है. हाउ योर कॉन्शियंस इज अलोविंग टू डू दिस, दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट. आत्मा को पहचानना है, दैट इज कैन बी डन ओनली विथ स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड प्रैक्टिस. सो वी हैव टू टीच द यूथ द वैल्यूज ऑफ ऑल दिस. सो दिस इज व्हाट इज लैकिंग इन अवर एजुकेशनल करिकुलम. They teach you only electronics, artificial intelligence. Yes, but how to lead a life?
1: तो आइए दोस्तों एक भजन का आनंद लें, फिर आगे बढ़ें.

0: जयरमन सर, प्लीज मुझे बताइए कि स्पिरिचुअलिटी के हम आज की डेट में फायदे क्या ले सकते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल बातें बहुत हैं, सब है, बहुत अच्छी बात है, भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा पढ़ा दिया, पर उसका फायदा क्या? आज के जमाने में लोग बेनिफिट में इंटरेस्टेड हैं। सो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, मेडिटेशन, गीता, इनके बेनिफिट्स बताइए, बेनिफिट्स, टेंजिबल बेनिफिट्स, टेंजिबल, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड है कि सर मैं एक घंटा लगाऊंगा मेडिटेशन।
1: नहीं, मेडिटेशन कैन बी वेरी शॉर्ट ऑल्सो, बट सुबह सुबह उठ के आपको मेडिटेट करना है।
0: उसका फायदा क्या सर?
1: मेडिटेशन में फायदा इसीलिए है कि अंतकरण शुद्धि हो जाते हैं। सी प्रोबेबली व्हेन यू सिट एंड मेडिटेशन इज नॉट वेरी इजी बेसिकली, बिकॉज द मोमेंट यू क्लोज योर आईज आपके मन में हजार विचार आते हैं। इट्स अ फ्लो ऑफ थॉट्स, ए फ्लड ऑफ थॉट्स। आप सरप्राइज हो जाएंगे, एक मिनट में इट विल बी थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स फ्लोइंग इन द माइंड द मोमेंट यू वॉन्ट टू सिट एंड मेडिटेट, लेट अस से। सो इसीलिए हम ओम चैंटिंग चालू करते हैं। ओम चैंटिंग वी डू अराउंड वॉट एवर नंबर ऑफ टाइम्स, 20-21 टाइम्स, एंड देन द मोमेंट यू फिनिश दिस ओम चैंटिंग द माइंड इज लिटिल रेस्टलेस, इट द फ्लो ऑफ थॉट्स स्टार्ट्स, यू नो, हम कल क्या करना है, आज क्या करना है, अभी जाके पढ़ना है, ये करना है। बट यू बिकम एन ऑब्जर्वर, यू ऑब्जर्व द थॉट्स, डोंट ब्लॉक द थॉट्स, लेट द थॉट्स फ्लो, बट यू बिकम एन ऑब्जर्वर, यू डिटैच यूर सेल्फ फ्रॉम दैट थॉट्स, एंड इट इज लाइक यू नो हाउ यू आर स्टैंडिंग इन ए बैंक्स ऑफ द रिवर and you are observing the river flowing, you are not a part of the river, but you are observing the flow of river, standing on the banks as a observer. This is what is required. When you start observing in the flow of thoughts, the thought flow starts reducing, and kam hote hote hote hote thoughts kam ho jayenge. Then you still keep observing, and that peace, inner peace of mind. So the scriptures or the spirituality or the masters, the gurus, they are only stressing this, that thoughts ko kam karo, or once the thought becomes zero, which is a very very difficult situation. The thoughtlessness, you observe that silence. The silence, you try to extend that silence, you know, where there are no thoughts. It is difficult to practice. I really, for the youth especially, because they are hyper now. They are bombarded with all this social media, mobile, laptop, especially these artificial intelligence, and people in the IT, they are glued to this laptop for hours together. It is difficult, but systematic practice can be done. The best time is early morning, whatever time is possible, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, when the atmosphere is quiet, you sit in a quiet corner and do this meditation. There are methods, there are some methods which we follow also. You keep a jyoti, you know, you can light a lamp and you observe that lamp with devotion, and slowly that lamp, you take the lamp, the jyoti, into your body, you know, take it into your body, slowly take that jyoti mentally to every part of your body. That's called the body relaxation. ये ज्योति को हम पूरे बदन में एक एक अंग, एक एक पार्ट्स को ये करते हुए, दिस ज्योति इज टेकन टू दैट एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, एंड दैट पार्ट बिकम्स रिलैक्स्ड, एंड देन ऑब्जर्व द साइलेंस। दिस इज पॉसिबल, बट सिस्टमैटिक ट्रेनिंग systematic effort is required by the present youth to make them more peaceful and handle the situation more effectively.
0: तो आइए दोस्तों फिर एक भजन को सुनते हैं और विचार करते हैं जो अभी जयरमन सर ने हमें बताया।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। जब सपना जिद बन जाए, एक कहानी जिसने दुनिया बदल दी। स्वागत है आपका दोस्तों एक और नई कहानी में। आज की कहानी सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं, आज की कहानी है जुनून की, जिद की, और एक ऐसे इंसान की जिसे सबने मना किया लेकिन उसने खुद को कभी मना नहीं किया। चलिए आपको लेके चलते हैं थोड़ा पीछे। एक आदमी था, सपना था फिल्म बनाने का, लेकिन प्रॉब्लम उसे फिल्म मेकिंग आती नहीं थी, ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग, स्क्रिप्ट वो भी नहीं, बस कुछ स्केचेस, कुछ ड्राइंग्स, मतलब आज की लैंग्वेज में बोले तो विजन तो था लेकिन सिस्टम नहीं था। अब आप सोचिए, आजकल भी लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस नहीं है तो काम कैसे मिलेगा, और यहां बिना एक्सपीरियंस के एक बंदा फिल्म बनाने निकला था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने डिसाइड किया इस फिल्म में ना गाने होंगे, ना फाइट्स होंगी, ना रोमांस होगा। अब इंडियन सिनेमा का बेसिक फॉर्मूला क्या है हम सब जानते हैं, थोड़ा प्यार, थोड़ी मार, थोड़ा डांस। यहां ये सब कुछ भी नहीं था दोस्तों, ये आज का रिस्क नहीं था, ये उस जमाने का रिस्क था जब लोग एक्सपेरिमेंट से डरते थे। और फिर कास्टिंग की बारी आई। आप एक्सपेक्ट करेंगे बिग स्टार्स, एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, एमेच्योर एक्टर्स लिए, कुछ थिएटर वाले और एक फिल्म लीड। सब रेडी हो गए, वो उनसे मिला पड़ोसी की छत पर। जी हाँ, बंदा कैजुअली छत पर दिखा और ये फिल्म मेकर बोला ये परफेक्ट है। अगर आज होता तो लोग बोलते इंस्टाग्राम हैंडल क्या है इसका, कितने फॉलोअर्स हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ आंखों से टैलेंट पहचाना जाता था। और एक रूल, सेट पर कोई मेकअप नहीं करेगा। अब एक्टर सोच रहे होंगे हम आए क्यों हैं, लेकिन उसका विजन क्लियर था, रियल लोग, रियल इमोशंस, रियल कहानी। और शूटिंग स्टूडियो में नहीं, आउटडोर रियल लोकेशंस पर। उस जमाने में ये ऑलमोस्ट एक रिबेलियन जैसा था, एक रेवोल्यूशन जैसा था। और सिनेमाटोग्राफर कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं, 21 साल का एक स्टिल फोटोग्राफर जिसे फिल्म कैमरा चलाना भी नहीं आता था। तो दोस्तों अब आप ऑनेस्टली बताओ, अगर आप उस टाइम पे होते तो क्या बोलते, ये तो पक्का फ्लॉप है, यही ना? और वही सबने बोला, ये डिजास्टर है, ये फिल्म कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, ये सपना टूट जाएगा। लेकिन सपना जब जिद बन जाए ना, तो दुनिया की आवाज धीमी पड़ जाती है दोस्तों। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पैसे। कोई प्रोड्यूसर नहीं, कोई फंडिंग नहीं, लेकिन सपना, सपना तो जिंदा है। तो उसने क्या किया, अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लिया और शूटिंग शुरू की। थोड़ा शूट हुआ, पैसे खत्म, अब क्या करते, छोड़ दो। नहीं, उसने नहीं छोड़ा, अपना ग्रामोफोन रिकॉर्ड कलेक्शन बेच दिया। सोचिए आपकी फेवरेट चीजें, आपका पैशन,
सब बेचकर सिर्फ एक सपने के लिए आप चलते जा रहे हैं, फिर शूटिंग, फिर पैसे खत्म। अब तो बस हो गया ना, आपको यही लगेगा, लेकिन नहीं, यहां कहानी और फिल्मी हो जाती है। उसने अपनी वाइफ के गहने तक गिरवी रख दिए। ये सिर्फ लाइफ स्ट्रगल नहीं है दोस्तों, ये सैक्रिफाइस है। और ये सिर्फ उसका नहीं, पूरे परिवार का सपना बन चुका था। फिर शूटिंग, फिर पैसे खत्म, और इस बार सब रुक गया। एक साल तक कुछ नहीं, कोई होप नहीं, कोई पैसा नहीं, बस एक अधूरी फिल्म और एक आदमी जो शायद थोड़ा थक गया था, लेकिन रुका फिर भी नहीं। जिंदगी का सबसे टफ फेज कौन सा होता है आप जानते हैं? आप सब सोच रहे होंगे जब आप फेल हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, जब आप वेट करते रहते हो और फिर भी कुछ नहीं हो रहा होता। वो एक साल सिर्फ इंतजार था, और फिर एक मिरेकल हुआ। स्टेट गवर्नमेंट ने फंडिंग दी, लेकिन ट्विस्ट सुनो, उन्हें लगा ये फिल्म नहीं एक डॉक्यूमेंट्री है रूरल डेवलपमेंट पर, क्योंकि टाइटल ऐसा लग रहा था। दोस्तों, कभी कभी लोग गलत समझकर भी सही काम कर ही देते हैं, और इस बार उस गलत समझ ने एक मास्टरपीस को जन्म दिया। फिल्म कंप्लीट हुई, 3 साल लगे, स्ट्रगल, सैक्रिफाइस, डाउट, सब कुछ था, और फिर रिलीज हुई पाथेर पंचाली। इस फिल्म के क्रिएटर, खैर नाम की जरूरत नहीं क्योंकि हम सब जानते हैं, द ग्रेट सत्यजीत रे। दोस्तों, रिलीज के बाद क्या हुआ? लोग चुप हो गए, क्रिटिक्स हैरान हो गए, और दुनिया ने कहा ये जीनियस है। जो लोग बोल रहे थे डिजास्टर है, वही लोग बोलने लगे मास्टरपीस है। दोस्तों, डिफरेंस क्या था? फिल्म नहीं बदली, लोगों की नजर बदल गई। और आज की सबसे बड़ी बात, अगर सत्यजीत रे ने हार मान ली होती ना, तो क्या होता? ना ये फिल्म होती, ना ये कहानी होती, और ना ही दुनिया को पता चलता कि असली सिनेमा क्या होता है। दोस्तों, हर किसी के पास एक पाथेर पंचाली होती है, एक सपना जो थोड़ा अलग होता है, जिसे लोग समझते नहीं, जिसे लोग रिस्की भी कहते हैं। आजकल हम सब क्या करते हैं? आइडिया आया, गूगल किया, इज दिस अ गुड आइडिया, दो लोग बोलते हैं नो, और हम बोलते हैं छोड़ो यार, कौन चलेगा इस पे आगे। अगर रे सर भी गूगल करते तो क्या होता? आंसर आता हाईली रिस्की, नॉट रिकमेंडेड, और कहानी वहीं खत्म। लेकिन आज की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आज की कहानी सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं थी, ये एक रिमाइंडर थी कि सपने परफेक्ट नहीं होते, कंडीशंस भी परफेक्ट नहीं होती, और लोग भी कई बार आपको सपोर्ट नहीं करते। सब जगह से नॉन रेकमेंडेशन का ही कमेंट आता है, लेकिन अगर आप रुकते नहीं, अगर आप कन्विंस्ड हैं, तो कहानी बन जाती है, मिसालें बन जाती हैं, और हिस्ट्री क्रिएट होती है। इसी के साथ ये आज की इंस्पायरिंग फिल्मी और यादों से जुड़ी कहानी यहीं समाप्त करते हैं। सपने देखते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, और हमेशा याद रखिए, जिद अगर सच्ची हो तो कहानी दुनिया लिखती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: हर चीज का जुगाड़ एक्सपर्ट, ये बंदा बोलता है तू टेंशन मत ले, जुगाड़ हो जाएगा। और लास्ट में जुगाड़ ये होता है, चल कल देखते हैं। What?

0: एक आवाज जो पर्दे के पीछे थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कहानी के साथ। आज हम आवाजों की कहानी सुनेंगे, तो शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए, एक आवाज है और फिर एक और आवाज है और फिर एक तीसरी आवाज है। अब मैं आपसे पूछती हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि जो गाना हम सुनते हैं उसके पीछे कितनी कहानियां होती हैं? क्योंकि दोस्तों, हर सुर के पीछे एक स्ट्रगल होता है, एक कहानी होती है, एक इंसान होता है। आज की कहानी भी ऐसी एक आवाज से शुरू होती है। एक ऐसा वक्त था जब फिल्म्स में एक्टर्स खुद गाते थे। जी हाँ, ना कोई प्लेबैक सिंगर, ना कोई रिकॉर्डिंग मैजिक। जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही गा रहा है, और उस जमाने में एक नाम था, अशोक कुमार। उन्होंने कई गाने गाए और फिर उन्हीं गानों को एक और आवाज ने अमर कर दिया। कौन? द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ ऑल टाइम्स, किशोर कुमार। उनकी आवाज, उनका अंदाज आज भी दिल को छू जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी ना अशोक कुमार की है ना किशोर कुमार की। आज की कहानी है उस इंसान की जिसने इन आवाजों को जन्म दिया। एक कंपोजर, एक क्रिएटर, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक पाइनियर। उनका नाम था सरस्वती देवी, लेकिन ये नाम उन्हें दिया गया था। उनका असली नाम था खुर्शीद मिनोचर होमजी। और दोस्तों, यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक डिसीजन जो बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें हायर किया गया था बॉम्बे टॉकीज ने, उस जमाने का एक बहुत बड़ा स्टूडियो। एक सपना, एक मौका। लेकिन सब लोग खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो एक औरत थी। और सिर्फ औरत नहीं, एक ऐसे बैकग्राउंड से थी जहां म्यूजिक इंडस्ट्री में आना एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता था। बोर्ड मेंबर्स ने कहा, ये ठीक नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी के खिलाफ है, ये काम उनके लिए नहीं है। दोस्तों सोचिए, टैलेंट होने के बाद भी सिर्फ इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि आप एक औरत हो और आपका सरनेम मैच नहीं कर रहा। लेकिन हर कहानी में एक इंसान होता है जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होता है, और यहां भी वही हुआ। यहां वो इंसान थे हिमांशु रॉय। उन्होंने कहा, नहीं, यही हायर होंगी। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन और क्लियर विजन, लेकिन एक कंडीशन के साथ, नाम बदलना पड़ेगा। और खुर्शीद बन गई सरस्वती देवी। दोस्तों, ये सिर्फ नाम चेंज नहीं था, ये एक आइडेंटिटी का कॉम्प्रोमाइज था। लेकिन कभी कभी अंदर का जुनून बाहर के नाम से बहुत बड़ा होता है। और इस तरह सरस्वती देवी बनी इंडिया की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर। दोस्तों, आज जब हम फीमेल कंपोजर्स की बात करते हैं तो वो एक नॉर्मल बात लगती है, लेकिन उस वक्त ये रेवोल्यूशन था। कुछ सालों बाद एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। लीड एक्ट्रेस बीमार थी, उन्हें जोर की खांसी थी और वो गाना नहीं गा पा रही थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म रुक नहीं सकती थी, टाइम नहीं है। सोल्यूशन, क्या करें क्या करें क्या करें? दोस्तों, यहीं से आता है एक ऐसा मोमेंट जिसने सिनेमा की हिस्ट्री बदल दी। हिमांशु राय ने कहा, एक काम करते हैं, गाना कोई और गाएगा, एक्ट्रेस सिर्फ लिप सिंक करेगी। और गाएगा कौन? सरस्वती देवी। पर्दे के पीछे से वो गाती रही और स्टेज पर एक्ट्रेस उस आवाज को जीती रही। दोस्तों, ये था इंडिया का पहला प्लेबैक सिंगिंग मोमेंट। सोचिए, आज हम जितने भी गाने सुनते हैं, लता मंगेशकर जी से लेकर किशोर कुमार जी से लेकर रफी साहब से लेकर अरिजीत सिंह तक, सबकी फाउंडेशन उस एक मोमेंट ने डिफाइन की। कितनी अजीब बात है ना, आवाज उनकी लेकिन चेहरा किसी और का, टैलेंट उनका लेकिन क्रेडिट हमेशा सामने वाले को मिलता। लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं, उन्होंने कंप्लेन नहीं की, उन्होंने बस क्रिएट करना कंटिन्यू रखा। और दोस्तों यही असली ग्रेटनेस होती है। जिंदगी में कई लोग होते हैं जो फ्रंट में नहीं होते, स्पॉटलाइट में भी नहीं होते, लेकिन उनके बिना कहानी अधूरी होती है। जैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक राइटर, एक टेक्नीशियन और कभी कभी एक आवाज जो पर्दे के पीछे होती है। आजकल क्या होता है, रील बनानी है तो पहले कैमरा सेट, फिर लाइटिंग, फिर फिल्टर, फिर कैप्शन, जस्ट बीइंग नेचुरल। और उस जमाने में ना फिल्टर ना ऑटो ट्यून, सिर्फ प्योर अनफिल्टर्ड टैलेंट। दोस्तों आज जब आप कोई गाना सुनो ना, तो सिर्फ सिंगर को याद मत करना, थोड़ा सा रुक कर सोचिएगा कि इसके पीछे कौन हो सकता है, किसने कंपोज किया, किसने चांस दिया, किसने रिस्क लिया और किसने पर्दे के पीछे रहकर हिस्ट्री लिख दी। क्योंकि हर आवाज जो सुनाई देती है ना, उसके पीछे एक और आवाज होती है जो कभी सुनाई नहीं देती, बट जिसके बिना वो कहानी अधूरी होती है, वो आवाज अधूरी होती है। इसी के साथ आज का ये सोलफुल, म्यूजिकल और दिल को छू लेने वाली कहानी यहीं समाप्त करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त, और अगली स्टोरी तक के लिए गाने सुनते रहिए, गुनगुनाते भी रहिए और महसूस भी करते रहिए।
1: ये लड़ी है लम्हों की, झालर बना ली है इसकी, कभी पहन लेता हूं कभी उतार देता हूं, बस यही पेश कर रहा हूं। नाम पता नहीं, रखा भी नहीं, जानता हूं वक्त की गर्द में डूब जाएगा, गुम हो जाएगा, जो याद रहेगा सिर्फ इतना।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: ऑनलाइन एक्टिव, रिप्लाई इनएक्टिव। ऑनलाइन ग्रीन डॉट फुल ऑन है पर रिप्लाई जीरो। ऐसे लोग मैसेज नहीं पढ़ते, सोच के रिप्लाई डिले करते हैं।

पादुकों ने। नाम सुनते ही एक ही कहानी, एक ही चेहरा सामने आता है। आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछती हूं, अगर मैं बोलूं पादुकों ने तो आपके दिमाग में कौन आता है? जी हां, मुझे पता है आप सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, दीपिका पादुकों ने, द ग्रेसफुल ब्यूटिफुल सुपरस्टार। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी उनकी नहीं, आज की कहानी है एक और पादुकोने की, जो स्क्रीन पर कम दिखे लेकिन सिनेमा के दिल में हमेशा बस गए। एक ऐसा नाम, गुरुदत्त, जिनका असली नाम था वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोने। और बिलीव कीजिए, इनकी कहानी इतनी फिल्मी है कि अगर कोई उसे लिखता और उस पे फिल्म बनती तो लोग कहते ओवर फिल्मीनेस हो गई भाई। लेकिन ये सब कहानी नहीं, उनका जिया हुआ सच है। सीन वन, एक अजीब सी मुलाकात। सोचिए, एक फिल्म सेट है, दो यंग लड़के, दोनों नए, एक एक्टर दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर, दोनों पहली बार मिल रहे हैं, एकदम फॉर्मल सी बात हो रही है, हेलो हाय कैसे हो, द फॉर्मल एक्सचेंज। और फिर जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं तो दोनों एक साथ रुकते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एक साथ एक दूसरे की शर्ट की तरफ पॉइंट करते हैं। क्यों? धोबी ने कपड़े उल्टे दे दिए थे, उनकी शर्ट्स एक्सचेंज हो गई थी और बस दोनों हंस पड़े, ऐसे हंस पड़े कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन फ्रेंडशिप में बदल गई और फिर एक प्यारा सा हग। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स इतनी सिंपल गलतियों से शुरू होती हैं। एक प्रॉमिस जो हिस्ट्री बन गया, उसी दिन दोनों ने एक दूसरे से एक प्रॉमिस किया। एक्टर बोला, कल को अगर मैं प्रोड्यूसर बना तो तुझे डायरेक्टर बनाऊंगा, और असिस्टेंट डायरेक्टर बोला, कल को अगर मुझे डायरेक्शन मिला तो मेरी पहली फिल्म का हीरो तू होगा। अब ऑनेस्टली बताओ, ऐसे प्रॉमिसेस हम सब करते हैं, भाई तू सेटल हो जा फिर देख, कल को बड़ा आदमी बनना याद रखना, लेकिन कितने लोग निभाते हैं? दोस्तों, इन दोनों ने ये प्रॉमिस निभाया, और वो एक्टर कौन था? गेस कीजिए, सोचिए सोचिए, द ग्रेट देवानंद। और वो असिस्टेंट डायरेक्टर कौन था? खैर, इसमें कोई गैसेस नहीं, हमारे अपने द ग्रेटेस्ट गुरुदत्त साहब, और उनकी फिल्म बाजी। और रिजल्ट ऑफ कोर्स एक ब्लॉकबस्टर, देवानंद सुपरस्टार बन गए और गुरुदत्त एक लेजेंड बनने की राह पर चल पड़े। मैजिक ऑफ टीम वर्क इसे कहते हैं दोस्तों। गुरुदत्त सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं थे, वो एक आर्टिस्ट थे जो लोगों को पहचानते थे, टैलेंट को समझते थे और फिर एक ड्रीम टीम बनाते थे। एक दिन शूटिंग चल रही थी, एक सीन था और गुरुदत्त को वो पसंद नहीं आ रहा था। वो डिस्कशन कर रहे थे, ये सीन वीक है, प्रॉब्लम्स हैं, खराब है, सही नहीं जा रहा। तभी एक यंग लड़का जो बस सेट पर था आगे आता है और बिना परमिशन अपनी बात बोल देता है। अब ऐसे सर्कमस्टांसेस में नॉर्मली क्या होता है, हम सब जानते हैं, कौन हो तुम भाई, चुप रहो। लेकिन गुरुदत्त ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सुना, और सिर्फ सुना ही नहीं, समझा, और वो तुरंत बोले, तुम मेरी नेक्स्ट फिल्म लिखोगे। वो लड़का था अबरार अलवी। और फिर जो फिल्म्स आईं, वो हम सब जानते हैं कि सिनेमा के आर्काइव्स की जेम्स थी और आज भी हैं। प्यासा, कागज के फूल, चौधवी का चांद और साहेब बीवी और गुलाम। दोस्तों, ये सिर्फ फिल्म्स नहीं, जैसे मैंने कहा, ये इमोशंस हैं, क्लासिक्स हैं, हिस्ट्री है। अब सुनते हैं एक और कमाल की पार्टनरशिप के बारे में, वीके मूर्ति जी, एक यंग सिनेमाटोग्राफर जिन्होंने एक टेक्निकल शॉट सजेस्ट किया और उसे एक ही टेक में परफेक्ट कर दिया। गुरुदत्त बहुत इंप्रेस हुए और फिर हिस्ट्री बन गई,
दोनों ने मिलकर इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक विजुअल्स क्रिएट किए, जैसे वो सनबीम शॉट, जी हां कागज के फूल का वो लेजेंडरी क्लाइमैक्स, प्यासा जहां गुरुदत्त की सिलहूट लाइट के अगेंस्ट होती है, एक सिंबल बन जाती है, एक फीलिंग बन जाती है। दोस्तों ये सिर्फ शूटिंग नहीं थी, ये पेंटिंग्स थी रोशनी और अंधेरे की, ब्लैक एंड व्हाइट का जादू। आज हम कलर सिनेमा के आदि हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट में इतनी गहराई से क्रिएट करना वो आर्ट था, लाइट और शैडो का खेल था, इमोशंस को बिना डायलॉग के दिखाना, ये सब गुरुदत्त और उनकी टीम ने मास्टर किया। ये कहानी सिर्फ एक डायरेक्टर की नहीं है, ये कहानी है उन दोस्तियों की, उन ट्रस्ट की और उन टैलेंट्स को पहचानने की। एक धोबी की गलती, एक छत पर मिलना, एक अननोन राइटर की हिम्मत और एक सिनेमाटोग्राफर का आइडिया। एक इंसान जो सबको चांस देता गया और एंड रिजल्ट लेजेंडरी। आजकल हम क्या करते हैं, रेज्यूम चेक करते हैं, एक्सपीरियंस चेक करते हैं, रेफरेंस चेक करते हैं और फिर बोलते हैं देखेंगे, अभी वैकेंसी नहीं है। गुरुदत्त क्या करते थे, टैलेंट देखा और सीधा चांस दे दिया। अब जब आप पादुकोने सुनो तो सिर्फ एक नाम याद मत कीजिएगा, एक कहानी याद करिएगा, एक जर्नी याद करिएगा और एक इंसान को याद करिएगा जिन्होंने सिनेमा को फील करना सिखाया। मैं हूं आपकी दोस्त और अगली कहानी तक के लिए अपने आसपास के लोगों को देखिए, हो सकता है आपके पास भी कोई नेक्स्ट गुरुदत्त हो, बस आपको पहचानने की देर है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: एक बार और सोने वाला, अलार्म बजता है उठता नहीं, दूसरा अलार्म इग्नोर, तीसरे अलार्म के बाद बस 5 मिनट और वो 5 मिनट सीधा 1 घंटा बन जाता है।

0: तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत।

बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के.जी. रस्तोगी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

नकारात्मकता। दोस्तों याद रखें कि जिंदगी हमेशा उस तरह नहीं चलती जिस तरह से हम चाहते हैं। ऐसे में चीजों को लेकर शिकायत करने के बजाय हमेशा चीजों के प्रति पॉजिटिव रवैया ही रखें। सफल लोगों को जब भी कभी जिंदगी में नेगेटिविटी घेरती है तब वो उससे अपनी पॉजिटिव सोच के जरिए बाहर निकल आते हैं। आपको भी चाहिए कि जिंदगी में हमेशा शिकायत करने के बजाय समस्याओं का समाधान ढूंढें, उनसे निपटें और बस आगे बढ़ें। निगेटिविटी से लड़कर ही आप सफल हो सकते हैं। बने रहिए आरजे समीर के साथ। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगें, तो दोस्तों समझ लेना जीना आ गया है।

0: सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है।
1: मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से

माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर।

माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे?

जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक

0: आकर सीधा खड़ा हुआ। अब फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ। अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोको, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।
1: है समय प्रतिकूल माना, पर समय अनुकूल भी है। शाख पर एक फूल भी है, घन तिमिर में एक दिए की टिमटिमाहट भी बहुत है, एक सूने द्वार पर बेजान आहट भी बहुत है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोनू ने पूछा, किस बात से परेशान हो? मोनू ने कहा, यार घर वालों से बहुत परेशान हूँ। सोनू ने कहा, अब घर वालों ने क्या कर दिया? मोनू ने कहा, जिस दिन सोचता हूँ कि कुछ नया करूंगा, उसी दिन गेहूं पिसवाने भेज देते हैं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

दुख लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है जो पहले पानी की भाषा में आदमी की आंखों से आता है और फिर हाथों की धरोहर बन जाता है।

जो कुछ पुराना है मोहक तो लगता है, टूटने का दर्द मगर सहना ही पड़ता है। बहुत कुछ टूटता है तब नया बनता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: बच्चा घर से मार खाकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में किसी ने पूछा, बेटा पढ़ते हो? बच्चे ने कहा, नहीं, नई ड्रेस पहनकर तुम्हारी बारात में जा रहा हूँ।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: ऑपरेशन के बाद मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या अब मैं बिल्कुल रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, अरे बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ।
2: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: हमारे जल संसाधन।
2: पानी या जल प्रकृति की अनमोल देन है। जीवन और उसके अस्तित्व के लिए यह इतना जरूरी है कि इसके बिना तो जीवन ही असंभव है। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, ना होता जल तो जग जाता जल। वास्तव में जीवन की उत्पत्ति जल से ही प्रारंभ हुई है। हमारे शरीर का लगभग 65% भाग पानी ही है। दैनिक जीवन की प्रत्येक घरेलू प्रक्रिया में, जैसे खाना बनाने से लेकर पीने के पानी तक, नहाने से लेकर कपड़े धोने तक, शॉर्ट से लेकर सफाई तक, प्रतिदिन एक व्यक्ति लगभग 120 लीटर पानी खर्च करता है, जिसमें औसतन 2 लीटर पानी पीने के लिए ही चाहिए।
3: हमारे देश में पानी का सबसे अधिक उपयोग कृषि में फसलों की सिंचाई के लिए होता है। मवेशियों को भी काफी मात्रा में पानी चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न उद्योगों में भी इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक अच्छा घोलक, शीतक और सफाई का माध्यम है। बिजली बनाने का एक मुख्य साधन पानी ही है, जिसे जल विद्युत या पन बिजली कहते हैं। आज भी परिवहन का सबसे सस्ता साधन नदियों में चलने वाली नौकाएं या समुद्री जहाज ही हैं।
2: काफी हद तक मौसम भी तो पानी और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। जलाशय और खासकर विशाल सागर, जो ऊष्मा ऊर्जा के बैंक का कार्य करते हैं, जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और उसे छोड़ते हैं। इस कारण समुद्र तट के क्षेत्रों की जलवायु समुद्र से दूर के क्षेत्रों से भिन्न होती है। समुद्र तट के इलाकों में न तो सर्दी में ज्यादा सर्दी और न ही गर्मियों में ज्यादा गर्मी ही पड़ती है।
3: मगर ये पानी आता कहाँ से है, यानी इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं?
2: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पर कुल पानी का लगभग 97% महासागरों और समुद्रों में है, जो कि धरती की 3/4 सतह पर फैले हुए हैं। समुद्र का पानी खारा होता है, इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। शेष 3% ताजे जल के रूप में उपलब्ध है। इस 3% में से 2% जल हमारी पहुंच के बाहर है, क्योंकि ये जमा हुआ है। हिम के रूप में पहाड़ों की चोटियों पर, या ग्लेशियरों के रूप में, या फिर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और ध्रुवों पर बर्फ की विशाल और मोटी चादर के रूप में, जहां पेंगुइन और सील रहते हैं। इस प्रकार सिर्फ 1% जल ही नदियों और झीलों में है, या फिर भूमिगत जल जो हम कुओं और नलकूपों के द्वारा निकालते हैं, और कुछ हवा में नमी और बादलों के रूप में। इसे यूं समझें कि अगर धरती पर 9 चम्मच पानी जमी हुई बर्फ के रूप में है, तो नदियों में बहता पानी 1 बूंद के बराबर है।
3: सच कहा जाए तो पानी हमारे आसपास चारों तरफ है। यहाँ तक कि रेगिस्तान की सूखी हवा में भी पानी की आर्द्रता अवश्य होती है। हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी में कुछ न कुछ मात्रा में पानी मौजूद रहता है, और उसके नीचे भूमिगत जल।
2: आपने सही बताया, मगर पानी तो वर्षा से भी आता है।
3: हमारे खेतों की फसलों के लिए और पीने का पानी काफी मात्रा में वर्षा से ही आता है। इस विषय पर आप कुछ और बताना चाहेंगे?
2: हाँ, क्यों नहीं। हमारे देश में जलवायु की विविधताएं हैं। कहीं थार जैसे रेगिस्तान हैं, तो कहीं हिमालय जैसे बर्फ से ढके हुए पहाड़। इसलिए वर्षा में काफी असंतुलन और असमानता है। जैसे राजस्थान के जैसलमेर में 20 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा प्रतिवर्ष होती है, तो आसाम के चेरापूंजी में लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी तरह मुंबई और पुणे के बीच सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी पर भौगोलिक कारणों से मुंबई में मानसून के समय लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इतने ही समय में पुणे में लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तभी तो किसी कवि ने कहा है, भारत तेरी अजब कहानी, दो कोस पर बदले पानी और 100 कोस पर वाणी।
3: फिर भी हम वर्षा के मामले में भाग्यशाली हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में औसत प्रतिवर्ष 115 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो विश्व के अन्य भागों की तुलना में बहुत अधिक है। भारत सबसे अधिक वर्षा के क्षेत्र में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर आता है। कई कारणों से कुल वार्षिक वर्षा का 10वां भाग ही हम उपयोग में ला पाते हैं। एक अनुमान के अनुसार अगर स्थितियां बदली नहीं तो आज से 40 वर्ष बाद भी 1/4 से ज्यादा पानी हम उपयोग में नहीं ला सकेंगे।
2: हमारे देश में व्यापक जल स्रोतों का प्राकृतिक खजाना है। कहीं विशाल नदियां, तो कहीं आभूषणों जैसी झिलमिलाती झीलें, कहीं झरझर करते जलप्रपात। और तीन तरफ फैला लंबा समुद्री किनारा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है।
3: पानी तो एक मुख्य समाचार बन जाता है जब देश के किसी भाग में सूखा पड़ जाता है,

0: या गर्मियों में महानगरों में पानी का अभाव हो जाता है, जीवन के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।
1: हमारे देश में पानी की प्रत्यक्ष अधिकता भ्रामक है और हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें पानी का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पानी का हम दुरुपयोग भी करते हैं और कभी कभी अधिक और अनुचित उपयोग भी करते हैं। परिणाम स्वरूप पानी की गंभीर कमी की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं।
0: हमारे देश में हर एक को आवश्यकता अनुसार पानी क्यों नहीं मिल पाता है, इसके क्या कारण हैं?
1: पानी की कमी के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं बढ़ती हुई आबादी की बढ़ती हुई पानी की आवश्यकताएं, पीने के पानी का मुख्य स्रोत भूमिगत जल है। अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ये संसाधन तीव्र गति से कम हो रहा है। कई प्रदेशों में भूमिगत जल का बहुत उपयोग होने लगा है। भूमि के नीचे से जल निकालने की दर भूमि में जल रिसने की दर से अधिक है। परिणाम स्वरूप भूमिगत जल स्तर यानी वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है।
0: देखिए, बरसात तो सिर्फ वर्षा ऋतु में होती है ना, इसलिए दूसरे समय के लिए पानी का संचय करना पड़ता है, और पानी का संचय करना कोई आसान काम नहीं है।
1: पानी को जमा करके रखने का एक मुख्य तरीका है बांध बनाना। पानी को बड़े पैमाने पर बांध बनाकर उसे एक जगह पर विशेष उद्देश्यों के लिए रोक लिया जाता है। बांध के जल का उपयोग कृषि में सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से किया जाता है और सूखे में पानी की कमी से बचा जा सकता है। भारत में भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध, मिस्र में अश्वान बांध और पाकिस्तान में तरबेला बांध और अमेरिका में कूली और हैवर बहुउद्देश्य परियोजनाओं के उदाहरण हैं। वर्षा के पानी को जमा करके खेती के लिए और यहाँ तक कि घरेलू जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सावधानी से जमा किया हुआ पानी साफ होता है और सुरक्षित भी।

0: रेडियो 90.8 FM चाबुआ की आवाज।
1: वन में मेरा मन है। पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन बचाएं। अमित बेटा।
2: जी माँ।
1: मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दादाजी और सोनिया दीदी के पास जाकर बैठो।
2: ठीक है माँ।
1: और हाँ, देखो उन्हें तंग मत करना।
2: अच्छा माँ, मगर तुम जल्दी आना।
1: हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम जाकर खेलो।
2: अच्छा माँ।

0: मनु दीदी
1: बोलो।
0: ये देखो मैंने शेर का चित्र बनाया है।
1: अरे वाह इतना सुंदर।
2: अरे वाह भाई वाह अमित, अरे तुमने तो शेर का चित्र बहुत अच्छा बनाया है।
1: शेर तो जंगल का राजा होता है, पर अमित तुमने जंगल तो बनाया ही नहीं।
3: अरे हाँ सुनो दीदी।
1: हाँ
3: ये जंगल कैसा होता है?
1: जंगल
2: जंगल हमारे गांव के पास ही है बेटे।
1: बिल्कुल ठीक।
2: देखो जंगल का मतलब दूर दूर मीलों तक घने पेड़ पौधे झाड़ियाँ, समझे?
1: हाँ।
2: इसमें ढेर सारे जंगली जीव जंतु जैसे बाघ, हिरण, हाथी, हाँ, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि रहते हैं।
1: और जंगल इन सभी जीवों का घर होता है, है ना दादाजी?
2: बिल्कुल सही सोनिया बेटी। दरअसल जंगल यानी वन हमेशा हमारे लिए वरदान रहे हैं।
1: अच्छा
2: समझे? हाँ ये प्रकृति का उपहार है। आज बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण वनों का महत्व और भी बढ़ गया है।
1: अच्छा दादाजी।
2: हाँ भाई अगर वन न हो तो हम सब पर संकट छा जाएगा। हाँ और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता ही चला जाएगा।
3: पर्यावरण प्रदूषण ये क्या होता है दादाजी?
2: अरे बेटा पर्यावरण हमारे आसपास के वातावरण को कहते हैं, समझे? जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, पेड़, पौधे, ये सब कुछ। अगर ये प्रदूषित हो जाएं, यानी गंदे हो जाएं, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, समझे? हमारे ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
1: अच्छा वो कैसे दादाजी?
2: भाई जैसे गंदा पानी पीने से अनेक बीमारियां होती हैं, वैसे ही प्रदूषित वायु में सांस लेने से सांस संबंधी बीमारी हो जाती है।
1: अच्छा।
2: और बेटे अगर वन न हो तो सभी जीवों का जीना दूभर हो सकता है।
1: वो कैसे दादाजी?
2: सुनो वन वातावरण प्रदूषित होने से बचाते हैं और हमें शुद्ध हवा देते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ पेड़ पौधों के अंदर जो नमी होती है वो वर्षा कराने में सहायक होती है।
1: अच्छा।
2: भाई इन सब के अलावा वनों से हमें ढेरों कीमती सामान भी मिलते हैं। जैसे अनेक जड़ी बूटियां, फल, लकड़ी, रबर, गोंद और पत्तियां और पेड़ों की छालें जिनका उपयोग हम दवा, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ आदि के रूप में करते हैं।
1: अच्छा दादाजी। वन इतने उपयोगी हैं, फिर इनका विनाश क्यों हो रहा है?
2: अरे बेटे इसके बहुत से कारण हैं, जैसे हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा हो गई है।
1: अच्छा।
2: लोगों के पास रहने की जगह कम पड़ने लगी है। और भाई लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए, इसलिए लोग वनों को काट कर अपने रहने की जगह बना रहे हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ बड़े बड़े कारखानों के लिए भी जगह की जरूरत है।
1: अच्छा।
2: इसके लिए भी वन काटे जाते हैं।
1: अच्छा।
2: और पेड़ों की लकड़ियाँ प्रमुख साधन है। इसके अलावा झूम खेती से भी वनों का विनाश हो रहा है।
1: अच्छा दादाजी। दादाजी ये झूम खेती क्या है?
2: देखो बेटा झूम खेती हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, समझे? भाई इस प्रकार की कृषि में लोग भूमि के एक टुकड़े पर कुछ दिन खेती करने के बाद दूसरी जगह वनों को साफ कर खेती करना शुरू कर देते हैं।
1: अच्छा ऐसा करते हैं?
2: हाँ इसके कारण नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों में वन लगातार कम होते जा रहे हैं।
3: दादाजी, इन वनों को बचाया कैसे जाए?
2: अरे बेटा, वनों को तो हम कई तरीकों से बचा सकते हैं।
3: वो कैसे?
2: जैसे ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग न कर कोई अन्य वस्तु जैसे गोबर गैस, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा का उपयोग करें।
3: अच्छा।
2: हाँ, और इमारत और फर्नीचर में लकड़ी का उपयोग न करके फाइबर, शीशे, लोहे का उपयोग कर सकते हैं।
3: दादाजी,
2: बोलो बेटे।
3: हम पेड़ काटने से पहले पेड़ लगा भी तो सकते हैं।
2: अरे वाह वाह अमित भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटे। सोनिया बेटी।
3: हाँ जी।
2: देखो जरा कौन आया है।
3: हाँ दादाजी, मैं अभी देखती हूँ।

0: रेंजर चाचा आप? हाय नमस्ते।
1: नमस्ते बेटी नमस्ते। काका नमस्ते।
2: अरे भाई रेंजर आओ आओ भाई और सुनाओ कैसे हो? आओ आओ इधर आओ इधर।
1: सब ठीक है काका।
0: चाचा जी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा और सुनाओ बच्चों दादाजी से क्या बातें हो रही थी?
0: हम जंगल के बारे में बात कर रहे थे चाचा जी।
1: अच्छा
0: रेंजर चाचा आप तो जंगल में रह चुके हैं।
1: हाँ?
0: आप हमें बताइए कि वनों को बचाने के लिए लोगों को कैसे बताया जाए?
1: बच्चों ये बातें अनेक तरीकों से बताई जा सकती हैं।
0: वो कैसे?
1: जैसे टीवी रेडियो पर वनों के महत्व को बताकर, अखबारों में वनों के महत्व पर लेख लिखकर,
3: बिल्कुल,
1: और पोस्टर बैनर के जरिए वन बचाने का संदेश देकर।
0: अच्छा चाचा जी वनों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है?
1: बच्चों पेड़ों को बचाने के लिए अनेक आंदोलन हुए हैं।
0: अच्छा
1: वर्षों पहले उत्तराखंड के लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इसमें गांव के सभी लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया।
2: देखा बच्चों?
0: हाँ जी।
1: ठीक इसी प्रकार कर्नाटक के सिरसी जिले के सालकड़ी गांव के निकट एक जंगल में अप्पिको आंदोलन शुरू हुआ। वहां वन विभाग ने जब पेड़ काटने शुरू किए तो गांव के स्त्री पुरुष और बच्चे पेड़ों से चिपक गए।
0: अच्छा
1: इससे मजबूर होकर पेड़ काटने का काम रोकना पड़ा।
2: देखा?
1: इसी तरह राजस्थान के खेड़जली गांव और उत्तरकाशी क्षेत्र के तिलाड़ी गांव के लोगों ने वनों को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है।
2: अच्छा भाई रेंजर ये बताओ कि इस विषय में हमारी सरकार क्या कर रही है?
1: काका हमारी सरकार ने भी वनों को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
0: वो कौन सी कदम है चाचा जी?
1: जैसे बिना इजाजत पेड़ काटने वालों को जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ती है।
0: अच्छा
1: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वनों की कटाई पर नजर रखता है और इसके अलावा सरकार ने सामाजिक वानिकी नाम की एक योजना भी बनाई है जो अब कई जगह चल रही है। इस योजना के तहत लोगों को ये बताया गया है कि गांव के लोग खुद पेड़ लगाएं।
0: अच्छा
1: और वन काटने के बजाय इन्हीं पेड़ों से अपनी जरूरतों को पूरा करें।
0: अच्छा
1: और झूम खेती करने वालों के लिए सरकार ने एक स्थायी कृषि प्रणाली बनाई है ताकि लोग झूम खेती छोड़ दें।
0: अच्छा
1: इन सब के अलावा जंगलों की रक्षा से संबंधित शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए हमारी सरकार ने अनेक शिक्षण संस्थान भी खोले हैं।
0: अच्छा
1: जैसे वन अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी।
0: चाचा जी।
1: हाँ बेटा।
0: फिर तो मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा कि वन कितने जरूरी हैं।
1: शाबाश।
0: हाँ और मैं भी अपने हर एक जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी और अपने सभी साथियों को भी पेड़ लगाने को कहूंगी।
1: बहुत अच्छे।
2: अरे वाह भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बगीचे में चलकर इसकी शुरुआत आज ही से करें।
0: चलो, चलो, चलो, मैं भी पेड़ लगाऊंगा। हाँ, मैं भी पेड़ लगाऊंगा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: दो गौरैया।
2: इस घर में हम तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तोते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है। सुबह होते ही कबूतरों का गुटरगूं संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि दो गोरैया सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई। पिताजी, देखिए ना, गोरैया घर में क्या ढूंढ रही है।
3: ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि रहने योग्य है भी या नहीं।
2: अच्छा,
3: देखो देखो, कभी खिड़की पर बैठ रही हैं तो कभी रोशनदान पर।
2: हाँ, अरे हाँ हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
4: दो तीन दिन बाद क्या देखते हैं कि गौरैया के जोड़े ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में तिनके और घास फूस से घोंसला तैयार कर लिया है और मजे में चहचहा रही है।

0: माँ और पिताजी सोफे पर बैठे उन्हें ताक रहे हैं।
1: अब ये देखो, इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया। उड़ाना पड़ेगा इन्हें यहाँ से।
2: अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है।
1: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे हैं। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
2: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे।
1: ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़। यहाँ से इसमें हंसने की क्या बात है।
2: चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
1: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
2: ठीक है,
1: चल चल चल हट हट।
2: ये अब नहीं निकलेंगी।
1: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ।
0: मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गौरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती, तो कभी किचन के दरवाजे पर। उधर माँ को चिठोली सूझती।
2: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी निकलेंगे। हाँ
1: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है
3: जी,
1: जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे
3: जी,
1: वो सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रख
3: जी। अच्छा पिताजी।
1: हट, हट, हट।
0: अब पिताजी लाठी उठाकर फिर गौरैया से लोहा लेने को लपके। एक बार तो लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची।
2: अरे
1: अरे, अरे
2: क्या करते हो जी,
1: गलती से लग गया।
2: आराम से।
0: गौरैया चीची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए।
2: मजा आ गया, आखिर तुमने कर ही दिखाया।
0: माँ तालियां बजाने लगे और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
1: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
0: सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
1: अरे
2: वो देखो, फिर से आ गई घर में।
0: दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गौरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
2: अरे सुनो सुनो, देखो जी इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
1: बाहर मत निकालो तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
2: सुनो तो। रुक जाओ।
0: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झुलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़ा और उन्हें बाहर खदेड़ दिया।
1: गई।
0: दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठी। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गौरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही हैं। अब तो ये रोज का खेल हो गया।
4: मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अभी ये।
0: दिन में गौरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो ना जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठाकर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी।
2: तुम्हारे बस की नहीं है।
1: फिर कोशिश करता।
0: तभी मेरी नजर बाहर बैठी गौरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी।
1: देखा।
0: घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा चींची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके, बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई?
3: पिताजी देखो देखो देखो ऊपर देखो, माँ पिताजी
2: हाँ।
3: वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे।
2: अरे हाँ बेटी।
0: अरे पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। ची ची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं? कहाँ हैं हमारे माँ बाप? माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए।
2: ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया। आ जाओ गोरैया।
0: और तभी गोरैया झट से उठकर अंदर आ गई और ची ची करते अपने बच्चों से जा मिली।
1: अरे
0: वो उनकी नन्हे नन्हे चोंचों में चुग्गा डाल रही थी। हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। कमरा पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान था। अब पिताजी उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे।
1: सच में
5: छोटे और बड़े।
6: अरे छोटे बड़े
7: जी दादाजी,
6: मैंने तुम्हारे लिए एक जगह बना दी है ताकि तुम यहाँ आराम से रह सको।
7: जी दादाजी।
6: यहाँ जगह भी अच्छी है और खाने को भी कितना कुछ है। जाओ बेटा अब तुम खेलो।
7: हम
6: हाँ जाओ बेटा
7: खेलेंगे।
8: ओ भाई छोटे।
9: हाँ भाई बड़े।
8: आज हम पार्टी करते हैं।
9: हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, लेकिन पार्टी किस खुशी में?
8: हम यहाँ इतने दिनों से रह रहे हैं बिना किसी परेशानी के।
9: हाँ भाई बड़े ये तो तुमने सही कहा, यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं। हमें तो यहाँ खाना भी कितना अच्छा मिलता है और हमारी तो रहने की जगह भी बढ़ती जा रही है।
8: सही कहा भाई तुमने, अब हम अपने और दोस्तों को भी यहाँ रहने के लिए बुला सकते हैं।
9: हाँ भाई बड़े मैं भी अपने सारे दोस्तों को बुला लूँगा।
8: सभी मिलजुल कर रहेंगे, रोज पार्टी करेंगे।
9: हाँ हाँ हम सब खेलेंगे और खूब पार्टी करेंगे।
10: इस तरह छोटे और बड़े वहाँ बड़े आराम से रहने लगे। क्या आप जानते हो वो छोटे और बड़े कौन थे और वो कहाँ रहने लगे? सोचो। सोचो सोचो। नहीं समझ आया तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। वो छोटे और बड़े कोई और नहीं बल्कि चीनू के दांत में रहने वाले कीटाणु थे। और चीनू चॉकलेट खाकर बिना ब्रश किए जो सो गई थी, इसलिए आज छोटे और बड़े अपने और दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे थे।

0: निकल।
1: मेरे को तो चॉकलेट और मिठाई मिली।
0: छोटे?
2: हाँ भाई बड़े।
1: चलो और कुरेदते हैं दांतों में।
2: हाँ लगता है कुछ और खाने को मिले।
3: कीटाणुओं के शोर करने से चीनू के दांत में दर्द हो जाता है और उसकी नींद टूट जाती है और वो इसकी शिकायत अपनी मम्मी से जाकर करती है।
4: आ, आ, आ, मम्मा मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
5: क्या दांत में दर्द? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना रोजाना ब्रश किया करो।
4: मम्मा मैं तो रोज ब्रश करती हूँ।
5: तुम सिर्फ सुबह ब्रश करती हो ना, रात को तुमने चॉकलेट खाई थी तब किया था ब्रश?
4: नहीं मम्मी।
5: देखा अब दिखाओ जरा कहाँ हो रहा है दर्द? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ तुम्हें। परेशान मत हो, दर्द ठीक हो जाएगा, बस जल्दी से ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा।
3: चीनू की माँ और चीनू डॉक्टर के पास जाते हैं।
5: नमस्ते डॉक्टर साहब।
6: अरे नमस्ते नमस्ते कमला जी, आइए आइए।
5: देखिए ना डॉक्टर साहब, इसके दांत में दर्द हो गया है।
6: बस बस घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा?
4: चीनू।
6: चीनू, लगता है चीनी ज्यादा खाती हो हैं? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा मुँह खोलो मुँह खोलो। हाँ थोड़ा सा और। एक सेकंड बस, ये लो इस पे दवा लगा देता हूँ। हाँ इसे खा के कुल्ला करो बस। अब कुछ दर्द कम हुआ बेटा? हुआ ना? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखो बेटा ये जो तुम्हारा दर्द है ना, ये कीटाणु की वजह से है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं। और ये इसलिए लगता है क्योंकि आप समय से दो बार ब्रश नहीं करते होंगे। क्यों है ना कमला जी?
5: जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
6: देखो बेटा कभी भी लापरवाही मत करना, क्योंकि दांत जो है हमारी सुंदरता का प्रतीक है ना? कितने अच्छे लगते हैं दांत, तो इसीलिए हमेशा दो बार, एक तो हमें सोकर उठने के बाद ब्रश करना चाहिए और उसके बाद सोने से पहले यानी रात को भी ब्रश करना चाहिए। और हमें कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या पता है? ऊपर नीचे ब्रश को ऊपर नीचे करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि खाने का कोई भी अंश दांतों में फंसा ना रह जाए, समझे? और हाँ समय समय पर डॉक्टर से दांतों की जांच भी करवानी चाहिए। कमला जी आगे से आप भी ध्यान रखिएगा।
5: जी बिल्कुल।
6: है ना
4: डॉक्टर साहब, क्या मैं कभी चॉकलेट नहीं खा सकती? कभी नहीं मीठा खाऊंगी मैं।
5: डॉक्टर साहब इसको मीठा बहुत पसंद है, ये मीठा के बगैर नहीं रह सकती।
6: समझ गया। देखो बेटा ऐसी बात नहीं है कि तुम मीठा नहीं खा सकती, तुम मीठा बिल्कुल खा सकती हो, चॉकलेट भी खा सकती हो, मिठाई भी खा सकती हो, लेकिन हाँ खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना और दांत अच्छे से साफ करके सोना, जैसे मैंने बताया दो बार ब्रश। समझ गए ना? और एक बात और, अगली बार जब आओगी ना तो हमारे लिए भी चॉकलेट लेकर आओगी? लाओगी चॉकलेट? ये हुई ना बात। शाबाश, जाओ शाबाश।
3: ये सारी बातें सुनकर चीनू के दांत के कीटाणु परेशान हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं।
1: अरे भाई छोटे।
4: हाँ भाई बड़े।
1: आप तो हमारे आराम के दिन गए।
4: हाँ
1: हम तो अब भूखे ही रह जाएंगे।
4: हाँ, चलो दादाजी से चलकर।
1: हाँ चलो चलो दादाजी। दादाजी दादा भूख लगी है, बहुत भूख। हाँ, लगी है,
4: भूख लगी है।
7: हाँ बेटा मैं समझता हूँ। बेटा ये जगह अब बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है और यहाँ खाने को भी अब कुछ नहीं रहा। चलो हम किसी और दांत में चलकर वहाँ जगह बनाते हैं। चलो
1: चलो आओ। दादा, चलो
4: चलो
1: दादा, चलो।
4: दादा, चलो।
3: इस तरह सारे कीटाणु चीनू का दांत छोड़कर नए घर की तलाश में निकल जाते हैं। चीनू भी अब रोज रात को ब्रश किए बिना नहीं सोती। बच्चों, अगर आप नहीं चाहते जो कीटाणु अभी अभी बेघर हुए हैं वो आपके दांत में आकर अपना घर बना लें, तो आप भी चीनू की तरह रोज रात को ब्रश करने की आदत डाल लें।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
2: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
3: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र है।
2: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
3: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूर होता है उससे।
2: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
3: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
2: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर, उनके मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं, तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
3: जी, ये 2 वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
4: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है, ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
2: जी बताइए।
3: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
2: जी डॉक्टर साहब की तरफ से, ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
3: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभाव से रोका जा सकता है, और जिसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
2: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
3: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
2: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
3: जी
2: और डॉक्टर साहब,
5: क्या फाइलेरिया की
3: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
2: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
3: ये जब अभियान चलता है हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें। जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग, उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
2: जी, और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
3: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता, इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी, अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
2: अच्छा, जी जी, रात के 10 बजे से 2 बजे तक दबा ज्यादा,
3: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
5: जी, और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
2: जी बताइए।
3: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
2: जी
1: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
7: किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम खेती बाड़ी में। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई चर्चा को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं झाबुआ के मौसम का हाल। किसान साथियों, अगर हम बात करें झाबुआ के मौसम की तो झाबुआ का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस, कल की वर्षा 2.2 मिलीमीटर, 1 जून से अब तक की कुल वर्षा 69.8 मिलीमीटर नापी गई है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाता आया है। आज भी हम चर्चा करने वाले हैं कुछ और खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। खेती बाड़ी से जुड़ी इन जानकारियों को शुरू करने से पहले आइए मिलते हैं नवापाड़ा भंडारिया के पास बरोड़ गांव के एक किसान से और सुनते हैं उनकी मुजबानी।
8: हमारा ना जमाना में बाकी खातर वगैरह कहीं नहीं था, ही
9: खातर वगैरह कहीं नहीं था,
8: सर पाक भी मल भी जो जो खातर ना को पाक मल नहीं मला, लाभ नहीं उठाड़े भी जगह तू कर।
9: हाँ तो? मतलब जगह में इतना वसी होने क्या माल
8: वसी होने
9: पहले को तो अपना गोबर खातर नाख्या जाता थे
8: वस्ते लू
9: वस्ते लू वो कोई जरूरत नहीं आती आप आते हमने ना खातर न तो एक साल हूँ इतना मिले पहले को आते साल फिर डबल मिलू पड़ी
8: रहूंगा आठ मिनट में हुआ तो अपन पाक ले सकी नहीं तो नहीं पाक आले ही नहीं सके जमा पे जमे हो कर सके
9: जमे हो कर सके
8: કેમ કે મૂળ નું ખાતર હોય તો પાકે નહીં તે નહીં પાકે
9: યાદ આવ જેવું તેવું પાછા આપડ આપણું ગોબર ખાતર પાછું નાખી નાખી જગા વધારી
8: આપણે એક એક બે બે ડગરા માં ખાતર નહીં થયું ને ગેટમાં ડગરા મળે નઈ ને
9: હમટા ડગરા નહીં મળે ક્યાં
8: આપણો જગા ઉપર લઈ બેઠા નહી પાકે આલે જ્યાં તક ખાતર નહી ત્યાં તક પાક ભી નહી આલી રહી।
7: કિસાન ભાઈઓ જેમ કે હમણે આપણું ચર્ચા કરતેલા ચર્ચામાં જેમ કે આપણ કિસાન ભાઈએ આપણને કીધું કે કેમ આપણ રાસાયણિક ખાતર નાખી નાખી ના આપણી જગા બી રાસાયણિક ખાતની આદિ થતી જઈ રહી અને હા આપણ જરૂરત હે કે આપણું એની જગાને કેમ વધારી શકીએ। કિસાન સાથીઓ અભી આપને ભૂમિ સે જુડી હુઈ કુછ સમસ્યાઓ કો કિસાન ભાઈ કે મુંહ સે સુના ઓર આઈએ હમ આજ કે આજ હમ ઇસી બિંદુ કો લેંગે ઓર ચર્ચા કરેંગે કેસે હમ જો હમારી ભૂમિ મે જો હમારી ભૂમિ જો બદલ ચુકી હે જો ઠોસ હો ચુકી હે પહેલે કેસે હમ ડાયરેક્ટ ગોબરી ખાદ કા ઇસ્તેમાલ કરકે હમારી કૃષિ કરતે થે લેકિન આજ સમય બદલ ચુકા હે રાસાયણિક ખાદો કા પ્રયોગ કરતે કરતે આજ હમારી જમીન જો હે જો ઠોસ હોતી જા રહી હે ઉસે હમે કેસે નિજાત પાયા જા સકતા હે કેસે હમ ઇસે બચ સકતે હે ઓર કેસે हम हमारी भूमि को पुनः सजीव बना सकते हैं जानेंगे एक्सपर्ट की राय।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
7: किसान साथियों आज हम चर्चा करेंगे जैविक कृषि के बारे में केचुआ पालन को लेकर वर्मी कंपोस्ट को लेकर भूमि को सजीव बनाने की भिन्न भिन्न विधियों को लेकर चर्चा करेंगे साथ ही जानेंगे हमें किस तरह कैसे गोबरी जैविक खाद की मदद से हम हमारे जो हमारी रासायनिक भूमि है उसे हम कैसे पुनः सजीव बना सकते हैं और साथ ही जानेंगे जैविक खाद बनाने के महत्वपूर्ण विधियों के बारे में। उससे पहले आइए डालते हैं एक नज़र इस रिपोर्ट पर।
10: अधिक पैदावार की चाहत में किसान खेतों में रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये रसायन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक असर डाल रहे हैं। यही कारण है कि जागरूक किसान अब तेजी से जैविक खेती का रुख करने लगे हैं। जैविक खेती में सबसे लोकप्रिय है वर्मी कंपोस्ट। इसका उपयोग तब ज्यादा आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ खेती की जाए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे जरूरी गोबर का उपलब्ध होना होता है। गाय के गोबर को पोषण का सर्वाधिक श्रेष्ठ विकल्प माना जाता है, जिसमें पौधों के लिए जरूरी सभी सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। इन सूक्ष्म तत्वों को पौधे या फसलें बड़ी आसानी से अवशोषित कर लेती है। वर्मी कंपोस्ट विधि का प्रचलन अन्य विधियों की तुलना में कहीं सरल है। इसमें खाद बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, साथ ही इसका भंडारण भी सहज होता है। इसके अलावा पैदावार भी ज्यादा मिलती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलन में है, जिनमें से मुख्य है पेड़ विधि। पेड़ के चारों ओर गोबर गोलाई में डाला जाता है। हर रोज गोबर को डालकर धीरे धीरे इस गोल चक्र को पूरा किया जाता है। पहली बार प्रक्रिया शुरू करते समय गोबर के ढेर में थोड़े से केचुए डालकर गोबर को जूट के बोरे से ढक दिया जाता है। नमी के लिए बोरे के ऊपर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है। केचुए डाले गए गोबर को खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और अपने पीछे वर्मी कंपोस्ट बनाकर छोड़ते जाते हैं। इस तैयार वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा करके बोरों में भर कर रख लिया जाता है। बेड विधि। इस विधि में छायादार जगह पर जमीन के ऊपर 2 से 3 फुट की चौड़ाई और जरूरत के हिसाब से लंबाई के बेड बनाए जाते हैं। इन बेड़ों को बनाने के लिए गोबर, जानवरों के नीचे बिछाए गए घास फूस, खरपतवार के अवशेष का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। बेड़ की ऊंचाई करीब 1 फुट रखी जाती है। बेड़ को पुआल या घास से ढक दिया जाता है। इस तरह जितनी जरूरत हो उस हिसाब से बेड़ बनानी चाहिए। शुरुआत में पहले बेड़ में केचुए डालने होते हैं, जो कि उस बेड़ में गोबर और जैव भार को खाद में बदल देते हैं। एक बेड़ की खाद बन जाने के बाद केचुए खुद ही दूसरे बेड़ में पहुंच जाते हैं। इसके बाद पहले बेड़ से वर्मी कंपोस्ट अलग करके छान कर भंडारित कर लिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वर्मी बेड़ों में भरे गए कचरे में कंपोस्ट तैयार होने तक 30 से 40% नमी बनाए रखनी चाहिए। कचरे में नमी कम या अधिक होने पर केचुए ठीक तरह से कार्य नहीं करते। वर्मी बेड़ में कचरे का तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। यदि बेड़ पर तेज धूप पड़ती है तो तेज धूप पड़ने से कचरे का तापमान अधिक हो जाता है और केचुए तली में चले जाते हैं और अक्रियाशील होकर मर जाते हैं। वर्मी बेड़ में ताजे गोबर का उपयोग ना करें। ताजे गोबर में गर्मी अधिक होने के कारण केचुए मर जाते हैं। इसके लिए करीब 4 या 5 दिन पुराना गोबर लें। केचुआ खाद बनाने के दौरान किसी भी तरह के कीटनाशकों का उपयोग ना करें। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का इस्तेमाल ना करें। फसलों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। केचुआ खाद भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता ही है, साथ ही मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में भी इजाफा करता है। वर्मी कंपोस्ट वाली भूमि में खरपतवार कम उगते हैं, जिससे रोग भी कम लगते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है, साथ ही भूमि में जैविक क्रियाओं को बनाए रखता है। इसके अलावा फल, सब्जी, अनाज की गुणवत्ता में सुधार आता है, जिससे किसान को उपज का बेहतर दाम मिलता है।
7: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન। આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં। એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।

0: रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान भाइयों, आपने वर्मी कंपोस्ट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। कैसे हम केचुआ पालन कर सकते हैं, केचुआओं के लिए क्या क्या वातानुकूलित जगहें होती है, कैसे कैसे किस जगह पर हम केचुआ पालन कर सकते हैं, साथ ही आइए जानते हैं वर्मी कंपोस्ट द्वारा की गई खेती से हमें क्या फायदे हो सकते हैं, कैसे की जाती है, कैसे हमें इसका प्रयोग करना चाहिए और कैसे हम ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी को।
2: वर्मी कंपोस्ट के फायदे को समझते हुए देश में बहुत सारे संस्थान इसे बनाने से लेकर इसके लाभ को जन जन तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के हर पहलू को व्यावहारिक तौर पर करके दिखाया जाता है। यहाँ पर विज्ञान की प्रोफेसर के रूप में कार्यरत मीनाक्षी करवाल के मार्गदर्शन में वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
3: वर्मी कंपोस्टिंग एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसके बारे में मुझे मेरे कॉलेज से पता चला। इसको हम अपने घर में भी प्रयोग कर रहे हैं। किचन का जो बचा कुचा अनकुक्ड वेस्ट होता है उसका प्रयोग, उसको हम डीकम्पोस्ट करके उसका ऑर्गेनिक यूटिलाइजेशन कर रहे हैं।
4: घरों में जो केचुआ खाद है, केचुआ खाद का प्रयोग हम कई रूप से कर सकते हैं। जो घरों में सड़नशील पदार्थ यानी कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस निकलते हैं उनका प्रयोग करके हम इसे अपने बागवानी और किचन गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे परिणाम हमें देगा।
3: वर्मी कंपोस्टिंग के प्रोजेक्ट के बारे में हमें हमारी मैम मीनाक्षी मैम से पता चला और ये बहुत ही यूजफुल एक्सपेरिमेंट है, जिससे हमें हमारे और हमारे एनवायरमेंट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और इससे ये बहुत ही ऑर्गेनिक है और इससे हमारे एनवायरनमेंट एंड हमारी हेल्थ को बहुत ही फायदा होता है।
2: यहाँ हर उस छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जाता है जो इसके निर्माण में जरूरी है। इस संस्थान में इससे जुड़े सारे उपकरण मौजूद है और इसमें बेहतर से बेहतर तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए वानस्पतिक कचरा जैसे कि कृषि अवशेष, नीम के पत्ते, हरी व सूखी पत्तियां, सड़ी गली सब्जियां और फल, घरेलू कचरा एवं पशुओं के गोबर आदि का प्रयोग किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट के लिए इएसेनिया फैटिडा प्रजाति के केचुए का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की एक पूरी प्रक्रिया है और इसमें अलग अलग पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। वर्मी कंपोस्टिंग को मिट्टी, चीनी मिट्टी के बर्तन या प्लास्टिक टब में किया जा सकता है। इसे जमीन में गड्ढे बनाकर या क्यारियां बनाकर भी कर सकते हैं। गड्ढे की चौड़ाई लगभग 1 मीटर तक रखें और जगह की उपलब्धता के अनुसार लंबाई तय की जा सकती है। गहराई 1 मीटर के आसपास रखनी चाहिए। क्यारी की पहली सतह 4 से 5 सेंटीमीटर बालू बिछाकर बनाएं। इसके ऊपर दूसरी सतह पत्तों या भूसा आदि से बनाएं। इसके ऊपर जिस वनस्पति पदार्थ से आप कंपोस्ट बनाना चाहते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर गोबर में मिलाकर बिछा दें। इस कचरे को 18 से 20 दिन तक गलाने के बाद ही वर्मी रिएक्टर में डालना चाहिए, नहीं तो केचुए नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद 1000 केचुए प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊपरी सतह पर छोड़ दें। इसके बाद सतह पर पानी डालें और इसे किसी चीज से ढक दें। केचुए सूर्य का प्रकाश और अधिक तापमान सहन नहीं कर सकते, इसलिए केचुआ खाद के उत्पादन के लिए छायादार जगह का होना जरूरी है। यदि पेड़ की छाया उपलब्ध ना हो तो लकड़ी गाड़ कर कच्चे घास फूस का शेड बनाया जा सकता है। शेड में समय समय पर नमी का भी ध्यान रखना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट 30 से 60 दिनों में तैयार हो जाता है। जब वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाए तो इसकी ऊपरी सतह भुरभुरी दानेदार चाय पत्ती जैसी होती है। इसको जमा करने के लिए पहले 3 से 4 दिन तक पानी गड्ढे में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से केचुए नीचे चले जाएंगे। हाथ से खुरच कर छोटे छोटे ढेर बना लेने चाहिए। हल्का सूखने पर जमा कर ले। कंपोस्ट को छायादार स्थान में सुखाकर 25 मिलीमीटर की छलनी से छानकर उपयोग करने के लिए पॉलीथिन में भर लेना चाहिए।

0: हाई है वो 1 मीटर तक रख सके और लंबाई आपकी जगह की सुविधा अनुसार से आप कितना भी इसे लंबा कर सकते हैं और इसका जो गहराई है वो 1-1.5 फुट से ज्यादा ना हो। पानी जो है नमी बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है और हमें ध्यान रखना है कि 60-70% तक हम इसमें नमी को मेंटेन करें और इस वजह से गर्मियों में हर रोज हम इसमें पानी छिड़कते हैं और सर्दियों में हम 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन तक हम इसमें नमी के लिए पानी छिड़क सकते हैं। हम इस बात पे भी ध्यान रखते हैं कि हमारा जो वर्मी कंपोस्टिंग पिट है वो छायादार जगह में हो, इसके लिए हम आप शेड लगा सकते हैं या फिर हम छायादार जगह में भी इसको बना के उस खर्चे को बचा सकते हैं। और तीसरी बात ध्यान रखने वाली है कि केंचुओं को ज्यादातर जो नेवला है या फिर पशु पक्षी है ज्यादातर वो खा सकते हैं, तो इसको हम उनसे बचा के रखें। इसके लिए आप उस पे पिट के ऊपर बोरी लगा सकते हैं ताकि वो उनसे दूर रहे और सुरक्षित रहे।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी हम सुन रहे थे, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमें कूड़ा कचरा जो हमारी किचन से निकलने वाला वेस्ट है उसको हम डाल सकते हैं। साथ ही आइए जानते हैं कौन से ऐसे कचरे हैं, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो हमें अपने वर्मी कंपोस्ट में नहीं डालना चाहिए, जिसे डालने से हमारे जो केचुए हैं वो मर सकते हैं। आइए जानते हैं।
2: वर्मी कंपोस्ट को बनाने के दौरान कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए। पकाया हुआ खाना, प्याज, नींबू, खट्टे और जहरीले तत्व वर्मी रिएक्टर में नहीं डालने चाहिए। वर्मी रिएक्टर की क्यारियों को धूप और बारिश से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कचरे को वर्मी रिएक्टर में डालने से पहले 20 दिन तक सड़ने देना चाहिए। इससे सड़ने के दौरान जो गर्मी निकलती है उससे केचुओं को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। समय समय पर कचरे को हिलाते रहना चाहिए जिससे वर्मी रिएक्टर में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध रहे और वैसी विषैली गैसों का निर्माण ना हो सके जो केचुओं के लिए नुकसानदायक है।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। आपके लिए खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे वर्मी कंपोस्ट खाद से हम कौन कौन सी खेती कर सकते हैं और उस खेती से क्या क्या लाभ हम उठा सकते हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: इस विराम के बाद पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्मी कंपोस्ट से हम कौन कौन सी खेती कर सकते हैं और उससे क्या क्या लाभ लिए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी को।
2: वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद की तुलना में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और अन्य सूक्ष्म तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। केचुए द्वारा निर्मित खाद को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उपजाऊ एवं उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिसका सीधा असर पौधों की वृद्धि पर पड़ता है। वर्मी कंपोस्ट वाली मिट्टी में भूक्षरण यानी मिट्टी का कटाव कम होता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता में सुधार होता है। इसका लगातार प्रयोग करने से मिट्टी में अधिक समय तक पानी सिंचित रहता है। खेतों में केचुओं द्वारा निर्मित खाद के उपयोग से खरपतवार व कीड़ों का प्रकोप कम होता है तथा पौधों की रोग रोधक क्षमता भी बढ़ती है। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से फसलों पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग में कमी आती है, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ता है। किसान इसका बड़े पैमाने पर निर्माण करने के बाद इसे बेचकर बेहतर मुनाफा भी कमा सकते हैं। इससे प्रकृति को भी बहुत फायदा है।
3: इस प्रकार हमारे वैज्ञानिक प्रबंधन द्वारा अपशिष्ट का निपटान करना बहुत ही हमारे लिए सही रहेगा और प्रदूषण रहित पर्यावरण देने में सहयोगी रहेगा तथा हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रदूषण की वजह से दिक्कत आ रही है उसका भी हम निपटान कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो किसान भाई हैं उनकी इनकम है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि हम इसमें एक ऐसा जैविक खाद उपयोग कर रहे हैं जो कि वो घर पे ही बना सकते हैं और साथ ही साथ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ट्रेंड को भी बढ़ा सकते हैं।
2: वर्मी कंपोस्ट से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, साथ ही भूमि, पौधों या अन्य प्राणियों पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर कहें तो इसके उपयोग से किसानों का जीवन सवर सकता है। कुछ किसान इसका लाभ लेकर अपना जीवन सुखमय बना रहे हैं।
4: वर्मी कंपोस्ट के फायदे को देखकर तो ऐसा लगता है कि इससे कई सारी समस्याओं से पार पाया जा सकता है, बट जरूरत है लोगों में और किसानों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने की। ऐसे में वर्मी कंपोस्ट न केवल बड़े पैमाने पर किसानों के जीवन में खुशहाली ला सकता है, बल्कि हमारे प्रकृति के मोहक स्वरूप को बरकरार रखने में अपनी सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: किसान साथियों, आइए बढ़ाते हैं वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियों को और सुनते हैं एक सफल किसान से वर्मी कंपोस्ट को कैसे प्रभावशाली और उपयोगी बनाया जा सकता है।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: आप ध्यान रखना है, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्री चाहिए, जिसमें सबसे पहले है प्लास्टिक की सीट। प्लास्टिक की जो सीट है उसमें ये ध्यान रखना है कि वो फटी हुई ना हो। उसके बाद में हमको चाहिए गोबर। गोबर जो है वो कम से कम 5 से 7 दिन पुराना होना चाहिए और उसकी गर्मी निकल जाए, तभी उस गोबर को डालें। इसके बाद हमें चाहिए चारा फसल के अवशेष। लेकिन चारा फसल का जो अवशेष है उसमें ये ध्यान देने की बात है कि अगर अच्छी गुणवत्ता वाला चारा है तो उसको वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए काम में नहीं ले। अगर इस चारा फसल के अवशेष के साथ में हर जगह नीम होता है तो नीम के पत्ते डाल दिए जाए तो और उसकी गुणवत्ता जो है खाद की बढ़ जाएगी और इसको जिस फसल में भी काम में लेंगे उसके अंदर कीड़े और बीमारी का प्रकोप भी नीम के कारण कम होगा। इसके बाद हमको चाहिए खेत की मिट्टी। खेत की मिट्टी में ध्यान देने की बात है कि ऐसी वस्तुएं जो नहीं सड़ती है नहीं गलती है उनको छांट करके अलग कर दे। केचुए की जो बेड लगा रहे हैं उसके अंदर 50 से 60% पानी होना चाहिए, तो पानी जो है साफ जगह से लेना चाहिए, गंदा पानी काम में ना ले जहाँ तक ध्यान रखे। सबसे पहले जो है अपन प्लास्टिक की सीट जो है वो जमीन के ऊपर बिछाएंगे। इसको हम चाहे तो खड्डा खोद कर भी कर सकते हैं और अगर जमीन की कमी है और कोई शहरों के अंदर रहते हैं तो वो लकड़ी की मचान वगैरह बना करके भी इसको वर्मी कंपोस्ट को कर सकते हैं। खड्डा खोद के भी प्लास्टिक की सीट लगाना इसलिए जरूरी है या समतल जगह इसलिए लगाते हैं ताकि उसके अंदर जो भी पोषक तत्व है वो पानी जो ऊपर से डालेंगे वो नीचे बह करके नहीं जाए। चारा फसल का अवशेष जो है इसको अपन डाल रहे हैं, ये कम से कम 3 से 4 इंच की एक परत लगाएंगे। चारा फसल अवशेष की जो तय लगाई है उसके बाद में हम जो है पानी का छिड़काव करेंगे। प्रत्येक परत के बाद में पानी का छिड़काव करना अनिवार्य है। ये जब लगाते हैं उस टाइम की बात है, उसके बाद में हमको इतना पानी डालना है कि उसके अंदर 50 से 60% नमी बनी रहे। अगर सर्दी का समय है तो हमको 2 से 3 दिन में एक बार पानी डालना है और गर्मी के टाइम में 1 दिन में सुबह के टाइम में पानी इसमें डालना है। चारा फसल के अवशेष के साथ में नीम की पत्तियां जो है वो भी मिक्स कर दी जाए, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये जो गोबर और मिट्टी का जो मिश्रण डाला है उसकी भी जो परत है वो 3 से 4 इंच बड़ी होगी और इसके ऊपर पानी छिड़क रहे हैं। वर्मी कास्ट जिसके अंदर केचुआ और केचुआ का अंडों का मिश्रण है जिसको हम अब इस बेड के अंदर डालेंगे और इसको समान रूप से पूरे बेड के अंदर अपन को बिखेरना है। केचुआ जो होता है वो 0 से 40 डिग्री तापक्रम तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अधिक क्रियाशील तब होता है जब बेड के अंदर 28 से 32 डिग्री तापक्रम और 50 से 60% नमी होती है। 1 किलो केचुआ 24 घंटे के अंदर 1 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद बना देता है। अब इसके ऊपर हम गोबर की वापस एक परत लगाएंगे जो 3 से 4 इंच बड़ी होगी। अब पुनः हम इसके ऊपर हल्का हल्का पानी छिड़केंगे। केचुए के जो मुर्गी है, मेंढक है, चूहे है, कुत्ते हैं, नेवला और गिरगिट, ये इसके दुश्मन है तो इनको हमको बचा के रखना है। अंत में हम जो है नीम की पत्तियां और जो चारा फसल के अवशेष है उन दोनों को मिला करके अंतिम एक परत जो है इसके ऊपर 3 से 4 इंच की लगाएंगे। बस ध्यान रखने की जो बात है वो ये है कि इस बेड की ऊंचाई जो है वो 1.25 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब ये चाय की पत्ती के समान नज़र आने लग जाए तो 2-3 दिन तक इसमें पानी छिड़कना बंद कर दें और खुली जगह में जहाँ सूर्य की रोशनी आ रही है वहाँ पर इसका ढेर लगा दें। तो जब ढेर लगाएंगे तो इसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो केचुए जो है वो उस खाद के अंदर ढेर में घुस जाएंगे और ये इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट खाद जो है बन करके तैयार हो जाती है। जिस प्रकार से आपने देखा कि परत दर परत हमने जो है वर्मी कंपोस्ट की बेड लगाई है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से ही लगाई जाए। ये सारी जो सामग्री है उसको इकट्ठा करके हम सीधा ही उसको वर्मी कंपोस्ट की बेड लगा सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट खाद का पैकेट है जो बिल्कुल एकदम से चाय की पत्ती की तरह नज़र आ रहा है। ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद है इसके अंदर ये विशेषता होती है कि इस खाद के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको पैराट्रॉपिक झिल्ली कहते हैं। ये पैराट्रॉपिक झिल्ली जो है सिंचाई जल के वाष्पीकरण को कम करती है, तो इससे किसान भाइयों को ये फ़ायदा होता है कि जहाँ 5 पिलाई कर रहे हैं अगर वहाँ पे 3 पिलाई करेंगे तो फसल की पैदावार जो है उसमें कोई कमी नहीं होगी। वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर एंटीबायोटिक होता है इसलिए इसको जिस फसल में भी आप काम में लेंगे उसमें बीमारियाँ कम लगेगी। जिस खेत में भी इस खाद का उपयोग किया जाएगा उसके अंदर खरपतवार कम उगेंगे, दीमक की समस्या नहीं होगी और सफेद लट नहीं लगेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रासायनिक उर्वरकों की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर और सस्ता विकल्प है जिसके मार्फत हम ये वर्मी कम्पोस्ट खाद की एक घर पे फैक्ट्री लगा सकते हैं। आप देखें कि डीएपी और यूरिया की कोई किसान फैक्ट्री नहीं लगा सकता, लेकिन रासायनिक खादों की जो निर्भरता बढ़ती जा रही है वो वर्मी कम्पोस्ट के माध्यम से हम कम कर सकते हैं। अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की जो खाद होती है उसकी तुलना में इसके अंदर 5 गुना नाइट्रोजन, 6 गुना फॉस्फोरस और 4 गुना पोटाश होता है। जिस जगह 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद की जरूरत होती है वहाँ मात्र वर्मी कम्पोस्ट 3 टन की ही आवश्यकता होती है। ये वर्मी कम्पोस्ट खाद जो है हम फल फूल और सब्जी वाली फसलों के अलावा अनाज वाली फसलों में भी उपयोग में लिया जा सकता है। फल फूल और सब्जी की अगर खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें डालना चाहिए, उसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। और जहाँ फील्ड क्रॉप है, जो फसल लगा रहे हैं, वहाँ पे 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं और सब्जी वाली फसलों के अंदर 7.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम जानेंगे एक सफल किसान की कहानी। उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं प्यारे से भीली गीत को।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, कार्यक्रम की अगली कड़ी में आइए सुनते हैं एक सफल किसान की दास्ता।
2: मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ।
1: भीड़ से हटकर सोचना, भीड़ से अलग होकर चलना, इनकी अपनी एक पहचान है।
2: 10 से 20 साल पहले यही रासायनिक खेती करता और जो लोग कर रहे हैं वही खर्चा करता, लेकिन मैंने धीरे धीरे ये देखा कि पैदावार 1-2 साल जरूर बढ़ती है इससे, और 1-2 साल पैदावार बढ़ने के बाद में मैंने देखा कि हर साल इसकी मात्रा बढ़ाना पड़ती है अपन को, चाहे खाद हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे हर्बिसाइड हो, हर साल इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा अपन को बढ़ाना पड़ती। तो मेरा भी 20 साल पहले का ये बता रहा हूँ आपको कि इतना लेवल आ गया था 15 से 20 साल पहले का कि जो अपन खर्चा जितना लगा रहे हैं इसमें उतना खर्चा बरोबरी हो जाता है, समझो कुछ भी नहीं बचता है, सारी चीजें बाजार से क्रय करने में ही अपना

इसके ऊपर थोड़े थोड़े एरिया में एक एक क्यारी क्यारी में डेमोनेशन के रूप में डाला और उससे देखा सीखा अपन ने कि इसमें दूसरी फसलें हैं उसकी तुलना में क्या अपन को प्रॉफिट मिलता है। तो मेरे को जो परंपरागत फसलें थे उससे करीब 2 गुने से 3 गुने तक उसमें प्रॉफिट मिला। मैं जब भी कोई 70 साल का 75 साल का 80 साल का जो बुजुर्ग रहता है तो शाम सुबह कम से कम आधी घंटा तो उसके पास में मैं बिताता हूँ, चाहे मेरे गांव का हो, चाहे पास के गांव का हो, चाहे जिले का कोई भी हो। तो मैं उनको बात जटिलता से ये सीखता कि आप पहले कोई खाद डालते या कोई पहले आप दवाई डालते तो बोलते कि बिल्कुल भी नहीं डालते। तो मैंने उनसे चीजें सीख के क्षेत्र में शुरू करा तो लोग कुछ लोग तो पागल समझते कि यार ये तो खाद नहीं डाल रहा है, नहीं ये तो ये नहीं कर रहा, तो इसको क्या पैदा होगी और इससे क्या क्या उत्पादन मिलेगा। उस साल मैंने जो यील्ड कमाई, जो उपज कमाई, वो जो दूसरी किसान कमा रहे थे उससे समझ लो कि 20% उपज मेरे को ज्यादा मिली। मेरे को धीरे धीरे इसकी तरफ किसानों को भी जो बताने के लिए भी हो गया कि सर्टिफाइड भी आपको कराना जरूरी है जैविक खेती के साथ में। तो मैंने किसी का फर्स्ट ईयर है, किसी का 2 साल है, किसी का 3 साल है, ऐसे करके कम से कम 75 से 100 किसान को मैंने जो सर्टिफाइड करवाया है। और उनका मार्केट की जहाँ समस्या आती है तो मैं उनके जो जहाँ जैविक हाट लगते हैं, जैविक जो फार्मर का जो प्रोडक्ट खरीदती है कंपनियाँ, उनसे मैंने मिलवाया और उनका जो प्रोडक्ट है वो उनके वहाँ पे, जैसे मैं पूरे सभी तरह की क्रॉप तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ, तो कोई ग्रेन पैदा कर रहा है, कोई पल्सेस दाल पैदा कर रहा है, कोई फूल फूल भी पैदा कर रहा है गेंदा का, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक कहाँ पे मार्केट है उनका और ऑर्गेनिक कौन खरीदता है। तो उनका पैदावार से लगा के मार्केटिंग तक का करवा रहा हूँ तो लोग भी खुश है। 10 एकड़ जमीन वाला यदि एक 30 बाय 10 का यदि एक वर्मी कंपोस्ट का शेड बना ले तो मैं समझता हूँ कि उसको बाजार से कोई खाद पानी लाने की जरूरत नहीं है। और ये देख रहे हो ये जो दवाई बनाने का है, इसकी विधि भी मैंने बताई कि खाद भी अपना घर का, दवाई भी अपने घर की, प्रोडक्ट ऑर्गेनिक के आपके पैसे भी ज्यादा आ रहे हैं, तो इससे बढ़ के और क्या खेती हो सकती है जैविक खेती है। अश्वगंधा, तुलसी, शतावरी, कोच, तुलसी 2 तरह की लेता हूँ, राम तुलसी, श्याम तुलसी, काल मेघ, अजवाइन, हल्दी, अदरक और गराड़ू, मेथी दाने, कलौंजी, स्टेविया, मूसक दाना, यहाँ तक कि इसबगोल और चंद्रसूर, कम से कम 15 से 20 तरह की फसलें खरीफ और रबी की मैं मेडिसिनल फसल उगाता हूँ। और जो फील्ड में जाके भी मैं बताता हूँ, जैसे बहुत सारे क्षेत्र में वो नरवाई जलाने का प्रचलन है तो वहाँ पे मैं जाके बताता हूँ उनको कि आप 1 एकड़ में गेहूं की नरवाई जला रहे हो तो आधा एकड़ में जलाओ आप, और आधा एकड़ में गेहूं के जो डंठल रहते हैं उसको रोटावेटर से उसी में मिलाओ खेती में।

0: इंच के जो खत्म हो गए उसमें आपको पानी बिल्कुल भरा हुआ दिखेगा या बकेट से बाहर जाता हुआ दिखेगा।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि एवं जैविक खेती के लाभ, तकनीकी विधियां आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना खुद का अपना प्यारा खास शो जिंदगी के रंग गीतों के संग। दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी सिर्फ जीते नहीं हैं, उसे हर मिजाज से महसूस करते हैं, हर सफर में कहानी ढूंढ लेते हैं, हर इंसान के साथ एक रिश्ता बना लेते हैं और हर पल में एक गीत गा देते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही बहुत वार्म, वाइब्रेंट और सोलफुल पर्सनालिटी जुड़ी हैं, कविता देश पांडे जी। डांस से लेकर म्यूजिक तक, टीचिंग से लेकर ट्रैवलिंग तक, इनकी जिंदगी के हर मोड़ पर एक अलग ही कहानी बनी है, एक अलग ही एहसास है। तो चलिए कविता जी को थोड़ा सा और जानते हैं। आज हमारे जिंदगी के रंग गीतों के संग पे एक और नए खास एपिसोड में। तो कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं मैम?
2: जैसा नाम वैसा ही महसूस कर रही हूँ। जिंदगी के रंग एंड देन बहुत जिंदा दिल
1: जी,
2: ऐसा लग रहा है। खुशनुमा
1: बिल्कुल। आपकी पर्सनालिटी ही, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, बहुत ही खुशनुमा है। बहुत सारे लेवल्स रहे हैं, बहुत सारे मुकाम रहे हैं आपके जीवन में, और एक एक करके हम जानेंगे आपको थोड़ा सा और आज के हमारे सफर में। तो क्या आप हमारे साथ हैं?
2: जी बिल्कुल।
1: चलिए,
2: ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ।
1: बिल्कुल। तो चलिए ये खूबसूरत सी जर्नी SN रेडियो पर जिंदगी के रंग गीतों के संग से शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है मैम आपसे, बहुत ही सिंपल, कि आपने हमें बताया कि आप बचपन से ही, आपके पेरेंट्स ये जानते थे और मानते थे, क्योंकि कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो वो बचपन से जानते थे कि आप में एक रिदम है, डांस है, म्यूजिक है, आप एक अलग हटके आर्टिस्टिक सी पर्सनालिटी है। तो बचपन वाली जो कविता थी वो आपके हिसाब से आज जब आप याद करते हैं तो वो कैसी थी? वो नॉटी थ्री ड्रीमी थी या बिल्कुल एक फ्री बर्ड थी? किस तरह से आप खुद को डिफाइन करेंगे?
2: मैं कहूंगी कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री, क्योंकि नॉटी भी थी मैं, बट मुझे डर भी लगता था

0: मेरे सिबलिंग्स है जो मुझे ओवर पार करते थे फिजिकली.
1: ओ
0: और हाँ, तो आई हैड अ वेरी नाइस नॉर्मल चाइल्डहुड. तो बड़ा भाई और छोटी बहन, आई कैन से दैट बुली करते थे मुझे. सो आई वॉज नॉट ये, आई कांट से कि मैं बहुत दूध की धुली, ऐसा ऐसा कुछ नहीं. एकदम
1: दैट्स ऑनेस्ट, दैट्स ऑनेस्ट,
0: कुछ करो और छिप जाओ एंड देन बाद में
1: वेरी
0: रोना
1: गुड,
0: धोना एंड ऑल दैट.
1: सुमड़ी में निकल जाओ. तो
0: बिल्कुल
1: कोई
0: बिल्कुल.
1: एक वाकया, कोई एक ऐसी बचपन की ऐसी शैतानी जो आज भी आपके और आपके पूरे परिवार के जहन में एकदम ताजा है.
0: ऐसे तो बहुत बहुत बातें हैं जो आज भी याद करती हूँ मैं, और हंसी भी आती है, बुरा भी लगता है. बट देन जो बीत गई सो बात गई, उनको याद करके बस कुछ यादें ही होते हैं. एंड नो मैटर व्हाट यू से, हाउ मच यू से, रह जाती है यादें आपके साथ.
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल. बट फिर भी कोई एक भाई बहन के साथ किया हुआ झगड़ा, या कोई ऐसा यू नो रिवेंजफुल चीज, या कोई ऐसी मजेदार चीज जो बहुत ही चटपटी हो, उस टाइम पे बहुत बहुत डांट पड़ी हो, बट आज वो याद करके हंसी आती है.
0: आपने ये मतलब बात छेड़ी है तो मुझे दो तीन बातें याद आ रही है, क्या
1: बिल्कुल
0: मैं साझा कर
1: बिल्कुल
0: सकती
1: बिल्कुल
0: हूँ?
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल.
0: एक तो ऐसी बात है कि मेरे बड़े भाई और मुझ में 2 साल का अंतर है. मुझ में और मेरी छोटी बहन में हार्डली 2 साल का अंतर है. तो छोटी बहन मतलब मैं खुद को संभाल नहीं पाती थी, उसे संभालना चाहती थी, ऐसा ऐसा था. और बहुत क्यूट, बहुत ब्यूटीफुल बहन मेरी, तो मुझे लगता था कि उसे मतलब मेरा, उसको उठाना, उसको उसकी देखभाल करना मेरा मतलब कर्तव्य है, ऐसे लगता था. बट मैं खुद ही छोटी थी. तो एक बार ऐसे ही हम लोग बाहर बैठे थे, और वो घर के बाहर ना ऐसा ऐसी जगह होती थी जहां पर यू नो प्लेटफॉर्म जैसा, तो वहां पे मैं बैठी थी और मेरे सामने मैंने अपनी बहन को बिठाया था. और ये शायद कुछ मैं रहूंगी 4-5 साल की, और वो मेरे से एज आई सेड हार्डली 2 इयर्स डिफरेंस,
1: जी
0: हार्डली हाँ वो
1: जी
0: 3-4 साल की होगी.
1: बताइए.
0: हाँ, तो वो बैठी है मेरे सामने, मैं मतलब ऐसे पैर फैला के बैठी हूँ, वो सामने बैठी है. और जस्ट बारिश हुई थी शायद, तो पानी जा रहा था नीचे से. तो मैं बड़ी बहन हूं ना, तो मुझे दिखाना था उसे, छोटी को, कि देखो कैसे पानी वहां से बह रहा है. तो मैं आई बेंट फॉरवर्ड, तो नेचुरली इवन शी हैड टू बेंट फॉरवर्ड बिकॉज मैं पीछे थी. तो इस झमेले में वो गिर गई.
1: ओहो, उफ
0: और वो जो फोरहेड पे जो निशान है,
1: जी,
0: तो मुझे आज भी याद सताती है. मतलब जब भी मैं उसको देखती हूँ तो ये तो मेरा दिया हुआ है.
1: ये याद रहता है, बिल्कुल बिल्कुल.
0: और इस बात के लिए मुझे घर के बड़े बुजुर्ग, शायद मेरे उम्र के, आई मीन टू से दैट नो, मैं जब तक 25-30 साल की हुई तब तक मुझे कोसते थे घर के
1: बताएं
0: लोग.
1: बताएं कि तुम्हारी वजह से उसके माथे पे दिम्बो निशान है.
0: हाँ बिल्कुल. और जब मेरे 2 बच्चे हो गए एंड देन आई गॉट द करेज टू से कि देखिए ये कोई मतलब आई डिडंट डू इट ऑन पर्पज.
1: आई नो, आई मीन इट वॉज इन जस्ट श्योर यू नो बचपन.
0: यस एब्सोल्युटली. एंड मैं उसको दिखाना चाहती थी, मैं बड़ी बहन थी ना, तो उसे पानी कैसे बह रहा है, देखो मैं तो आई एम हैविंग अ गुड टाइम, इवन यू हैव अ लुक. ये था. लेकिन उस मतलब वो थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि मेरी वजह से वो मार्क है.
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बट
1: कोई नहीं,
0: देन
1: सही में बीत गई तो बात गई, और ये
0: यस.
1: तो खैर होना ही था कहीं ना कहीं. बट ये सब चीजें अब याद आती हैं तो बहुत खूबसूरत एहसास भी होते हैं, उसमें दर्द भी होता है, उसमें फैमिली की डांट भी होती है, बट आई थिंक यही पार्ट है ग्रोइंग अप का. और जो बच्चे थोड़े अलग होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस भी थोड़े अलग ही होते हैं. तो हम मान सकते हैं कि आप बिल्कुल एक अलग ही बच्चा थे, और मैं इसे बहुत रिलेट करती हूँ क्योंकि मैं भी अपनी फैमिली में वन ऑफ द मोस्ट यू नो क्या बोलूँ मैं. मतलब मेरी मम्मी आज भी ये कहती है, तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम्हें समझ आएगा. तो मैं वेट कर रही हूँ कि वो क्या ही समझाएंगे मुझे. तो मैम इसी एहसास से हम सुनते हैं हमारी बचपन की यादों के नाम एक खूबसूरत सा गीत, दिल है छोटा सा।

0: क्या खूबसूरत गीत है ये। सच में ऐसा लगता है बचपन में लौट गए, और ऐसे लग रहा है कि सच में अभी इस समय बारिश हो रही है। मैम आगे चलते हैं, आपको बुक्स का बहुत शौक है, आपने हमें बताया। स्टोरी बुक्स भी आपको बहुत पसंद थी, और स्टोरी बुक्स आपका वक्त चुरा लेती थी, आपने हमें बताया। तो आज भी क्या जब आप बुक्स पढ़ते हैं, या क्या आज भी आपकी जो दिनचर्या है उसकी उसकी उसमें आज भी आपके लिए बुक्स एक इमोशनल एस्केप का काम करते हैं? और कोई बचपन में पढ़ी हुई कहानी, कोई ग्रोइंग अप में पढ़ी हुई कहानी जो आज भी आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, जिसकी सीख या जिसका असर आपके ऊपर?
1: वैसे तो बहुत सी कहानियां पढ़ा करती थी मैं, ऑलवेज टाइम मिला तो बुक उठा लिया। एंड देन थोड़ी अकल जब आने लगी, सींग जब आते हैं ना उस टाइम पे, तो मैं तो गुड गर्ल, वैसे पढ़ाई में अच्छी थी तो गुड गर्ल जैसी स्कूल की किताब लेकर बैठी हूँ और उसके अंदर कोई बुक स्टोरी बुक छिपाकर।
0: वाओ,
1: मम्मी आ गई तो पूछ लिया उन्होंने क्या कर रही हो, तो मेरे हाथ में तो स्कूल का बुक है। तो ऐसी शैतानी तो बहुत की है। बट देन एट द सेम टाइम माय फादर न्यू दैट आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। ही अंडरस्टूड बिकॉज ही हिमसेल्फ रेड अ लॉट, ही रीड्स इवन टिल डेट। माय मदर नॉट अ रीडर, बट देन ये पापा जो थे, मतलब है, वो क्या करते थे कि मुझे बाहर ले जाएंगे अपने साथ जब वो कुछ काम के लिए जा रहे या घर का सामान लाना है, सब्जी वब्जी, तो उनका मतलब इतना अनयूजुअल यूनिक तरीका था मुझे इनकरेज करना रीडिंग में। तो वो ले जाएंगे और बोलेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो मैं तो बोलती थी कि आप कुछ ना दिलाए, एक स्टोरी मतलब बुक्स का एक स्टॉल था तो वहां पे उन दिनों तो बहुत कम पैसों में मिल जाता था ना
0: जी।
1: तो मैं उनको बोलती थी कि आप कुछ मत दिलाइए, मुझे ये चंदा मामा दिला दीजिए बस। यस ये एक। एंड देन घर के पास एक लाइब्रेरी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी थी और उसके प्रीमाइसिस में वी यूज्ड टू हैव दीज रशियन बुक स्टॉल्स का एग्जीबिशन।
0: वाओ।
1: सो वहां पर मैं जाती थी एंड देन 10-15 पैसों में बुक्स आ जाते थे
0: जी।
1: अब पता चल रहा है कि वो जो भी कहानियां थी किस तरीके से तोड़ मोड़ के यू नो उन्होंने परोसे। बट देन अब व्हेन यू कंपेयर द रियलिटी विद द बुक्स वी द रशियन बुक्स वी यूज टू रीड ऑल दोज मतलब दूसरे आइडियोलॉजी के, बट देन इट डिड हेल्प मी पिक अप द रीडिंग हैबिट।
0: राइट।
1: एंड देन एक तीसरी बात, मतलब आपको बहुत अजीब लगेगा, आई हैव बीन अ वेरी फ्रेंडली पर्सन फ्रॉम चाइल्डहुड
0: जी।
1: ओके तो मेरे जो हम उम्र थे तो उनके साथ खेलो उन लोगों का खेलना अलग होता था और मैं बोर हो जाती थी थोड़ी देर बाद। बेसिकली वेरी आर्टिस्टिक एंड देन थोड़ी एज आई सेड ड्रीमी नॉटी, सब कॉम्बिनेशन। वो मेरे बड़े फ्रेंड्स होते थे तो बड़ी लड़कियां हमेशा बड़ी लड़कियां उनके साथ भी मेरा उतना ही मतलब ट्रू फ्रेंडशिप होता था कि मुझमें और उनमें कम से कम 12-15 साल का अंतर।
0: वाओ।
1: वो लड़कियां आई एम टॉकिंग अबाउट
0: जी।
1: एंड बिकॉज आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ स्मॉल टाउन कल्चर
0: जी,
1: सो वहां पे उन लड़कियों को जो टीनेजर्स हैं जस्ट यू नो कॉलेज में गई है,
0: राइट,
1: जस्ट गई है, तो उनको घर में बोलेंगे कि नहीं नहीं अकेली नहीं जाना है बाहर। तो वो लड़कियां क्या करती थी कि चलो मेरे साथ, ठीक है, तो उनके साथ मैं खेलने जाती थी, उनके साथ टाइम पास करती थी एंड वो जब बोलती थी ना मेरे साथ चलो
0: जी,
1: तो सेम तरीका उनके साथ बाहर जाऊंगी तो चॉकलेट चाहिए, नहीं नहीं नहीं नहीं स्टोरी बुक दिला दो। उन दिनों चॉकलेट का बहुत मतलब इट वॉज नॉट ऑल दैट कॉमन यू नो कभी कभार. एंड देन एक और बात मैंने जो बताया ना कि गवर्नमेंट लाइब्रेरी
0: जी
1: ये लड़कियां लाइब्रेरी जाती थी अपने रेफरेंस बुक के लिए
0: राइट
1: उस जमाने में ना मतलब मेरे सीनियर्स आप इमेजिन कीजिए मेरे सीनियर्स 15 साल बड़े मेरे से 15-16 साल
0: right.
1: वो लड़कियां का मतलब दे डिड नॉट बाय बुक्स दे यूज टू गो टू द लाइब्रेरी पिकअप द रेफरेंस बुक कम होम टेक आउट द नोट्स
0: राइट
1: तो उनके साथ मैं जाती थी लाइब्रेरी तो अगेन आई पिक्ड अप द रीडिंग फ्रॉम देयर
0: तो माहौल ने बहुत आपको इन्फ्लुएंस किया बेसिकली कोई ऐसी स्टोरी जैसे मैंने आपसे पूछा कि जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करती है उन दिनों की याद दिलाती है उन दिनों के माहौल की याद दिलाती है या आपके दिल के किसी भी कोने में यू नो वो बहुत एक स्पेशल प्लेस होल्ड करती है कोई ऐसी बुक कोई ऐसी किताब जो आप रेकमेंड करना चाहें.
1: एक तो चंदा मामा
0: जी
1: देन रीडर्स डाइजेस्ट.
0: Oh, nice.
1: When I picked up, see, I was, my medium of instruction was my mother tongue, Kannada.
0: Yeah.
1: So, when I picked up English, I started reading Reader's Digest.
0: Wow, nice.
1: Yes. So, that is the 6th-7th standard mein.
0: बिल्कुल वो तो एक मिक्स बैक ऑफ फन होती थी उसमें रिडल्स भी होती थी गेम्स भी होते थे एंड ऑफ कोर्स रीडिंग.
1: Amazing magazine it used to be till one point of time.
0: Until one, absolutely.
1: Yes.
0: Absolutely.
1: Later they started adding those advertisements in the magazine. So reading कम advertisement ज्यादा हो गया तो मैंने बंद कर दिया पढ़ना.
0: बिल्कुल जैसे आजकल हमारे ऑडियो स्टेशन हैं उसी तरह
1: जी
0: रेडियो स्टेशन की जगह जी
1: जी जी. So मैं कहूंगी कि stories अगर मैं बताऊं एक तो रामायण महाभारत की कहानियां.
0: हाँ जी
1: मैं एक कृष्ण भक्त हूँ मतलब बचपन से
0: जी
1: क्योंकि वो कल्चर रहा है घर तो जिसे बोलते जिन्हें बोलते हैं विष्णुपासक हम वो लोग हैं
0: जी.
1: तो मेरी दादी करती थी तो मैंने भी फॉलो कर दिया एंड शी यूज्ड टू सिंग अ लॉट ऑफ भजन्स ऑफ कृष्णा तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस बहुत है मुझ पर इवन खान पान में भी
0: जी.
1: एंड देन शी यूज्ड टू मतलब परोसती थी वो एवरी सिंगल डे रामायण महाभारत पंचतंत्र की कहानियां. एक एंड देन वेरी इंटरेस्टिंग आपने मतलब छेड़ दिए बात अगेन
0: जी
1: तो फैंटम की कहानियां.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: सो ही हैज एंड ही हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन मी फाइट अगेंस्ट यू नो इविल
0: राइट राइट
1: ओके चाहे तो मास्क करके फाइट करो बट डू बी अ घोस्ट बट देन डू इट फाइट फाइट फॉर द सिचुएशन विच इज देयर
0: यस
1: इन फ्रंट ऑफ यू. ये जो है अगर कोई कम है जो कमजोर है मदद करो उसकी.
0: बिल्कुल रॉबिनहुड बनो. यस
1: यस यस तो वो जो है दैट मतलब मुझे लग रहा है कि वॉट एवर आई हैव बीन डूइंग इन माई लाइफ
0: जी
1: नेवर गिवन अप ऑन एनी थिंग
0: जी
1: बट यस आई हैव बिकम अ घोस्ट फॉर माई ओन सिचुएशन
0: राइट
1: एंड ट्राइड टू सॉल्व.
0: अमेजिंग अमेजिंग मैम वॉट अ स्टोरी ऑल्सो एंड वॉट अ रिलेशन विथ योर ओन लाइफ. आई मीन जिस तरह से आपने फैंटम को रिलेट किया अपनी लाइफ स्टोरी से
1: जी.
0: और आपके खुद के एटीट्यूड से तो ये दिखाता है कि एक्चुअली बुक्स का इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रांग होता है और स्पेशली वो जो बढ़ती उम्र में जो बुक्स हम पढ़ते हैं वो कहीं नहीं जाते वो आपके जहन में बस जाते हैं और आपकी यू नो थिंकिंग शेप करने लगते हैं. तभी कहते हैं कि अच्छी बुक्स पढ़ो और अच्छे लोगों से तो मिलो ही बट बुक्स का आई थिंक कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. सो बहुत ही खूबसूरत मैम इसी से आगे चलूंगी और आपकी नेक्स्ट जर्नी के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी जहां पे आपने टीचिंग में बहुत साल दिए अपने जीवन के और आपने जिस एज ग्रुप को पढ़ाया वो बहुत ही यंग और वो जो अडोरेबल टॉडलर्स का जो एज ग्रुप होता है उनके साथ आपने डील किया प्री प्राइमरी तो वो एक्सपीरियंस ने आपको किस तरह से शेप किया क्योंकि नेचुरली मैं मानती हूं कि हर चीज हर पड़ाव आपके जीवन में कुछ ना कुछ आपको शेप देता है कुछ आपकी अंदर ऐड करता है सब्सट्रैक्ट करता है. तो टीचिंग ने आपको क्या एक्सपीरियंस दिया पेशेंस दिया जॉय दिया या सिर्फ एक नजरिया एक सिंपल सरल नजरिया दिया.
1: बिफोर आई मूव ऑन टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्लोज टू माई हार्ट टॉपिक, मैं बुक्स के बारे में एक आई जस्ट समिट अप एंड
0: जी जी जी
1: क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, तो बुक्स के बारे में मतलब पैंटम तो बस एक मैंने जस्ट झलक दे दिया
0: जी,
1: बट मे बी आई वुड लाइक टू टॉक मोर अबाउट बुक्स, मे बी वी विल मीट सम अदर टाइम
0: जी, वी कैन जस्ट हैव दिस होल यस एपिसोड ऑन दैट यस,
1: ब्यूटिफुल बुक्स आई हैव रेड and we'll talk about it some other time.
0: Yes, yes.
1: Now,
0: yes.
1: Coming to my loved profession.
0: Ji.
1: Jaise maine kaha ki mujhe I'm a friendly person, to har umr har age group ke logon ke sath meri achhi banti hai aaj tak. In that I have a special attraction towards children. And ab se nahi, even when I was a child.
0: Right.
1: So, वो बहन के साथ जो हुआ वो बात अलग है.
0: जी.
1: But then I have been taking care of my cousins, younger cousins. जो मेरे से 5-6 साल ही छोटे हैं. But then they are mothers. They had faith in me. They knew I would take care. तो वहाँ से वो बच्चों का जो लगाव है वो रहा है. And then आगे जाके I got an opportunity to babysit my niece when my sister was working in her school.
0: Oh.
1: Huh. So because my sister, my elder cousin, she had to go to her workplace. और उनकी छोटी बच्ची थी जो दो ढाई साल की थी. तो I was very close to the child. And then दीदी ने कहा कि आप चलोगी मेरे साथ school. Because I would finish my school in the morning and I used to be free in the afternoon. So, मैं दीदी के साथ चली जाती थी और मैं रहती थी. In that, I realized that I have this special attraction towards these children and I can spend more time. And then I got into taking tuition classes when I was a teenager. So, again, वो interaction रहा. And then, जब मैं when I got married, went to Pune, Pune city, and then later when I had my children, and my child started going to school, the way she was at school, the way my daughter conducted herself in school, the principal of the school approached me and she offered me the job.
0: Amazing.
1: Jee. And every single day, I found myself learning something better than yesterday.
0: Wow.
1: बच्चे या हम लोग मतलब सोचते हैं कि हम किसी को सिखा सकते हैं या सिखाते हैं पढ़ाते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है. ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चे पढ़ाते बच्चे सिखाते हैं हमें.
0: बिल्कुल.
1: So many things.
0: Yes.
1: To begin with, as you said, patience. The amount of patience the child, you know, passes it on to you.
0: बिल्कुल.
1: क्योंकि जो एज ग्रुप मेरे साथ रहा करता था
0: जी,
1: तो वो अपना घर छोड़ के द कम्फर्ट ऑफ देयर मदर्स लैप, ग्रैंड मदर्स लैप छोड़ के दे वुड कम टू स्कूल. दे माइट हैव क्राइड इन द बिगिनिंग डेज.
0: एब्सोल्युटली.
1: यस, वी वर देयर सेकेंड मदर. ये जो भरोसा उन माओं ने हम पे डाला था और वो जो

0: the workload at home, looking after the household work, the entire responsibility and all other things. इनको लेकर मैं टू व्हीलर पे जा रही हूँ एंड देन ट्रैफिक भी बहुत खराब है. मैं ऐसे ही जूझते जा रही हूँ एंड देन द मोमेंट आई एंटर द स्कूल आई साइन एंड देन आई एम वेटिंग एट द डोर ऑफ माई क्लास बिग क्लास रूम. द फर्स्ट चाइल्ड कम्स एंड द आई कॉन्टैक्ट द चाइल्ड मेक्स विथ मी आई जस्ट फॉरगेट माई सेल्फ टोटली. And then it's only me and my those children.
1: Bilkul.
0: That's it. And it's a place to be. It's the heaven on earth.
1: Absolutely. Absolutely. I can actually imagine your whole journey. Jis tarah se aapne abhi narrate kiya. I just actually could imagine kaise aap ye pura journey complete karte honge. And how that child and it's the innocence of the child and the smile they carry or maybe the tears they carry leaving the You know, the leaving home, जो उनका दुख होता है उसको देखते कैसे आप पिघल जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं और आपको सिर्फ वो ही बच्चा दिखता है. एंड खैर यू हैड अ गार्डन ऑफ चिल्ड्रन विथ यू इन द क्लासरूम. तो बहुत ही खूबसूरत मैम, बहुत ही थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ योर लाइफ विद अस. एंड और कोई एहसास अगर आपको याद हो उस टाइम के टीचिंग एक्सपीरियंस के जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें.
0: It was a common crowded school.
1: जी
0: बहुत सारे बच्चे होते थे लाइक यू नो अराउंड 50 to 60 आई वुड से.
1: जी
0: बट द वर्कलोड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्गस्ट 5 to 7 टीचर्स एंड हमारे लिए मदद भी होती थी. वी हैड यू नो जिनको आप कहे ताई कहते थे मराठी में ताई. तो वी हैड 2 to 3 ऑफ देम.
1: Nice.
0: So it was a very well balanced classroom structure.
1: Nice.
0: Beautiful school. मैं आज जो भी हूँ उसका पूरा श्रेय मेरे स्कूल को जाता है. जो अभिनव विद्यालय इन पुणे.
1: जी
0: मेरे बच्चे भी the teachers have shaped my children and I owe it to my mentors there.
1: जी
0: my guides.
1: जी
0: सो वहाँ का एक एक एग्जाम्पल वन ऑफ द डेज व्हेन आई वाज गिवन सम अदर ड्यूटी आई वाज हेडिंग वन क्लास.
1: हाँ जी
0: एंड एज आई सेड इट वाज अ कॉमन क्राउडेड स्कूल.
1: जी
0: हर टाइप के बच्चे होते थे. सो देयर वाज वन चाइल्ड स्पेशली एबल्ड ऑन द ऑटिस्टिक साइड. सो जिस बच्चे को मैंने जस्ट थर्ड डे पहचान लिया था कि दिस चाइल्ड नीड्स एक्स्ट्रा अटेंशन. तो एक दो महीने बाद वी कॉल्ड द पेरेंट्स एंड देन मतलब वो जो भी करना था इट स्टार्टेड. एंड द मदर एंड द चाइल्ड दे वर सो मच यू नो मेरे साथ उनका इतना एक सॉलिड हो गया था
1: बॉन्ड जैसा. जी जी
0: बिल्कुल रिलेशन. और स्पेशली द बच्चा हु वुड इंटरैक्ट ओनली विद द मदर एंड The next one was me.
1: Yes, because he could confide. Yes.
0: Yes. So, एक दिन यूं हुआ कि I was given some other duty. मैं स्कूल से बाहर गई थी.
1: जी.
0: And my class was being looked after by another senior teacher. तो हम लोग काम खत्म करके स्कूल आए. मैं और बाकी के teachers.
1: जी.
0: ऐसे वापस आते हैं and then उसी time पे बच्चे they are having their you know toilet time.
1: जी
0: तो सारे बच्चे चले गए थे अंदर. ये अकेला पीछे से आ रहा था.
1: जी
0: और मैं एंड वी यूजुअली हम लोग वी मेड श्योर बिकॉज आई वाज विद द यंगेस्ट लॉट. हम लोग बच्चों के सामने नहीं जाते थे क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अरे टीचर दिख गई कविता टीचर कहाँ गई थी एंड देन ऑल दोज अनसेटलिंग हो जाता है. सो वी वुड जस्ट हाइड एंड आई डिडंट नो दिस माय डियरेस्ट चाइल्ड वाज कमिंग. आई डिडंट नो दैट बिकॉज लॉन्ग कॉरिडोर वहां से वो आ रहा है और मैं जस्ट निकल रही हूँ.
1: अच्छा
0: ही सॉ मी ही टर्न्ड केम रनिंग टू मी एंड गेव मी अ बिग हग. मी एंड द मदर वी बोथ हैड टीयर्स इन आवर आईज.
1: जी
0: तो माँ ने बोला कि यू आर द ओनली वन ही इंटरैक्ट अदर देन मी. एंड ये जो है हगिंग
1: जी
0: ये ऐसा वाला हक तो मुझे भी नहीं देता है. शी सेड एंड आई सेड That is the

0: best thing I received in my entire career.
1: Yes.
0: The best thing.
1: A gift that can never be forgotten, I think.
0: Oh, unparalleled.
1: Absolutely. क्या खूबसूरत एहसास होते हैं बच्चों के साथ. और टीचर्स अगेन आई वुड लाइक टू यू नो रेज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अ टीचर. ये प्रोफेशन सच में बहुत थैंकलेस है. लोग बहुत सारे आजकल नहीं जा रहे हैं इन प्रोफेशंस में, बट एक टीचर का जो प्रोफेशन है वो सच में सबसे नोबल, सबसे गिविंग और सबसे लॉन्ग टर्म चेंज का जो कैटलिस्ट है वो क्रिएट करने का प्रोफेशन सिर्फ एक आई थिंक टीचर का ही है. किस तरह से आप ये कच्ची मिट्टी को आप यू नो एक घड़े में एक शेप करते हैं अपने प्यार से, अपनी केयर से. और अगेन अगर कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा हो उसके साथ इस लेवल का इंटरेक्शन कर पाना कि वो आप में कन्फाइड कर सके और इस तरह से आपके साथ यू नो खुल सके, तो आई थिंक उसको तो आपने अपना पूरा जहान दे दिया एक टीचर होने से. तो थैंक यू सो मच मैम एंड कंग्रेचुलेशंस. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतने नोबल प्रोफेशन के साथ जुड़े रहे. आई एम श्योर आपने बहुत ही खूबसूरत कर्म संचित करे हैं और आप एक बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी हैं कहीं ना कहीं. इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, खोलो खोलो दरवाजे, तारे जमी पर फिल्म से.

0: आगे चलते हैं, आपके सफर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपने हमें बताया कि आप एक बहुत एविड ट्रैवलर भी हैं और ट्रैवल ने आपकी पर्सनालिटी को बहुत ब्यूटीफुली शेप किया है, तो आपकी किसी ट्रैवल एनेक्डोट को हमारे साथ शेयर करना चाहें, या कभी सफर में कोई ऐसा साथी मिल गया जो एकदम स्ट्रेंजर था बट आपके लिए गाइड जैसा बन गया, तो वो किस तरह का एहसास था? और इसी के साथ मेरा अगला सवाल इसी में एक सब पार्ट ये है कि आपने इतना ट्रैवल किया है तो आप हमें बता सकते हैं कि ट्रैवल इंसान को किस तरह से शेप करता है, एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में ट्रैवल क्या एवेन्यूज खोल देता है, वो अगर आप हमारे साथ साझा करें तो।
1: आई वुड लाइक टू गो टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट, इज दैट ओके?
0: जी जी बिल्कुल।
1: एक तो द ट्रैवल इन इटसेल्फ टीचेस यू टू टेक रिस्क।
0: जी,
1: आप अपने घर के कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, एंड देन आपके साथ कोई है या ना कोई है भी या नहीं भी है, तो भी यू आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू आर एंटरिंग एन अननोन प्लेस। तो आई हैव ट्रैवल मेनी अ टाइम्स अलोन, बट मुझे कभी बोर होता ही नहीं, इवन व्हेन आई एम अलोन। I enjoy my own company.
0: जी,
1: वो बहुत अच्छा एक तरीका होता है, when you travel you meet yourself again.
0: बिल्कुल,
1: you spend that beautiful time, valuable time with your own self.
0: Absolutely, yes.
1: And ये अब जाके मुझे ज्यादा हाईलाइट हुआ है, मेरे जो गुरु है सदगुरु ईशा आश्रम के, he always says, वो उसका मजाक भी बनाते हैं, but then what he says is, if you don't like your own company, then know that you are the worst person.
0: Absolutely.
1: तो हाँ, but मेरे साथ ये पहले से रहा है कि मैं अकेली travel करती हूँ, अच्छा लगता है, and travel as in बहुत दिनों तक गई हूँ ऐसा नहीं, but then I travel alone, which I really like. As I said, risk factor, you face the risks. ऐसा नहीं, but then I travel alone, which I really like. As I said, risk factor, you face the risks in life. You know, calculated risk लेना भी सिखाती है. And even I'm very particular about my food habits.
0: जी.
1: तो it has taught me how to handle that in my journey.
0: बिल्कुल. Very important.
1: हाँ. And then आप सफर में यू मीट पीपल,
0: यस,
1: वो जो एक्सपोजर है उसका एक एक्सपीरियंस ही अलग है.
0: बिल्कुल,
1: एक्सपोजर का एक्सपीरियंस, बिकॉज जैसे पांच उंगलियां हैं अलग अलग, सो यू मीट ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल ऑन द वे. सो किसके साथ कितना बात करना है, कितना घुल मिल जाना है, और किसको किस हद तक रखना है, ये भी हो जाता है. एंड देन एक मजेदार चीज ये होती है कि घर आने पर पता चलता है कि अरे इतना सामान क्यों लिया मैंने.
0: बिल्कुल, हमेशा, और गर्ल्स के साथ तो ये होता ही है.
1: बिल्कुल होता है. बिल्कुल होता है.
0: ये तो मैंने पहना ही नहीं, ये तो काम आया ही नहीं. जी,
1: सो ये रही छोटी छोटी बातें, बट देन एज आई सेड यू मीट योर सेल्फ, दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रैवलिंग.
0: एब्सोल्युटली.
1: एंड मेन पर्पज इज ऑलवेज यू गो टू न्यू प्लेस, यू नो मोर अबाउट दैट प्लेस, वो सब तो है
0: जी,
1: बट देन ये जो एहसास है कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ एंड कैलकुलेटेड रिस्क ले रही हूँ, बिकॉज मैं उस आई एम नॉट दैट कि मैंने कुछ प्लान किया नहीं और ऐसी चल पड़ी, वो नहीं, आई एम नॉट अमॉन्गस्ट दोज.
0: जी,
1: मेरा पूरा प्लान रहता है ट्रैवल जो भी है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रहना है, किससे मिलना है, यूजुअली. But then what happens on the way, the process of the travel,
0: yes,
1: it is so beautiful, it is so experiential.
0: बिल्कुल.
1: जो मेरे साथ आज तक है, ऐसे बहुत मिले हैं ट्रैवल में जिनके साथ मैं आज तक आई एम इन कॉन्टेक्ट विद देम.
0: वाओ,
1: या
0: अमेजिंग, अमेजिंग.
1: एंड नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट.
0: जी,
1: जब मैं टू फ्रेंड्स वी वेंट टू टू फ्रेंड्स एंड सन ऑफ वन फ्रेंड, जैसे चार लोग हम लोग दिल्ली से बद्रीनाथ केदारनाथ जाकर आए.
0: वाओ,
1: तो मुझे थोड़ा सा अस्थमा का मतलब है इश्यू है
0: जी जी,
1: स्पेशली हाई एल्टीट्यूड पे आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं केदारनाथ होकर आऊंगी
0: जी,
1: जा पाऊंगी, बट देन भगवान की बाबा की इच्छा मैं जाकर आई।
0: वाओ,
1: वो किसी मिरेकल से कम नहीं है।
0: एब्सोल्युटली, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड।
1: यस, एंड देन उससे पहले मैं उत्तराखंड के हर की धुन के लिए ट्रैक पे गई थी।
0: वाओ
1: जी, जब मैं वापस आई वहां पे आई हैड माउंटेन सिकनेस हो गया, एंड देन बट वो मेरी एग्जिट थी, एंड देन मेरे जो गाइड, मेरी जो गाइड थी ब्यूटिफुल सोल, शी सेड कि शी इज ऑल्सो फ्रॉम कर्नाटका, सो उसने कहा कि मुझे अक्का आई एम कैरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर विथ मी, जरूरत पड़ने पर मैं आपको करूंगी मदद, बट मैं जानती हूँ आप शेरनी हो, आप कर लोगी। वॉच देखना नहीं, टाइम देखना नहीं, हमें कोई डेडलाइन पार नहीं करनी है। शाम हो जाए चलेगा, हम लोग एक वन स्टेप एट अ टाइम करते पहुंच जाएंगे बेस तक।
0: अम्मी,
1: तो मैं हूँ आपके साथ। ये जो
0: हौसला,
1: हाँ। यस, ये जो है ये रोंगटे खड़े करने वाली बात है अभी भी, विच आई डिड इन 2019 में। दैट गर्ल एंड अनदर गाइड, लोकल गाइड
0: जी,
1: और एक ग्रुप में डॉक्टर थे, उनका ध्यान था मुझ पर।
0: हाँ जी,
1: लाइक यू नो लाइक
0: मेडिकल
1: सुपरवाइज, वो आसपास थे। उन्होंने इतना बोला कि मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, सो दैट यू डोंट फील।

0: दैट यू आर नॉट वेल.
1: यस, और यू हैव समथिंग जो आपको रोक पाएगा.
0: फिर भी मैं हूँ
1: जी,
0: ये जान लो कि मैं हूँ, रेडियस में हूँ. वन थिंग, एंड देन वो जो गाइड थी मेरी, उसने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर है,
1: यस,
0: बट यूज नहीं करेंगे.
1: यस,
0: मैं हूँ. एंड देन नॉट द लीस्ट, जस्ट बिफोर दिस माउंटेन सिकनेस अफेक्टेड मी, आई मेट अ डॉग.
1: That is, I think that is the best part of the answer.
0: Yes.
1: The mountain months, yes.
0: Yes.
1: Pahadi doggy, yes.
0: Bilkul. So, you must be aware of.
1: Absolutely.
0: So, as always, Sheru naam tha.
1: Hmm.
0: The hairy, tall, handsome, beautiful, expressive doggo.
1: Hmm.
0: He knew just before I started feeling uncomfortable.
1: Hmm.
0: He knew it before me.
1: Wow.
0: तो वो मेरे साथ चलने लगा. अब हमारे ग्रुप में 25 लोग थे. टू बिगिन विथ व्हाई डिड ही चूज मी,
1: जी,
0: बिकॉज ही न्यू दैट आई नीडेड हेल्प.
1: एब्सोल्युटली.
0: सो ही वॉक्ड विथ मी थ्रू आउट फॉर द नेक्स्ट 4 आवर्स.
1: माय माय.
0: एंड ऐसे चलता था कि इनिशियली ही वुड बी लाइक 2-3 फीट आगे पीछे. बाद में जब मेरी सांस बहुत ज्यादा फूलने लगी, तो ही वुड टेल मी कि स्टॉप.
1: बताइए.
0: लिटरली आई वुड टेक 2 स्टेप्स एंड देन आई वुड स्टॉप. बहुत हालत खराब थी. बट देन शेरू ने मुझे, वो मुझे बोलना उसने शुरू कर दिया. ही वुड जस्ट लुक इनटू माय आईज, टेक अ ब्रेक लेडी, देन आई वुड ब्रेक. ये एंड देन माय गाइड वॉज अमेजिंग, गॉड सेंट.
1: वाओ.
0: उसने बोल के रखा था कि इफ यू वॉन्ट टू, मतलब इफ यू आर टायर्ड, थोड़ा सा पानी सिप पी लो, बट यू आर नॉट गोइंग टू सिट.
1: राइट.
0: बैठोगी तो एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो जाएगी.
1: बिल्कुल. और फिर हिम्मत
0: उठने में.
1: yes.
0: उसमें.
1: yes.
0: सो दिस इज वन अमेजिंग एक्सपीरियंस.
1: wow.
0: मैं कभी नहीं भूलूंगी. और मेरे anyway, यहीं तक छोड़ देते
1: हैं. आई थिंक गॉड इज कैरिंग यू. जी जी.
0: यस. केदारनाथ के टाइम पे यू हुआ कि आई हैड बुक चॉपर का.
1: जी.
0: मैं अभी जाकर बैठूंगी उसमें. सीढ़ियां उतर रही हूँ. एंड देन बैड वेदर, चॉपर कैंसल्ड.
1: ओ नो.
0: या एंड देन आई वॉज वेरी श्योर कि मैं खच्चर पे नहीं जाऊंगी. नहीं जाऊंगी. आई
1: डेंजरस.
0: मुझे पसंद ही नहीं है. मुझे डर लगता है.
1: करेक्ट.
0: सो मैंने सोच के रखा था कि मैं नहीं. बट देन यहां से मुझे घर से जब मैंने कॉल करके बताया कि यूं हो गया, सो मुझे ऐसे बोला गया कि वहां तक गई हो
1: जी,
0: कुछ भी करके जाकर आओ.
1: करेक्ट.
0: करो, बाबा से बात करो और जाओ.
1: करेक्ट. वापस मत आओ.
0: वापस वहां तक. अरे जाओ भाई, करके आओ. यू डोंट नो वेदर यू विल गेट द चांस अगेन.
1: इन जगहों पे तो बाबा का बुलावा. यस.
0: हाँ. एंड देन आई वेंट बैक, आई इंक्वायर्ड. फिर मुझे जो पसंद नहीं था कि इसमें बैठ के जाऊं.
1: जी.
0: कि जो पालकी होती है डोली. उसमें बैठ के जाना, मतलब यू नो आई एम नॉट, आई एम नोबडी.
1: यस.
0: मुझे yes. उठा के कोई ले जाए.
1: क्यों ले जाए. यस. इट्स वेरी डिसकम्फर्टिंग. यस.
0: तो मैं गई बिकॉज दिस वॉज इन द यू नो हाईलाइटेड था कि नहीं नहीं यू हैव टू डू द लास्ट एफर्ट.
1: हाँ जी.
0: तो मैं गई, बात की एंड देन हम लोग निकल पड़े. मैंने मतलब पैर नहीं छुए उनके
1: जी,
0: बट उनको सॉरी बोला कि आप मुझे उठा के लेके जा रहे हो. एंड व्हेन वी स्टार्टेड द जर्नी, मैं द एंड मतलब हाफ जर्नी तक मैं रोती रही.
1: ओ माय.
0: इट वाज बोथ.
1: यस.
0: कि गिल्ट भी था एंड देन दैट ग्रेटिट्यूड. एंड देन आई कुडंट बिलीव माई सेल्फ कि मैं जा रही हूँ ऊपर.
1: आफ्टर ऑल द थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग. यस.
0: यस. एंड इन ये चारों में से एक जो उनका लीडर था, उसने जो मेरी देखभाल की है
1: जी,
0: मेरे सगे बच्चों ने आज तक नहीं किया है कुछ.
1: wow.
0: इतना.
1: wow.
0: यहाँ तक कि वो देख रहा था कि मेरी अगेन हाई एल्टीट्यूड, आई वॉज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ. एंड जाते वक्त अलग लोग थे. वहां ऊपर जाने के बाद आई डिसाइडेड टू कम डाउन विथ समवन एल्स.
1: जी.
0: वो वहां पे जो बंदा मुझे, उसने आई कॉन्टेक्ट किया और उसने बोला कि माजी मैं आपको ले जा रहा हूँ. आई सेड हाउ, मैंने तो आपको फिक्स नहीं किया. नहीं, वो बोला कि नहीं नहीं मैं आपको ले जा रहा हूँ आगे वापस.
1: बताइए.
0: ही केप्ट ऑल माई बैग्स. और मेरा भी एक है कि मैं भरोसा कर देती हूँ, ज्यादा सोचती नहीं हूँ. वॉट एवर बैग आई जी, माई फोन, माई वॉट एवर कैश आई हैड, वो सारा मैंने उनके हाथ में दे दिया. देखे मैं मंदिर चली गई अंदर. तो मैंने बंदे पर भरोसा किया,
1: बिल्कुल
0: सोचा नहीं कि ये. मैंने बोला कि चलो ठीक है, भाग जाएगा तो जाएगा, देखते हैं.
1: ऐसी चीज, ऐसे सिचुएशंस में कहीं ना कहीं गट बोलता है, यू नो.
0: हाँ हाँ. एंड देन ही टुक मी टू भैरव बाबा ऊपर, जो हर कोई लेकर नहीं जाता.
1: नहीं जाता है, और वो बहुत मस्ट है, वो करना
0: मस्ट है. तो वो किया हमने. एंड एज वी केम डाउन इट स्टार्टेड रेनिंग.
1: वाओ.
0: एंड पूरा 4 hours we came in the rains.
1: My mind.
0: And this person 3.5 hours में नीचे लेकर आया मुझे. And he did the things which I will never ever forget in my life. वो मुझे पता नहीं वो मिलेंगे कि नहीं फिर से. मैंने उनको extra पैसे भी दिए. इसमें मेरा पैसा बहुत खर्चा हो गया. But then that is another story. मतलब not to ponder about.
1: जी, बट इट वॉज वर्थ एवरी पेनी. जी जी,
0: वर्थ वर्थ, मोर देन वर्थ,
1: है ना.
0: और वैसे बाबा ने बुला लिया, चले गए, हो गया. सो दिस इज माय अमेजिंग एक्सपीरियंस.
1: बिल्कुल ऐसा लग रहा है सच में, जैसे जो पालकी वाला एक्सपीरियंस है, जैसे सच में भगवान बोलता है ना, मैं तुम्हें कैरी कर रहा हूँ, मैं उठा के लेके चल रहा हूँ. तो उस तरह का ये एक्सपीरियंस रहा. और सच में जब उनका बुलावा आता है तो आई थिंक सब चीजें एक तरफ और आपको पहुंचना है तो आप पहुंच ही जाते हो डिस्पाइट ऑल ऑड्स.
0: बिल्कुल.
1: बहुत ही खूबसूरत नाम. और बहुत ये ट्रैवल का तो हम एक पूरा शो करेंगे फॉर श्योर. मैं आपसे और बहुत सारी आपकी ट्रैवल एनेक्डोट्स जानना चाहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आपने बहुत ट्रैवल किया है. एंड द ब्यूटीफुल नरेटर दैट यू आर, हमें बहुत मजा आएगा आपकी स्टोरी सुन के. आगे चलते हैं, समय बहुत बलवान है और समय आगे बढ़ता जा रहा है. तो हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ मैं बढ़ूंगी मैम. आपने बहुत चैलेंज भरी लाइफ जी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमने बात नहीं की है, बट हम जानते हैं कि बहुत सारी माइलस्टोन्स रहे हैं जीवन में जिनको पार करके आज आप यहाँ हैं जहाँ हैं डिस्पाइट एवरीथिंग. तो वो एक बहुत प्राइड फील करने का भी एक एक्सपीरियंस है, मोमेंट है. बट जब आज आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या लगता है कि ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस था जिसने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया, और आपके एक्सपीरियंसेस से जो हमारे गेस्ट हैं जो आज हमें सुन रहे हैं, हमारे श्रोतागण, उनके लिए कोई बहुत प्रैक्टिकल सा मंत्र जीवन जीने का और हमेशा आगे बढ़ते रहने का, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी ही है कि बहुत पॉजिटिव, बहुत ग्रेसफुल, कि लाइफ में जो भी घटा है उसे बिटर नहीं होना, हमेशा आगे बढ़ना और ग्रेस के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाना. तो क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे लोगों के लिए जो वो अपना के अपने जीवन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं?
0: Tanusha, you yourself are such a matured person. सवालों में आपके जवाब पूरे हैं.
1: नहीं नहीं
0: जी, सच्ची में आपने वो सारा बोल दिया जो मैं फॉलो करती आ रही हूँ. एक तो एक बात ऐसी है कि आई हैव नेवर क्राइड अबाउट थिंग्स विच हैपेंड विथ मी, नेवर. कभी कभी रोया होगा, ऐसा नहीं बोल सकती कि 100% नहीं रोया. नहीं नहीं, आई डिड क्राई, बट देन वो कहते हैं ना कि रोते रहो, मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ. नो आई
1: वैल्यू करो उसमें.
0: यस. एंड देन लाइफ हैज बीन टीचिंग थिंग्स. लाइफ इन इटसेल्फ इज अ टीचर. यू लर्न सो मच एवरी सिंगल डे. एज आई सेड, मेरे दो बच्चे बहुत ब्यूटिफुल है. वो मेरे फोकस रहे कि मुझे इनको देख के इनके लिए अच्छा करना है, नॉट टू पॉइजन देम. ठीक है, उनको इस दुनिया में लाना ये मेरी जिम्मेदारी थी. मतलब इट वॉज माई डिसीजन.
1: बिल्कुल.
0: एंड देन उनको एक सॉलिड सूटेबल चाइल्डहुड देना वॉज ऑलवेज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी.
1: बिल्कुल.
0: एक सिक्योर चाइल्डहुड देना जो मैंने किया.
1: बिल्कुल.
0: एंड आज दोनों सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में. विल टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम. बट देन वो फोकस थे. आई वॉज ड्रॉइंग एनर्जी फ्रॉम द चिल्ड्रन आई मेट एट स्कूल.
1: यस.
0: आई वॉज ड्रॉइंग लिटरली, दे वर माई सनशाइन.
1: एंड
0: मेरी खुद की एक जो पर्सनैलिटी आप जिसको बोलते हैं कि जिंदा दिल, चलो म्यूजिक लगा है, गाना गाओ, डांस करो, सब छोड़ दो,
1: जी जी जी
0: रोटियां बना रहे हो, सब्जी पका रही हो, बंद करो गैस, जाके डांस करो।
1: जी जी बिल्कुल,
0: ये जो है दिस हैज केप्ट मी अलाइव।
1: बिल्कुल, स्पोर्ट्स का भी आपको शौक है मैम?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो भी डिसिप्लिन है, रेजिलियंस सब लाता है। जी
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, दैट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट है, करना है मुझे कुछ, यू कैन गिव अप।
1: वाओ मैम।
0: एंड देन आई डोंट नो पास्ट लाइफ एंड फ्यूचर लाइफ, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट इट, बट देन आज हाथ जो है मेरे हाथ में,
1: बिल्कुल
0: उसको तो जीना ही चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: एंड यू नो ऐसे टाइम पे मैं तो सोचती हूँ कि उन उन लोगों की तरफ देखो, उन सिचुएशंस को देखो जो हताश है, जो कुछ नहीं कर पाते, तो ऊपर क्यों देखना है कि वो उनकी उनकी जगह हमसे सिक्योर है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर एक को अपना प्रॉब्लम होता है,
1: करेक्ट,
0: अपने चैलेंजेस होते हैं,
1: करेक्ट,
0: लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है, एटलीस्ट आई हैव अ हाउस,
1: राइट,
0: छत है,
1: right.
0: मैं दो वक्त का खा सकती हूँ, लोग है मेरे साथ, भगवान ने कुछ हुनर दिया है, ये तो है मेरे साथ।
1: बिल्कुल,
0: अगर मैं रोऊंगी तो रोने के लिए तो बहुत है,
1: बहुत कुछ है,
0: सो इट्स माय चॉइस वेदर आई वांट टू सफर और आई डोंट वांट टू सफर।
1: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत जवाब मैम, और बहुत रेजिलिएंट स्पिरिट है, जैसे कि आपने बताया कि मतलब आपसे बात करके एक एनर्जी फील होती है कि हाँ सब कुछ हो सकता है जीवन में, फिर भी आप आगे बढ़ सकते हैं और एक ग्रेसफुल तरह के तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, जैसे मैंने कहा बिना बिटर हुए, वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, बिना पॉइजन किए, जैसे आपने बताया अपने बच्चों के जीवन को, जो बहुत इजीली लोग कर लेते हैं, बहुत डाउनलोड कर लेते हैं अपने पॉइजन को, अपने बिटरनेस को, बट वो ना करना बहुत ही एक आई थिंक इट शोज द काइंड ऑफ स्पिरिट दैट यू आर। आखिर में मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपने जैसे बताया कि आप डांस भी करती हैं, आप स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हैं और सिंगिंग को आप बहुत सीरियसली परस्यू कर रहे हैं, आप आई थिंक ट्रेन हो रहे हैं प्रोफेशनली इन सिंगिंग, तो थोड़ा सा संक्षेप में अगर आप अपनी सिंगिंग जर्नी के बारे में बताएं और साथ ही अगर एक खूबसूरत सा गीत हमारे लिए गुनगुना दें तो हम बहुत आभारी होंगे आपके।
0: नहीं वो तो मेरा इट वुड बी माय अपॉर्चुनिटी
1: जी
0: टू यू नो सिंग अ लाइन और टू टू द ऑडियंस एंड स्पेशली यू
1: जी।
0: सिंगिंग जर्नी ऐसी है कि आई स्टार्टेड डांसिंग वेरी अर्ली, जैसे माय पेरेंट्स नेवर स्टॉप मी
1: जी,
0: आई वाज गिवन ट्रेनिंग फॉर दैट, क्लासिकल डांस फॉर्म की ट्रेनिंग मुझे मिली है।
1: Wow.
0: And then later in life, like 4 years ago, again I started. But then थोड़े health issues हो गए थे, इसलिए I had to stop कथक डांस, मतलब classes attend करना
1: जी।
0: अदरवाइज मैं हर वक्त डांस करती हूँ, डांसिंग
1: क्वीन जी जी जी।
0: And then singing का ऐसा है कि my sister who has an amazing पहाड़ी voice, शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, उसको ना ऐसे पब्लिक के सामने गाना गाओ अच्छा नहीं लगता। बट देन बचपन में क्योंकि मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि अरे गाओ इतना अच्छा गाती हो, तो शी वुड से नो, सो आई वॉज आस्क्ड टू स्टैंड नेक्स्ट टू हर कि चलो दीदी है आप गाओ।
1: ओह वाओ,
0: सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड शेयरिंग द स्टेज विथ हर by wow. being her stand.
1: Wow. Amazing. What an experience. Very interesting.
0: And then अब ऐसे लगने लगा कि वो गा रही है, मैं कितनी देर ऐसी
1: खड़ी रहूंगी,
0: बोर हो रही थी मैं
1: जी।
0: And then I started picking up those lines.
1: How amazing.
0: And that then my parents realized, अरे ये भी गा रही है।
1: Yes, और ये भी बहुत अच्छा गाती है।
0: This is how my journey started.
1: Wow.
0: An accidental singer.
1: Yes.
0: But then I came to the mainstream.
1: Amazing.
0: I started learning. And then no turning back. My parents, I have the best of the set of parents.
1: Touchwood ma'am. वो दिखता है, वो आपकी बातचीत में दिखता है, झलकता है।
0: जी।
1: How beautiful your parents must be, and I would really like to meet both your parents and your children. कि वो कितने खूबसूरत personalities होंगे।
0: जी।
1: I would love to interact with them.
0: जी।
1: जी।

0: My. I don't have adjectives to say anything on this performance, ma'am. I mean, divinely blessed voice. Divinely. I got goosebumps. And I don't want you to stop. I wish you could finish and sing longer for us. But, जैसे मैंने कहा समय बलवान है तो हमें रैप अप करना पड़ेगा. ब्यूटीफुल वॉइस मैम. एंड आई होप आप बहुत जल्दी SN रेडियो पर एक पूरा प्रोग्राम आपका हम सुन सकें आज के कलाकार में. और मैं आपको सिर्फ सुनती ही जाऊं इस डिवाइन वॉइस को. आप सच में डिवाइनली ब्लेसड हैं, चोजन हैं. यू आर द चोजन वन. एंड थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. और इतनी खूबसूरत बातें इतनी गहराई से और इतनी सहजता से साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
1: थैंक यू तनुषा, थैंक यू सो मच। बातें तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जिस प्रकार से आपने प्रश्न पूछे हैं, द वे यू हैव बीन नेविगेटिंग द कॉन्वर्जेशन, वेरी ब्यूटिफुल। यू नो हाउ टू टच द कोर एंड रियली ब्लेस यू।
0: दोस्तों कुछ कॉन्वर्जेशंस दिल के को बहुत सुकून दे जाती हैं. जैसे कि आज की हमारी ये कॉन्वर्जेशन सच में सुकून का जो मतलब है वो मैं आज महसूस कर पा रही हूँ. इस कॉन्वर्जेशन के बाद मैं इतना फ्रेश फील कर रही हूँ. आई एम श्योर मेरे जो श्रोतागण हैं जिन्होंने आप सबने आज हमें सुना आपको भी ये कॉन्वर्जेशन उतना ही सुकून से छुएगी क्योंकि इस कॉन्वर्जेशन में सच्चाई थी, एक्सपीरियंस की, अनुभव की और एक जीवन जीने की. सच में जीवन जिया गया. जो तो कविता जी के साथ आज की बातचीत बिल्कुल वैसे ही थी. बहुत सारा म्यूजिक था, बहुत सारा सफर था, बचपन था और जिंदगी के कुछ चैलेंजेस थे. और उस हर रंग को इतनी सिंप्लिसिटी और इतने ग्रैटिट्यूड के साथ जी जाना ये हमें कविता मैम ने आज सिखाया. वंस अगेन थैंक यू कविता मैम. आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग गीतों के संग आपकी अपनी आरजे आरजे तनुषा आपके तरानों की हम सफर के साथ ओनली ऑन SN रेडियो. नमस्कार
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

नकारात्मकता। दोस्तों याद रखें कि जिंदगी हमेशा उस तरह नहीं चलती जिस तरह से हम चाहते हैं। ऐसे में चीजों को लेकर शिकायत करने के बजाय हमेशा चीजों के प्रति पॉजिटिव रवैया ही रखें। सफल लोगों को जब भी कभी जिंदगी में नेगेटिविटी घेरती है तब वो उससे अपनी पॉजिटिव सोच के जरिए बाहर निकल आते हैं। आपको भी चाहिए कि जिंदगी में हमेशा शिकायत करने के बजाय समस्याओं का समाधान ढूंढें, उनसे निपटें और बस आगे बढ़ें। निगेटिविटी से लड़कर ही आप सफल हो सकते हैं। बने रहिए आरजे समीर के साथ। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगें, तो दोस्तों समझ लेना जीना आ गया है।

सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है।

आंखों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं। सूरज सब तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे।

माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब

0: कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोको? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे?
1: है समय प्रतिकूल माना, पर समय अनुकूल भी है। शाख पर एक फूल भी है, घन तिमिर में एक दिए की टिमटिमाहट भी बहुत है, एक सूने द्वार पर बेजान आहट भी बहुत है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोनू ने पूछा, किस बात से परेशान हो? मोनू ने कहा, यार घर वालों से बहुत परेशान हूँ। सोनू ने कहा, अब घर वालों ने क्या कर दिया? मोनू ने कहा, जिस दिन सोचता हूँ कि कुछ नया करूंगा, उसी दिन गेहूं पिसवाने भेज देते हैं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

दुख लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है जो पहले पानी की भाषा में आदमी की आंखों से आता है और फिर हाथों की धरोहर बन जाता है।

जो कुछ पुराना है मोहक तो लगता है, टूटने का दर्द मगर सहना ही पड़ता है। बहुत कुछ टूटता है तब नया बनता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: बच्चा घर से मार खाकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में किसी ने पूछा, बेटा पढ़ते हो? बच्चे ने कहा, नहीं, नई ड्रेस पहनकर तुम्हारी बारात में जा रहा हूँ।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: ऑपरेशन के बाद मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या अब मैं बिल्कुल रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, अरे बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ।
2: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है अनिल कपूर। बेहद ही हंसमुख और हमेशा ही जवान दिखने वाले अनिल कपूर बेहद पॉपुलर एक्टर हैं बॉलीवुड के। तो लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अनिल कपूर जी एक पंजाबी हिंदू फैमिली में 24 दिसंबर 1956 को जन्मे थे और तब से लेकर आज तक बस हम सभी का मनोरंजन करते ही जा रहे हैं। लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: यार तुम्हारा कुत्ता तो टाइगर जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो तुम इसको? बंदा ने कहा, अरे भाई ये टाइगर ही है, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है।
0: 1980 के दशक में ढेर सारी फिल्में की अनिल कपूर ने, और हम सभी का भरपूर मनोरंजन किया अपने चुलबुले अंदाज में। लीजिए हो जाए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। एक बार एक सब्जी वाला सब्जियों

ऊपर पानी छिड़क रहा था, छिड़कता जा रहा था। काफी देर हो गई तो ग्राहक ने गुस्से से बोला, सुनो अब अगर भिंडी होश में आ गई हो तो 1 किलो तौल दो।

अनिल कपूर जी थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, जैसे उनकी बॉलीवुड कॉमेडी चमेली की शादी में उन्होंने थोड़ा सा गाया भी था। तो लीजिए पेशे खिदमत है उनकी ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आज के कलाकार अनिल कपूर जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, पेशे खिदमत है अमिताभ बच्चन साहब की ही एक फिल्म का ये गीत।

0: हमारे साथ बने हुए हैं गोपाल रघुवंशी जी अलीगढ़ से। मैं गोपाल जी से पूछना चाहूंगा, आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके बारे में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है।
0: मतलब
1: उनके बारे में इतने लोगों ने इतनी बातें कर दी, मैं कुछ भी बोलूंगा कुछ भी तो बहुत छोटी चीज होगी। अमिताभ बच्चन नेम इज इटसेल्फ, अपने अपने लेजेंडरी कह लो, परसोना कह लो, कुछ भी कह लो आप उस आदमी को। मेरी तो जो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है फिल्म इंडस्ट्री में या रेस्पेक्टेड फिगर्स में, उनसे ऊपर शायद एक दो लोग ही होंगे लाइक गावस्कर और तेंदुलकर और किशोर कुमार। बाकी आई रेट अमिताभ बच्चन, वेरी रेस्पेक्टेबल फिगर, वेरी एडोरेबल फिगर, एवरीथिंग, मतलब ही मीन्स एवरीथिंग टू मी।
0: बेहतरीन बेहतरीन। गोपाल भाई, तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया हुआ आपका पसंदीदा गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें हमें बताएं?
1: सर, अमिताभ बच्चन पे फिल्माई हुई मुझे हर चीज पसंद है, तो मैं, इट इज वेरी हार्ड टू पिक मी वन सॉन्ग, बट स्टिल दिल भर मेरे कब तक मुझे है।

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तो गोपाल रघुवंशी जी का जो ये फेवरेट सॉन्ग है, या वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है अमिताभ बच्चन जी का, वो श्रोताओं आपके लिए पेशे खिदमत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: थैंक्स।
2: दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 1942 में अलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज बुलाया जाता है, और इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम

पहचाना है तुम्हारा नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। संता तो ये लाइन पढ़ते ही बिखर गया। वाजी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाले होशियार और हमने टिकट ले लिया तो हम बेवकूफ।
2: बाबूजी मेरा चांसेस दो ना प्लीज। सुनो कितना अच्छा गाना आ रहा है।
3: ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है?
2: हाँ।
3: ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं, जितने तक तेरे लिए बचता रहेगा। कोई घा रहा होगा। सो जाएगी ना?
2: हाँ।
3: चल सो जा।

दोस्तों अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कितना कहा जा सकता है ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरे बताने से बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को पता होगा। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मेरी ओर देखो, हवा में उड़ता ये नष्ट हो जाने वाला सूखा पत्ता कहता है मुझसे, मेरी ओर तो देखो।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: पत्नी ने कहा, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीना आराम करने के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है, हम कहाँ जाएंगे? पति ने कहा, दूसरे डॉक्टर के पास। What?

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हर बीमारी का आज भी एक ही रामबाण इलाज है। सो जाओ, थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्में हम हमेशा देखना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब के गाने हम हमेशा सुनना चाहते हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की आवाज में ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: नमस्कार, आदाब और एक बेहद हसीन खूबसूरत शाम आप सभी के नाम। 90.8 FM की तरंगों पर आप सुन रहे हैं रेडियो SN और रेडियो तांतिया भील, और मैं हूं आपकी दोस्त और इस सफर की हम सफर आरती रॉय। लेकर हाजिर हूं आपका अपना बेहद पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, इस दौड़ती भागती जिंदगी में हम कितना आगे निकल आते हैं ना, पर कभी कभी दिल चाहता है कि वक्त थोड़ा ठहर जाए, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर ये रफ्तार थम जाए। आज की शाम हमने बिल्कुल उसी थमे हुए से वक्त के नाम की है, जहां कुछ पुराने खत खुलेंगे, कुछ बीते मौसम लौटेंगे, और जो बातें दिल की किसी कोने में दबी रह गई थी वो शायरी की शक्ल में बाहर आएंगी। कहते हैं ना दोस्तों, जब अल्फाज थक जाते हैं तब एहसास बोलना शुरू करते हैं। तो चलिए इस 90.8 FM के सफर पर अपने दिलों के दरवाजे खोल लेते हैं, खामोशियों को देते हैं थोड़ी जगह और शुरू करते हैं आज का ये बेहद खूबसूरत सिलसिला। दोस्तों, जवानी का वक्त तो सबको ही हसीन लगता है, शामें हसीन और रातें सुहानी लगती हैं। गर्मियों में छत पर लेटकर चांद को निहारने में जो मज़ा आता था, ऐसा लगता था कि चांद हमसे बातें कर रहा हो। दो प्यार करने वाले चांद को गवाह बनाकर एक ही वक्त पर, जैसे एक पोशीदा फोन पर बात कर रहे हों, जैसे उन चांदनी रातों की तपिश का मज़ा वही ले पाया होगा जिसने कभी प्यार किया होगा। हमारी अगली गजल में कुछ ऐसी ही दास्तां को बयां किया गया है, जहां बार बार अपने गए वक्त की दुहाई दी गई है। शायर कहता है, अब्र हो जाम हो, साकी हो मेरे पहलू में, अब्र हो जाम हो, साकी हो मेरे पहलू में, कोई तो शाम मुझे ऐसी सुहानी दे दे, नशा आ जाए मुझे तेरी जवानी की कसम, तू मगर जाम में भर के मुझे पानी दे दे। दोस्तों, सुनिए हाले दिल की पुकार जगजीत सिंह की रूहानी आवाज में, देने वाले मुझे मौजों की रवानी दे दे, फिर से एक बार मुझे मेरी जवानी दे दे। हाय तोबा, दे ही दे। गजल सुनिए।

दोस्तों, जब हम अकेले होते हैं तो अक्सर किसी न किसी सहारे की तलाश करते हैं, चाहे वो किसी की याद हो, कोई गम हो या फिर कोई नशा। नशा प्यार का, सनम की जुदाई का, सनम के वसल का। मेरे नजदीक वसल का नशा सबसे हसीन और नामचीन नशा है। मगर कई बार कोई वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान के पास ना महबूब होता है, ना उसके होने की कोई आस, ना ही खुशी की तमन्ना और ना ही किसी और का सहारा। वो आलम होता है एक मुकम्मल तन्हाई का, एक ऐसी खामोशी जो आपसे रूबरू होकर आपसे तमाम बातें करती है। फिर अगर जगजीत सिंह की मखमली आवाज इस तन्हाई को मिल जाए तो वो अकेलापन भी बेहद खूबसूरती और सुकून से भर जाता है। ऐसा लगता है वो हमारी ही रूह से रूह की तर्जुमाई कर रहा हो जैसे। तो चलिए, इस नरम शाम में खामोशियों को थोड़ा गहरे होने देते हैं। इस गजल के शायर सईद राही की जुबानी, दिल का आलम ही कुछ अनोखा है। वो कहते हैं, दिल का आलम ही कुछ अनोखा है, इस खराबे में कोई ख्वाब नहीं। वो जो कहते थे हम तुम्हारे हैं, वो जो कहते थे हम तुम्हारे हैं, आज उनके पास कोई जवाब नहीं। क्यों ना सईद उनको याद कीजिए, उनका रास्ता तो कामयाब नहीं। आइए सुनिए ये गजल जगजीत जी की आवाज में। गम नहीं, शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं।

दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा दौर भी आता है जब हम किसी बात पर अंदर से बिखरे बिखरे से रहते हैं। एक ऐसी बेचैनी सी महसूस होती है जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। दिल घबराया घबराया सा रहता है। हम सबके सामने मुस्कुराते हैं, बातें भी करते हैं, पर अंदर ही अंदर जैसे कुछ सुलग रहा होता है। मुनीर नियाजी साहब ने दिल की इसी कैफियत को, इस अकेलेपन को अल्फाजों में इस तरह से पिरोया है। बकौल शायर, वो ख्वाब का बिखरना, वो याद का मिटाना, एक रास्ता नया अपना दिखलाए हुए रहना, उस हुस्न का शेवा है जब इश्क नजर आए, उस हुस्न का शेवा है जब इश्क नजर आए, पर्दे में चले जाना शर्माए हुए रहना, कुछ सोच के उठना ही उस शहर के कूचे से, कुछ सोच के उठना ही उस शहर के कूचे से, कुछ याद के दामन को फैलाए हुए रहना। और फिर इसी गजल का मकता है, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। मुनीर नियाजी की इन्हीं लाजवाब अल्फाजों को जब उस्ताद गुलाम अली साहब अपनी हसीन गायकी के साथ गाते हैं तो ऐसा लगता है हर लफ्ज़ हमारे ही दिल से निकल रहा हो जैसे। गज़ल सुनिए गुलाम अली साहब की आवाज़ में, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना।

दोस्तों एक बार फिर 90.8 FM पर आपका खैर मकदम करती हूँ। मैं आपकी दोस्त आरती रॉय और आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब सूरज ढलने लगता है तो मौसम में एक अजीब सा ठहरा

0: से किसी पुराने दोस्त की तरह हमारे पास आकर चुपचाप बैठ जाती हैं। ख्वाबों के दिए जलने लगते हैं और बीते हुए लम्हे एक एक करके सामने आने लगते हैं। वैसे तो ये नगमा हम सब ने कई बार सुना है, लेकिन जगजीत साहब जब अपनी पुरसुकून सी आवाज में गाते हैं तो ढलता हुआ दिन और भी हसीन लगने लगता है। यादों के दरीचों से लम्हे झांकते हुए से नजर आते हैं। तो चलिए अपनी शाम को थोड़ा और हसीन बनाते हैं और सुनते हैं ये कलाम जगजीत सिंह की आवाज में।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,

दोस्तों, कुछ रिश्ते ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो वक्त बीतने पर पुराने तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी रूहानियत हमारे अंदर कहीं बस जाती है। उनका एहसास कुछ धुंधला तो हो सकता है, पर कभी ख़त्म नहीं होता। कोई ऐसी आशनाई, कोई ऐसी मुलाकात, कोई ऐसी बात जो सालों पहले हुई हो, मगर उसकी शिद्दत हमारे अंदर तक कहीं गुम सी हो जाती है। लगता है उस रिश्ते की दीवानगी जैसे आज भी कहीं सांसों में बसी हो, बिल्कुल उस मेहंदी की खुशबू की तरह, जो हाथों से छूट भी जाए तो उसकी महक सांसों में रह जाती है। ख्वाजा परवेज साहब के इन्हीं गहरे अल्फाजों को जब मरहूम उस्ताद मेहदी हसन खान साहब ने अपनी सरगमों और सुर में पिरोया, तो ये कलाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। उनकी आवाज़ की वो लरस और हर एक लफ्ज़ को छू कर निकलना सीधे दिल पर गहरा निशान छोड़ जाता है। बकौल शायर, तड़प मेरे बेकरार दिल की, तड़प मेरे बेकरार दिल की कभी तो उन पे असर करेगी, कभी तो वो भी जलेंगे इसमें जो आग दिल में दहक रही है। वो मेरे नज़दीक आते आते हया से एक दिन सिमट गए थे, मेरे ख्यालों में आज तक वो बदन की डाली लचक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है, लबों पे नगमे मचल रहे हैं, नज़र से मस्ती छलक रही है। मेहदी हसन साहब की आवाज़ में ये गज़ल आपकी नज़र।

काबे का एहतराम भी मेरी नज़र में है, काबे का एहतराम भी मेरी नज़र में है, सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद। इस गज़ल के लिखने वाले शायर की बात तो सुनिए ज़रा। कहते हैं काबे का एहतराम भी मेरी नज़र में है, सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद। आवाज़ दे रही है मेरी ज़िंदगी मुझे, आवाज़ दे रही है मेरी ज़िंदगी मुझे, जाऊं मैं या ना जाऊं तुझे देखने के बाद। नज़रों में ताबे दीद ही बाकी नहीं रही, शायर कहता है नज़रों में ताबे दीद ही बाकी नहीं रही, किससे नज़र मिलाऊं तुझे देखने के बाद। अब क्या गज़ल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। दोस्तों ये मशहूर गज़ल सुनिए तलत अज़ीज़ की आवाज़ में, और इसका म्यूज़िक कंपोज किया है जगजीत सिंह जी ने, और इसे म्यूज़िक इस म्यूज़िक एल्बम में उन्होंने लिरिक्स भी लिखे थे सईद शाहिदी के साथ। तो सुनिए प्रोग्राम की आखिरी गज़ल, कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद। गज़ल सुनिए।

दोस्तों, वक्त का पहिया कितनी तेजी से घूमता है, पता ही नहीं चला कि कब हमारे आज के सफर का वक्त हुआ जाता है। आज अल्फाज से एहसास तक में हमने उन जज्बातों को महसूस किया जो अक्सर लफ्जों में बयां नहीं हो सकते, चाहे वो जगजीत जी की तन्हाई का सुकून हो या फिर एक बार जवानी की दुहाई और कहीं दूर दिन ढलने की दास्तान, या गुलाम अली साहब की जज्बों की दहकती हुई बेचैनी, या फिर मेहदी हसन साहब की सुरों में रची हिना की वो महकती हुई खुशबू, और फिर तलत अजीज का वो मासूम सा सवाल कि कैसे सुकून पाए तुझे देखने के बाद। आज की ये शाम वाकई एहसासों की एक मुकम्मल दास्तां बन गई, और इस दास्तां को हसीन बनाया आप सबके साथ ने। जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि रिश्ते और यादें चाहे कितने ही पुराने क्यों ना हो जाएं, उनकी महक को अपने दिल में जिंदा रखिएगा। अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। मैं हूं आपकी दोस्त और इस सफ़र की हम सफ़र आरती रॉय। आपसे लेती हूं इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलूंगी आपसे यहीं इसी जगह इसी वक्त इसी मोड़ पर नए अल्फाज और खूबसूरत एहसासों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा।

0: दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते हैं।
2: किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम खेती बाड़ी में। कार्यक्रम को बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नजर झाबुआ के मौसम के ऊपर। झाबुआ का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। साथ ही अगर हम बात करें वर्षा ऋतु की, तो कल की वर्षा 2.1 डिग्री सेल्सियस और 1 जून से अब तक की कुल वर्षा 67.6 मिलीमीटर नापी गई है।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। जैसे कि रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपके लिए खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। साथ ही आज फिर से हम बात करेंगे खेती के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और चर्चा करेंगे कौन सी फसल हमारे लिए हो सकती है फायदेमंद। आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं।
4: मक्का विश्व की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। मक्का में विद्यमान अधिक उपज क्षमता और विविध उपयोग के कारण इसे खाद्यान्न फसलों की रानी कहा जाता है। वर्तमान में इसका उपयोग मानव आहार के अलावा कुक्कुट आहार, पशु आहार और बीज के रूप में किया जा रहा है। मक्का की खेती लगभग सभी प्रकार की कृषि योग्य भूमियों में की जा सकती है, परंतु अधिकतम पैदावार के लिए गहरी उपजाऊ दोमट मिट्टी उत्तम होती है, जिसमें वायु संचार व जल निकास उत्तम हो तथा जीवाश्म पदार्थ प्रचुर मात्रा में हो।
5: मक्का देश में उगाई जाने वाली एक प्रमुख अनाज वाली फसल है। यह धान एवं गेहूं के बाद तीसरे नंबर पर आती है। देश में कुल मक्का की खेती लगभग 8.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में होती है तथा इसका उत्पादन 22 से 23 मिलियन टन प्रतिवर्ष होता है। लेकिन मक्का की औसत उपज देश में बहुत ही कम है, जो 3 टन से भी कम है, जबकि विश्व में मक्का का औसत उपज लगभग 5 टन है। मक्का की अधिक पैदावार लेने के लिए आवश्यक है कि मक्का को उगाने की उन्नत कृषि तकनीकियों का प्रयोग करें। सबसे प्रथम आता है कि मक्का की बुआई कैसे करें। मक्का की बुआई करने के लिए बलुई भूमि, बलुई दोमट एवं चिकनी दोमट भूमि बहुत अच्छी होती है तथा भूमि की अच्छी प्रकार से तैयारी कर लेनी चाहिए। भूमि की 2-3 जुताई करके पाटा लगाकर समतल कर देना चाहिए तथा उसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी बुआई कर देनी चाहिए। मक्का की बुआई के लिए उन्नत किस्मों का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि किस्में अच्छी होंगी तो पैदावार भी अच्छी होगी। मक्का की लिए उन्नत किस्में पूसा कंपोजिट 3, पूसा कंपोजिट 4, PEHM 5, PEHM 4, PMH 1, PMH 3, ये बहुत ही अच्छी किस्म है तथा इनसे मक्का की पैदावार 4.5 से 5 टन प्रति हेक्टर तक प्राप्त की जा सकती है। अतः किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी बुआई करें वे अच्छी प्रकार की किस्मों की ही बुआई करें। इसके पश्चात बीज की मात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेत में यदि पौधों की संख्या उचित होगी तो पैदावार भी अच्छी होगी। पौधों की उचित संख्या बीज की मात्रा पर बहुत निर्भर करती है। मक्का के लिए अगर दाने के लिए उगाई गई है तो 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। यदि मक्का स्वीट कॉर्न उगाई गई है तो उसके लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, यदि पॉपकॉर्न के लिए उगाई गई है तो 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है, तथा यदि मक्का की खेती चारे के लिए की जा रही है तो एक हेक्टेयर में 50 से 60 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। ध्यान रहे कि बीज बुआई करने से पहले उसको उपचारित करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर बीज को उपचारित करेंगे तो अनेक प्रकार के होने वाले कीड़े एवं बीमारियों के प्रकोप को काफ़ी कम किया जा सकता है। अतः मक्का के बीज को उपचारित करने के लिए बेविस्टीन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर देना चाहिए। इसके पश्चात कीड़ों से रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरपीड की 6 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके इसको बोना चाहिए। यदि बीज को उपचारित करके बोएंगे तो उन अनेक प्रकार की कीड़े एवं बीमारियों की रोकथाम आसानी से की जा सकती है। इसके बाद मक्का की अच्छी पैदावार लेने के लिए उसमें पोषक तत्वों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि विदित है कि मक्का को अपनी अच्छी बढ़वार के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एवं अन्य तत्वों की अच्छी बहुत ही मात्रा में आवश्यकता होती है। अतः आवश्यक है कि खेत की तैयारी के समय 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद मिलाकर अच्छी प्रकार से जुताई करके भूमि में मिला देनी चाहिए। इसके पश्चात मक्का की फसल के लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस एवं 60 किलोग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है। फास्फोरस एवं पोटेशियम तथा 25% नाइट्रोजन की मात्रा बुआई के समय दे देनी चाहिए। शेष बची हुई नाइट्रोजन की 25% मात्रा जब फसल 3 से 4 पत्ती की हो जाए तो उसमें छिड़काव कर देना चाहिए। इसके पश्चात 25% नाइट्रोजन की मात्रा को जब फसल 8 पत्ती की हो जाए तो उसमें समान रूप से छिड़काव कर देना चाहिए, तथा शेष 25% मात्रा को जब फसल में टेसल्स निकलने लगे तो उस समय उसका छिड़काव कर देना चाहिए। यदि किसान भाई मक्का में नाइट्रोजन की मात्रा बराबर रूप से चार समय पर छिड़काव करके देंगे तो उससे नाइट्रोजन के होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है और इससे फसल को नाइट्रोजन का अधिक फायदा मिलेगा। इसके पश्चात फसल में खरपतवारों की बहुत समस्या होती है। इसमें मक्का में अनेक प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले एवं नुकली पत्ती वाले खरपतवार फसल के साथ उगते हैं, तथा फसल में हम जो भी खाद, उर्वरक एवं नाइट्रोजन देते हैं एवं पानी देते हैं उसका एक बहुत बड़ा भाग खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं। अतः आवश्यक है कि फसल के नुकसान को बचाने के लिए खरपतवारों का प्रभावी रूप से नियंत्रण होना चाहिए। खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए फसल की बुआई के 1 या 2 दिन पश्चात प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, जिनमें सीमाजीन प्रमुख खरपतवार नाशी है, इसकी 1 से 1.5 किलो एक्टिव इंग्रेडिएंट मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। यदि यह हर्बिसाइड ना उपलब्ध हो तो पेंडीमिथिलीन नामक हर्बिसाइड को भी प्री इमरजेंस के रूप में छिड़काव किया जा सकता है। इसकी भी 1 से 1.5 लीटर मात्रा एक्टिव इंग्रेडिएंट की प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 400-500 लीटर पानी में छिड़काव कर समान रूप से छिड़काव कर देना चाहिए। इसके बाद जब फसल 20-25 दिन की हो जाए तो उसमें बाद में भी कई प्रकार के खरपतवार उगते हैं जिनसे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। इन खरपतवारों की रोकथाम के लिए एक हर्बिसाइड है खरपतवार नाशी हेलोसल्फुरान, इसकी 60 ग्राम मात्रा एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में लगभग 400-500 लीटर पानी में समान रूप से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। यदि यह खरपतवार नाशी ना उपलब्ध हो तो टेम्बोट्रिन नामक खरपतवार नाशी की 110 से 120 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट की प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 400-500 लीटर पानी में समान रूप से छिड़काव कर देना चाहिए। यदि खरपतवार नाशी उपलब्ध न हो और किसान भाइयों के पास मजदूरों की व्यवस्था है तो 25-30 दिन पर एक गुड़ाई भी की जा सकती है। इस प्रकार यदि खरपतवार नियंत्रित किए जाएं तो इससे फसल को बहुत फायदा होगा, पौधों की बढ़वार अच्छी होगी और पैदावार अच्छी होगी।
2: खेती किसानी से जुड़ी हुई और भी बातों को हम जानेंगे, उससे पहले लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। किसान साथियों, अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। खेती किसानी की जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं मक्का से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: मक्का की भरपूर उपज लेने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है। मक्के को भारी फसल की संज्ञा दी जाती है, जिसका भावार्थ ये है कि इसे अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ब्रेक के बाद। किसान साथियों, आइए जानते हैं कृषि के अलावा पशुपालन करके हम कैसे हम अपने आय के स्रोतों को और बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं पशु से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: आज विश्व में भारत दूध उत्पादन पर प्रथम स्थान पर खड़ा है। लगभग 134 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है और इतनी बड़ी संख्या में दूध का उत्पादन करने का कारण यही है कि हमारे पास पशुओं की जैव विविधता है, जिसमें गौवंश का एक प्रमुख स्थान है। ऐसा माना जाता है कि इस समय प्रति भारतीय को लगभग 285-290 ग्राम दूध प्रतिदिन मिल रहा है और इसमें योगदान भैंसों का भी है और गाय का भी है, विशेष रूप से देसी गायों का। आज हमारे देश में देसी गायों की 39 नस्लें हैं, जिनका विविधीकरण राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल ने किया है और इन 39 नस्लों में से 5 या 6 नस्लें प्रमुख रूप से ऐसी हैं कि जिनको हम दूध के लिए जाने जाते हैं, जैसे रेड सिंधी है, साहिवाल है, थारपारकर है, गिर है और कुछ हद तक राठी भी है। इन सभी नस्लों में एक खासियत ये पाई गई कि ये दूध जो देती हैं उसके लिए कोई हमें कोई बहुत विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जिस जलवायु में रहती हैं उस जलवायु के साथ समझाती हैं और इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता, जैसे कि इनमें क्षमता है कि अगर हमारे पास पोषण तत्व बहुत ज़्यादा रिच ना हो, सिंपल खाना हो, साधारण भोजन हो, तो भी उसके ऊपर सर्वाइव कर लेती हैं। मौसम बहुत गर्म हो या बहुत ठंडा हो, उस पर भी सर्वाइव कर लेती हैं। आज हमारे देश में हमने पाया है, हम पूरे भारतवर्ष में घूमे हैं, लद्दाख ऐसी जगह है कि जहाँ पर तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, वहाँ पर भी लद्दाखी कैटल है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कि टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर जाता है, वहाँ पर भी हमारी थारपारकर जैसी नस्लें हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय यही है कि देसी नस्लों में एक विशेषता है कि वो विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न जलवायु में, विभिन्न प्रोडक्शन सिस्टम में भी सर्वाइव करती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास इनकी आज स्थिति क्या है। देखिए, देसी नस्लों में एक थोड़ी सी कमी ये तो है कि वो दूध कम देती हैं, लेकिन इसमें देसी नस्ल के गौवंश का कोई इसमें योगदान नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है कि इस देश के अंदर जो गौवंश का उत्थान किया है, जो उसको पाला गया है, उसको जो हमने सिलेक्शन किया है, चुनाव किया है, वो कभी भी हमने दूध के लिए नहीं किया है। अक्सर लोग मेरे से बातें करते रहते हैं कि भाई देखिए देसी नस्लों का दूध तो बहुत कम है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो देसी नस्लों का चुनाव किया गया है पिछले 100 वर्षों में, 500 वर्षों में, 1000 वर्षों में, वो केवल दूध के लिए नहीं किया गया है। हम अपने गाय पालते थे कि हमारे गाय थोड़ा सा हमारे घर में दूध दे दें, उनके बछड़े पैदा हो जाएं, बछड़े बड़े होकर के खेतों में काम करें और कहीं काम करें, और साथ साथ हमें थोड़ा सा घी मिल जाए, थोड़ा सा दही मिल जाए, थोड़ा सा मक्खन मिल जाए, दैट्स ऑल। इसलिए हमें देसी नस्लों का मुकाबला विदेशी नस्लों से कतई नहीं करना चाहिए। आज जो विदेशी नस्लें हैं, चाहे वह होल्स्टीन फ्रिशियन हो, चाहे ब्राउन स्विस हो, चाहे जर्सी हो, इन सब का जो विकास हुआ है वो केवल एक ही उद्देश्य हुआ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध चाहिए। इसके विपरीत हमारी देसी नस्लों का विकास कई पर्पज से हुआ है। लेकिन फिर वही बात उठती है कि किसान आखिरकार इनको क्यों पाले। जब तक इन देसी नस्लों में कोई विशेष गुण नहीं होगा तो अपने किसान भाइयों को ये कैसे कहेंगे कि भाई आप देसी नस्लों को पालिए। तो उसका भी हमारे पास एक रास्ता है। हमने पाया है कि देसी नस्लों का जो दूध है उसमें कुछ विशेषताएँ हैं, हालांकि इसका वैज्ञानिक प्रमाण अभी आना बाकी है, लेकिन जैसा कि हम अपने पुराने ग्रंथों में, लिटरेचर में देखते हैं कि जो देसी नस्ल का गाय का दूध होता है उससे बनी जो घी होता है, उससे बना जो मक्खन होता है, ना केवल उसका स्वाद ही अलग होता है बल्कि उसमें ऐसे गुण होते हैं, उनमें ऐसी प्रतिरोधक क्षमता होती है कि कई बीमारियों में या तो वो बीमारी होने ही नहीं।

0: केजिन प्रोटीन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है A1 और एक होता है A2। उन्होंने ऐसा पाया कि जो लोग A2 प्रोटीन वाला दूध ज़्यादा पीते हैं उनमें हृदयघात, उनमें शुगर, उनमें कुछ नर्वस सिस्टम, ऑटिज़म या हाथ कांपना या और इस टाइप की बीमारियां काफ़ी कम पाएगी, जबकि जो लोग A1 टाइप का दूध पीते हैं उनमें ही बीमारियां ज़्यादा पाएगी। और इसको सिद्ध करने के लिए हमने राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो में कुछ प्रयोग किए और हमने आज जो देश में 39 नस्लें हैं देसी पशुओं की, उनमें से 28 पशुओं में हमने शोध करके पाया कि ये बात बिल्कुल सही है। और A2 मिल्क का जो फ्रिक्वेंसी है या उसमें जो उसकी प्रतिशत है, वो जो दूध वाली नस्लें हैं 4-5 उनमें तो लगभग 100% पाएगी, और जो और नस्लें हैं जो दूध और खेती का भी काम करती हैं लेकिन वो जीबू की कैटेगरी में आती हैं उनमें भी लगभग 97% 98% पाया गया।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भिलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: इसके विपरीत हमने जब ये देखा कि जो हमारे संकर नस्ल की गाय का दूध है या जो विदेशी नस्लों के गाय का दूध है उसमें स्थिति क्या है, तो उसमें स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। ज़्यादातर विदेशी नस्लों की गाय के दूध में या ज़्यादातर संकर नस्लों की गाय के दूध में A1 की मात्रा अधिक थी और A2 की मात्रा 30 या 40% थी। अब इसका मेरा कहने का सीधा यह अभिप्राय नहीं है कि हमें ये सिद्ध कर दिया है कि हमने A1 दूध पीने से ये बीमारी होती है। अभी शोध कार्य चल रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 3 वर्षों के अंदर हम ये प्रमाणित कर सकेंगे कि A1 दूध से ये होता है या ये नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो हमारी देसी नस्लों की गाय है, देसी नस्ल के जो पशु हैं, उनमें कई गुण हैं। असल में उनका चुनाव जिस पर्पज से किया है उसमें आप देखें तो उनकी जो खाल है उस खाल में जो पसीने की ग्रंथियां हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। पर स्क्वायर सेंटीमीटर उनकी संख्या विदेशी नस्लों की गाय से बहुत ज़्यादा है।

0: उससे क्या लाभ होता है? उससे लाभ ये होता है कि अगर वो गाय गर्म वातावरण में बैठी है तो पसीने निकाल करके वो अपनी गर्मी निकाल सकती है। आप देखते हैं कि उनकी जो खाल होती है बड़ी लूज होती है, जो विदेशी पशु है उनकी तरह से टाइट नहीं होती है। इससे क्या होता है कि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है उसके जो, और पूंछ उसकी लंबी होती है, पूंछ लंबी होने से क्या फ़ायदा होता है कि वो अपने ऊपर मक्खी मच्छर जो बैठते हैं उनको आसानी से उड़ा सकती है। इन सब को प्रकृति ने उनको ये वरदान दिया है कि ढीली ढाली खाल होगी, गल कंबल होगा, लंबी पूंछ होगी, हम्प होगा, इन सब से वो जो इस वातावरण के अंदर जो बीमारियाँ होती हैं या गर्मी से लड़ने की शक्ति होती है उनको ज़्यादा मिली है। इसके साथ साथ ऐसा पाया गया है कि जो इनकी योनि होती है उसमें योनि जो द्वार होता है वो भी पतला होता है, यहाँ तक कि इनके जो टीट्स होते हैं थन के अंदर जो निपल होते हैं उसका द्वार भी पतला होता है, तो संक्रामक रोग होने की जो पॉसिबिलिटी है वो इनमें कम होती है, क्योंकि विदेशी नस्लों की जो गाय है उनमें योनि द्वार भी थोड़ा सा बड़ा है और जो टीट्स हैं वो उसके निपल में जो छिद्र है वो भी ज़्यादा बड़ा है, उनकी पूंछ भी छोटी है, उनके शरीर में जो खाल है उसके अंदर जो पसीने की ग्रंथियां हैं वो भी इनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि वो उस वातावरण में नहीं है तो इस वातावरण में वो नहीं पली हैं। अब इन सबको देखते हुए ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि अगर गर्मियों से लड़ने की क्षमता है तो हमारे देसी गायों में है, अगर बीमारी से लड़ने की क्षमता है तो हमारे देसी गायों में है। कुल मिलाकर के कोई भी पशु चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, अगर उसका उत्पाद अधिक नहीं बढ़ाएंगे तो हम ज़्यादा समय तक उसका संरक्षण नहीं कर सकते हैं। उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, आजकल राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक बहुत प्रचलित है, नेशनल डेयरी प्लान है, इन सभी का उद्देश्य यही है कि जो हमारी देसी पशु देसी नस्लें हैं गौवंश की उनका संरक्षण किया जाए और उनका आनुवंशिक रूप से विकास किया जाए ताकि वो दूध ज़्यादा से ज़्यादा दें, और जब वो दूध ज़्यादा देंगी तो किसान को लाभ होगा, जब किसान को लाभ होगा तो निश्चित ही वो देसी पशुओं की नस्लों को अपने पास रखेंगे, अन्यथा आज नहीं तो कल वो बेकार समझ करके छोड़ दी जाएंगे। यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री ने भी अभी एक कहीं पर ये कहा था कि हमारे देश के जो किसान हैं उसको हम इस तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि वो ना केवल इस देशवासियों का पेट भरे, ना केवल इन देशवासियों को दूध उत्पादन से हृष्ट पुष्ट बनाए, बल्कि इतना दूध उत्पादन हो कि वो किसान की जेब भी भरे, तभी हमारे इस देश के अंदर हरित क्रांति आएगी, श्वेत क्रांति आएगी और इस देश के किसानों का भला होगा।
1: किसान साथियों, अभी आपने पशुओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना, साथ ही आपने भारत देश की गाय और उसके गुणों के बारे में जाना। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और आइए सुनते हैं इस सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।

0: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टाइंटेबिल 90.8 एफएम के साथ छाबुआ की आवाज। किसान साथियों, आइए सुनते हैं एक सफल किसान की दास्तां।
1: पशुपालन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? सामान्य तौर पर जवाब में दूध, दूध से बने उत्पाद और खाद का जिक्र मिलता है। शख्स है जो पशुपालन करके कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं, जिससे मिलने वाला मुनाफा भी कई गुना है। इतना ही नहीं, 15 तरह की अलग अलग गतिविधियों को भी संभाल रहे हैं, जो प्रकृति और पशु दोनों के अनुकूल है। गायों का चारा खिला रहे ये है किसान सुरेंद्र अवाना जी, जिन्होंने 2016 में डेयरी व्यवसाय की शुरुआत सिर्फ 2 गायों से की, लेकिन आज उनकी मेहनत और सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके डेयरी फार्म में आज करीब 195 गाय हैं। शुरुआत में कुछ मुश्किलों का सामना करने के बाद आज सुरेंद्र जी पशुपालन के साथ साथ मछली पालन, 22 तरह का चारा उत्पादन, जैविक खाद बनाना, बागवानी, गोबर से ईंट बनाना, गोबर से गमले बना रहे हैं।
2: यहाँ 15 तरह की एक्टिविटी हो रही है, जैसे खाद बनाना है, मछली पालन है, बहुवर्षीय चारा है, फ्रूट के पौधे हैं 12,000 आदि, इस तरह का काम कर रहे हैं। शुरू में जब स्थापना की, लोगों ने कहा कि ये क्षेत्र क्यों चुना है, यहाँ तो पानी नहीं है, यहाँ मिट्टी में बजरी है या टीले हैं, तो इसमें आप लोग सक्सेस नहीं होगे। तो हमने ये ठानी कि इस जगह को ही चुनकर इसी में सक्सेस होके दिखाना है। जो किसान ये कहते हैं कि पानी नहीं है, हम कैसे खेती करें, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आ जाओ मेरे फार्म पे, देखो हमने 4 पौंड बना रखे हैं और ये पूरा शेड है इसका, देखिए आप, पूरा पानी पौंड में जा रहा है। तो इस तरह से हम इसका शेड का, हमारी खाद फैक्ट्री का, चारों तरफ के स्टाफ क्वार्टरों का सारा पानी है वो पौंड के अंदर बरसात का बचा के और उससे खेती कर रहे हैं। और दूसरा, मिट्टी यहाँ की खराब है, उसके लिए हम देखिए गोबर और गोमूत्र से खाद बना रहे हैं, जो भी आपको दिखाएंगे, उस खाद से और पूरे फार्म की जो मिट्टी हल्की है उसको हम धीरे धीरे गोबर गोमूत्र से ठीक करके और उपजाऊ है। आज आप देखिए पूरा फार्म पे हमारा 22 तरह का बहुवर्षीय चारा और सारे फलों के पौधे हैं। तो इस तरह से हमने ये डेयरी की स्थापना की।
1: सुरेंद्र जी कृषि की गतिविधियों को पूरा करने के लिए बारिश के पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी की उपलब्धता बनी रहे इसके लिए उन्होंने 4 तालाब बना रखे हैं, जिनमें बारिश का पानी एकत्र कर लिया जाता है और उसी पानी से उनका हर काम आसानी से संपन्न हो जाता है। इन्हीं तालाबों में मछली पालन भी किया जाता है। सुरेंद्र जी मानते हैं कि कृषि और पशुपालन से अच्छा कोई व्यवसाय नहीं है। युवा अगर इस ओर ध्यान दे तो अपना ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। वो मानते हैं कि अगर पशुओं की सही देखभाल की जाए तो मुनाफा 2 गुना नहीं, कई गुना किया जा सकता है। पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके फार्म हाउस में पशु अस्पताल भी खोला गया है, जिसका लाभ आसपास के पशुपालक भी लेते हैं।
2: गोबर से और गोमूत्र से, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हम जैविक खाद बना रहे हैं और पशुओं के अपशिष्ट से बेस्ट प्रबंधन करके, जैसे गाय का गोबर गोमूत्र है, उसके अलावा बकरी की मींगनी जो हमारे फार्म पे है, भेड़ की मींगनी, ऊंट के मींगने आदि निकलती है, जैसे जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, डोलोमाइट है आदि मिनरल, और ये पशुओं के अपशिष्ट मिला के हम जैविक खाद बना रहे हैं। इस खाद को हम हमारे फार्म पे पहले यूज किया, यहाँ अच्छा रिजल्ट आया, उसके बाद हम आसपास के किसानों को दिया। 2-3 साल से जो किसान खाद ले जा रहे हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम है। अब दूर दूर तक हम एजेंसी देके इस खाद को प्रमोट कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं।
1: सुरेंद्र जी की सफलता के पीछे पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का समावेश है। वो मानते हैं कि समय के साथ नई तकनीकों को तो अपनाना ही चाहिए, साथ ही पुरानी विधियों से भी शिक्षा लेनी चाहिए। ये समावेश ही हमें आगे ले जाने में मददगार साबित होते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ। किसान साथियों, आज आपने मक्का से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, साथ ही भिन्न भिन्न प्रकार की गायों और गायों के दूध के गुणवत्ता के बारे में आपने जाना। किसान साथियों, अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे से कल पुनः मुलाकात होगी खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए आपके अपने प्रोग्राम खेती बाड़ी में।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम खेती बाड़ी में। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई चर्चा को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं झाबुआ के मौसम का हाल। किसान साथियों, अगर हम बात करें झाबुआ के मौसम की, तो झाबुआ का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस, कल की वर्षा 2.2 मिलीमीटर, 1 जून से अब तक की कुल वर्षा 69.8 मिलीमीटर नापी गई है। किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाता आया है। आज भी हम चर्चा करने वाले हैं कुछ और खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। खेती बाड़ी से जुड़ी इन जानकारियों को शुरू करने से पहले आइए मिलते हैं नवापाड़ा भंडारिया के पास बरोड़ गाँव के एक किसान से और सुनते हैं उनकी मुजबानी।
2: हमारा ना जमाना में बाकी खातर वगैरह कहीं नहीं था, हीरू
3: खातर वगैरह कहीं नहीं था
2: सर। पाक भी मर भी जो खातर ना को पाक मरा नहीं मरा, लाभे नहीं उठाड़ी भी जगह तू कर।
3: हाँ, मतलब जगह में इतना वसी होने क्या मार
2: वसी होने
3: पहले को तो अपना गोबर खातर ना क्या जाता थे
2: वस्ते लो
3: वस्ते लो वो कोई जरूरत नहीं आती आप पर। हाँ, ना आते हैं हमने नहीं ना खातर नोते एक साल इहों ये इतना मिले पहले को आते साल फिर डबल मिलो पड़ी रहो
2: बेहतर दिंगा आज मुट मावा तो अपन पाक ले सकी नहीं तो नहीं पाक ले मैं आलू नहीं सके जमा पे जमे हो करी सके
3: जमे हो करी सके
2: કેમ કે મૂળ નું ખાતર હોય તો પાકે નહીં તે નહીં પાકે
3: યાદ આવ જેવું તેવું પાછા આપડ આપણું ગોબર ખાતર પાછું નાખી નાખીને જગા વધારી
2: વધારી આપડે એના એક એક બે બે ડગરા માં ખાતર નહીં થયું ને ગેડો પણ ડગરા મળે નહીં ને
3: હમટા ડગરા નહીં મળે ક્યાં પેલખા તો હમટા મનક ઓછું પણ ડગરા વધુ
2: વધારે હતા ને જેમ કે તું ખાતર વાપરતો એટલે આ ખાતર કા વાપરી
3: રહ્યા આવતે ઉકેડા દેખાય નહીં
2: દેખાય નહીં
3: છોરા ભૂલી ગયા ઉકેડા પુનાન કે
2: નાખવાર હતું નહીં મળે કે હું નાખી લીધી મૂળ ને ખાતર પાળી રહ્યા આપણું જગા ઉપર લઈને બેઠા નહીં પાકે આલે જ્યાં તક ખાતર નહીં આવી ત્યાં તક પાક ભી નહીં આલી રહી।
1: કિસાન ભાઈઓ, જેમ કે હમણે આપું ચર્ચા કરતેલા ચર્ચામાં જેમ કે આપણ કિસાન ભાઈએ આપણને કીધું કે કિકમ આપણ રસાયણિક ખાતર નાખી નાખીને આ આપણી જગા બી રસાયણિક ખાતની આદિ થતી જઈ રહી અને હા આપણ જરૂરત હે કે આપણું એની જગાને કિકમ વધારી શકીએ। કિસાન સાથીઓ, અભી આપને ભૂમિ સે જુડી હુઈ કુછ સમસ્યાઓ કો કિસાન ભાઈ કે મુંહ સે સુના ઓર आइए हम आज के आज हम इसी बिंदु को लेंगे और चर्चा करेंगे कैसे हम जो हमारी भूमि में जो हमारी भूमि जो बदल चुकी है जो ठोस हो चुकी है पहले कैसे हम डायरेक्ट गोबरी खाद का इस्तेमाल करके हमारी कृषि करते थे लेकिन आज समय बदल चुका है रासायनिक खादों का प्रयोग करते करते आज हमारी जमीन जो है जो ठोस होती जा रही है उसे हमें कैसे निजात पाया जा सकता है कैसे हम इससे बच सकते हैं और कैसे हम हमारी भूमि को पुनः सजीव बना सकते हैं जानेंगे एक्सपर्ट की राय।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जैविक कृषि के बारे में, केचुआ पालन को लेकर, वर्मी कंपोस्ट को लेकर, भूमि को सजीव बनाने की भिन्न भिन्न विधियों को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे हमें किस तरह कैसे गोबरी जैविक खाद की मदद से हम हमारे जो हमारी रासायनिक भूमि है उसे हम कैसे पुनः सजीव बना सकते हैं और साथ ही जानेंगे जैविक खाद बनाने के महत्वपूर्ण विधियों के बारे में। उससे पहले आइए डालते हैं एक नज़र इस रिपोर्ट पर।
4: अधिक पैदावार की चाहत में किसान खेतों पर रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये रसायन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक असर डाल रहे हैं। यही कारण है कि जागरूक किसान अब तेजी से जैविक खेती का रुख करने लगे हैं। जैविक खेती में सबसे लोकप्रिय है वर्मी कंपोस्ट। इसका उपयोग तब ज्यादा आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ खेती की जाए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे जरूरी गोबर का उपलब्ध होना होता है। गाय के गोबर को पोषण का सर्वाधिक श्रेष्ठ विकल्प माना जाता है, जिसमें पौधों के लिए जरूरी सभी सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। इन सूक्ष्म तत्वों को पौधे या फसलें बड़ी आसानी से अवशोषित कर लेती है। वर्मी कंपोस्ट विधि का प्रचलन अन्य विधियों की तुलना में कहीं सरल है। इसमें खाद बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, साथ ही इसका भंडारण भी सहज होता है। इसके अलावा पैदावार भी ज्यादा मिलती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलन में है, जिनमें से मुख्य है पेड़ विधि। पेड़ के चारों ओर गोबर गोलाई में डाला जाता है। हर रोज गोबर को डालकर धीरे धीरे इस गोल चक्र को पूरा किया जाता है। पहली बार प्रक्रिया शुरू करते समय गोबर के ढेर में थोड़े से केचुए डालकर गोबर को जूट के बोरे से ढक दिया जाता है। नमी के लिए बोरे के ऊपर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है। केचुए डाले गए गोबर को खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और अपने पीछे वर्मी कंपोस्ट बनाकर छोड़ते जाते हैं। इस तैयार वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा करके बोरों में भरकर रख लिया जाता है। बेड विधि। इस विधि में छायादार जगह पर जमीन के ऊपर 2 से 3 फुट की चौड़ाई और जरूरत के हिसाब से लंबाई के बेड बनाए जाते हैं। इन बेड़ों को बनाने के लिए गोबर, जानवरों के नीचे बिछाए गए घास फूस, खरपतवार के अवशेष का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। बेड की ऊंचाई करीब 1 फुट रखी जाती है। बेड को पुआल या घास से ढक दिया जाता है। इस तरह जितनी जरूरत हो उस हिसाब से बेड बनानी चाहिए। शुरुआत में पहले बेड में केचुए डालने होते हैं, जो कि उस बेड में गोबर और जैव भार को खाद में बदल देते हैं। एक बेड की खाद बन जाने के बाद केचुए खुद ही दूसरे बेड में पहुंच जाते हैं। इसके बाद पहले बेड से वर्मी कंपोस्ट अलग करके छान कर भंडारित कर लिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वर्मी बेड़ों में भरे गए कचरे में कंपोस्ट तैयार होने तक 30 से 40% नमी बनाए रखनी चाहिए। कचरे में नमी कम या अधिक होने पर केचुए ठीक तरह से कार्य नहीं करते। वर्मी बेड में कचरे का तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। यदि बेड पर तेज धूप पड़ती है तो तेज धूप पड़ने से कचरे का तापमान अधिक हो जाता है और केचुए तली में चले जाते हैं और अक्रियाशील होकर मर जाते हैं। वर्मी बेड में ताजे गोबर का उपयोग ना करें। ताजे गोबर में गर्मी अधिक होने के कारण केचुए मर जाते हैं। इसके लिए करीब 4 या 5 दिन पुराना गोबर लें। केचुआ खाद बनाने के दौरान किसी भी तरह के कीटनाशकों का उपयोग ना करें। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का इस्तेमाल ना करें। फसलों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। केचुआ खाद भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता ही है, साथ ही मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में भी इजाफा करता है। वर्मी कंपोस्ट वाली भूमि में खरपतवार कम उगते हैं, जिससे रोग भी कम लगते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है, साथ ही भूमि में जैविक क्रियाओं को बनाए रखता है। इसके अलावा फल, सब्जी, अनाज की गुणवत्ता में सुधार आता है, जिससे किसान को उपज का बेहतर दाम मिलता है।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન। આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान भाइयों, आपने वर्मी कंपोस्ट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, कैसे हम केचुआ पालन कर सकते हैं, केचुआओं के लिए क्या क्या वातानुकूलित जगहें होती है, कैसे किस जगह पर हम केचुआ पालन कर सकते हैं, साथ ही आइए जानते हैं वर्मी कंपोस्ट द्वारा की गई खेती से हमें क्या फायदे हो सकते हैं, कैसे की जाती है, कैसे हमें इसका प्रयोग करना चाहिए और कैसे हम ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी को।
2: वर्मी कंपोस्ट के फायदे को समझते हुए देश में बहुत सारे संस्थान इसे बनाने से लेकर इसके लाभ को जन जन तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के हर पहलू को व्यावहारिक तौर पर करके दिखाया जाता है। यहाँ पर विज्ञान की प्रोफेसर के रूप में कार्यरत मीनाक्षी करवाल के मार्गदर्शन में वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
3: वर्मी कंपोस्टिंग एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसके बारे में मुझे मेरे कॉलेज से पता चला। इसको हम अपने घर में भी प्रयोग कर रहे हैं। किचन का जो बचा कुचा अनकुक्ड वेस्ट होता है उसका प्रयोग, उसको हम डीकम्पोस्ट करके उसका ऑर्गेनिक यूटिलाइजेशन कर रहे हैं।
4: घरों में जो केचुआ खाद है, केचुआ खाद का प्रयोग हम कई रूप से कर सकते हैं। जो घरों में सड़नशील पदार्थ यानी कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस निकलते हैं, उनका प्रयोग करके हम इसे अपने बागवानी और किचन गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे परिणाम हमें देगा।
3: वर्मी कंपोस्टिंग के प्रोजेक्ट के बारे में हमें हमारी मैम मीनाक्षी मैम से पता चला और ये बहुत ही यूजफुल एक्सपेरिमेंट है, जिससे हमें हमारे एनवायरमेंट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और इससे ये बहुत ही ऑर्गेनिक है और इससे हमारे एनवायरनमेंट एंड हमारी हेल्थ को बहुत ही फायदा होता है।
2: यहाँ हर उस छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जाता है जो इसके निर्माण में जरूरी है। इस संस्थान में इससे जुड़े सारे उपकरण मौजूद है और इसमें बेहतर से बेहतर तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए वनस्पतिक कचरा जैसे कि कृषि अवशेष, नीम के पत्ते, हरी व सूखी पत्तियां, सड़ी गली सब्जियां और फल, घरेलू कचरा एवं पशुओं के गोबर आदि का प्रयोग किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट के लिए इएसेनिया फैटिटा प्रजाति के केचुए का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की एक पूरी प्रक्रिया है और इसमें अलग अलग पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। वर्मी कंपोस्टिंग को मिट्टी, चीनी मिट्टी के बर्तन या प्लास्टिक टब में किया जा सकता है। इसे जमीन में गड्ढे बनाकर या क्यारियां बनाकर भी कर सकते हैं। गड्ढे की चौड़ाई लगभग 1 मीटर तक रखें और जगह की उपलब्धता के अनुसार लंबाई तय की जा सकती है। गहराई 1 मीटर के आसपास रखनी चाहिए। क्यारी की पहली सतह 4 से 5 सेंटीमीटर बालू बिछाकर बनाएं। इसके ऊपर दूसरी सतह पत्तों या भूसा आदि से बनाएं। इसके ऊपर जिस वनस्पति पदार्थ से आप कंपोस्ट बनाना चाहते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर गोबर में मिलाकर बिछा दें। इस कचरे को 18 से 20 दिन तक गलाने के बाद ही वर्मी रिएक्टर में डालना चाहिए, नहीं तो केचुए नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद 1000 केचुए प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊपरी सतह पर छोड़ दें। इसके बाद सतह पर पानी डालें और इसे किसी चीज से ढक दें। केचुए सूर्य का प्रकाश और अधिक तापमान सहन नहीं कर सकते, इसलिए केचुआ खाद के उत्पादन के लिए छायादार जगह का होना जरूरी है। यदि पेड़ की छाया उपलब्ध ना हो तो लकड़ी गाड़ कर कच्चे घास फूस का शेड बनाया जा सकता है। शेड में समय समय पर नमी का भी ध्यान रखना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट 30 से 60 दिनों में तैयार हो जाता है। जब वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाए तो इसकी ऊपरी सतह भुरभुरी दानेदार चाय पत्ती जैसी होती है। इसको जमा करने के लिए पहले 3 से 4 दिन तक पानी गड्ढे में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से केचुए नीचे चले जाएंगे। हाथ से खुरच कर छोटे छोटे ढेर बना लेने चाहिए। हल्का सूखने पर जमा कर ले। कंपोस्ट को छायादार स्थान में सुखा कर 25 मिलीमीटर की छलनी से छानकर उपयोग करने के लिए पॉलीथिन में भर लेना चाहिए।
5: वर्मी कंपोस्टिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे खाद बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग से केंचुए की मदद से हम खाद बनाते हैं और इसमें या तो आप इसे धरती के ऊपर या फिर धरती में गड्ढा खोद के भी बना सकते हैं। धरती के अंदर जो आप गड्ढा खोद के बनाते हैं उसमें हमें यही ध्यान रखना है कि हम इसका जो चौड़ाई है वो 1 मीटर तक रख सकें और लंबाई आपकी जगह की सुविधा अनुसार से आप कितना भी इसे लंबा कर सकते हैं और इसका जो गहराई है वो 1-1.5 फुट से ज़्यादा ना हो। पानी जो है नमी बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है और हमें ध्यान रखना है कि 60-70% तक हम इसमें नमी को मेंटेन करें और इस वजह से गर्मियों में हर रोज हम इसमें पानी छिड़कते हैं और सर्दियों में हम एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तक हम इसमें नमी के लिए पानी छिड़क सकते हैं। हम इस बात पे भी ध्यान रखते हैं कि हमारा जो वर्मी कंपोस्टिंग पिट है वो छायादार जगह में हो। इसके लिए हम आप शेड लगा सकते हैं या फिर हम छायादार जगह में भी इसको बना के उस खर्चे को बचा सकते हैं। और तीसरी बात ध्यान रखने वाली है कि केंचुओं को ज्यादातर जो नेवला है या फिर पशु पक्षी हैं ज्यादातर वो खा सकते हैं, तो इसको हम उनसे बचा के रखें। इसके लिए आप उस पे पिट के ऊपर बोरी लगा सकते हैं ताकि वो उनसे दूर रहे और सुरक्षित रहे।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी हम सुन रहे थे, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमें कूड़ा कचरा जो हमारी किचन से निकलने वाला वेस्ट है उसको हम डाल सकते हैं। साथ ही आइए जानते हैं कौन से ऐसे कचरे हैं, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो हमें अपने वर्मी कंपोस्ट में नहीं डालना चाहिए, जिसे डालने से हमारे जो केचुए हैं वो मर सकते हैं। आइए जानते हैं।
2: वर्मी कंपोस्ट को बनाने के दौरान कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए। पकाया हुआ खाना, प्याज, नींबू, खट्टे और जहरीले तत्व वर्मी रिएक्टर में नहीं डालने चाहिए। वर्मी रिएक्टर की क्यारियों को धूप और बारिश से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कचरे को वर्मी रिएक्टर में डालने से पहले 20 दिन तक सड़ने देना चाहिए। इससे सड़ने के दौरान जो गर्मी निकलती है उससे केचुओं को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। समय समय पर कचरे को हिलाते रहना चाहिए जिससे वर्मी रिएक्टर में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध रहे और वैसी विषैली गैसों का निर्माण ना हो सके जो केचुओं के लिए नुकसानदायक है।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। आपके लिए खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। दोस्तों, यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे वर्मी कंपोस्ट खाद से हम कौन कौन सी खेती कर सकते हैं और उस खेती से क्या क्या लाभ हम उठा सकते हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: इस विराम के बाद पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत।
2: काम करना बहुत ही हमारे लिए सही रहेगा और प्रदूषण रहित पर्यावरण देने में सहयोगी रहेगा
3: तथा इसके प्रति जागरूकता फैलाने की। ऐसे में वर्मी कंपोस्ट न केवल बड़े पैमाने पर किसानों के जीवन में खुशहाली ला सकता है बल्कि हमारे प्रकृति के मोहक स्वरूप को बरकरार रखने में अपनी सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: किसान साथियों, आइए बढ़ाते हैं वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियों को और सुनते हैं एक सफल किसान से वर्मी कंपोस्ट को कैसे प्रभावशाली और उपयोगी बनाया जा सकता है।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: आप ध्यान रखना है, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्री चाहिए, जिसमें सबसे पहले है प्लास्टिक की सीट। प्लास्टिक की जो सीट है उसमें ये ध्यान रखना है कि वो फटी हुई ना हो। उसके बाद में हमको चाहिए गोबर। गोबर जो है वो कम से कम 5 से 7 दिन पुराना होना चाहिए और उसकी गर्मी निकल जाए, तभी उस गोबर को डालें। इसके बाद हमें चाहिए चारा फसल के अवशेष। लेकिन चारा फसल का जो अवशेष है उसमें ये ध्यान देने की बात है कि अगर अच्छी गुणवत्ता वाला चारा है तो उसको वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए काम में नहीं ले। अगर इस चारा फसल के अवशेष के साथ में हर जगह नीम होता है तो नीम के पत्ते डाल दिए जाए तो और उसकी गुणवत्ता जो

0: और इसको जिस फसल में भी काम में लेंगे उसके अंदर कीड़े और बीमारी का प्रकोप भी नीम के कारण कम होगा। इसके बाद हमको चाहिए खेत की मिट्टी। खेत की मिट्टी में ध्यान देने की बात है कि ऐसी वस्तुएं जो नहीं सड़ती है नहीं गलती है उनको छांट करके अलग कर दे। केचुए की जो बेड लगा रहे हैं उसके अंदर 50-60% पानी होना चाहिए, तो पानी जो है साफ जगह से लेना चाहिए, गंदा पानी काम में ना ले जाए तो ध्यान रखें। सबसे पहले जो है अपन प्लास्टिक की सीट जो है वो ज़मीन के ऊपर बिछाएंगे। इसको हम चाहे तो खड्डा खोद कर भी कर सकते हैं, और अगर ज़मीन की कमी है और कोई शहरों के अंदर रहते हैं तो वो लकड़ी की मचान वगैरह बना करके भी इसको वर्मी कंपोस्ट को कर सकते हैं। खड्डा खोद के भी प्लास्टिक की सीट लगाना इसलिए ज़रूरी है या समतल जगह इसलिए लगाते हैं ताकि उसके अंदर जो भी पोषक तत्व है वो पानी जो ऊपर से डालेंगे वो नीचे बह करके नहीं जाए। चारा फसल का अवशेष जो है इसको अपन डाल रहे हैं, ये कम से कम 3-4 इंच की एक परत लगाएंगे। चारा फसल अवशेष की जो तय लगाई है उसके बाद में हम जो है पानी का छिड़काव करेंगे। प्रत्येक परत के बाद में पानी का छिड़काव करना अनिवार्य है। ये जब लगाते हैं उस टाइम की बात है, उसके बाद में हमको इतना पानी डालना है कि उसके अंदर 50-60% नमी बनी रहे। अगर सर्दी का समय है तो हमको 2-3 दिन में एक बार पानी डालना है, और गर्मी के टाइम में 1 दिन में सुबह के टाइम में पानी इसमें डालना है। चारा फसल के अवशेष के साथ में नीम की पत्तियां जो है वो भी मिक्स कर दी जाए, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये जो गोबर और मिट्टी का जो मिश्रण डाला है उसकी भी जो परत है वो 3-4 इंच बड़ी होगी, और इसके ऊपर पानी छिड़क रहे हैं। वर्मी कास्ट जिसके अंदर केचुआ और केचुआ के अंडों का मिश्रण है जिसको हम अब इस बेड के अंदर डालेंगे, और इसको समान रूप से पूरे बेड के अंदर अपन को बिखेरना है। केचुआ जो होता है वो 0-40 डिग्री तापक्रम तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अधिक क्रियाशील तब होता है जब बेड के अंदर 28-32 डिग्री तापक्रम और 50-60% नमी होती है। 1 किलो केचुआ 24 घंटे के अंदर 1 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद बना देता है। अब इसके ऊपर हम गोबर की वापस एक परत लगाएंगे जो 3-4 इंच बड़ी होगी। अब पुनः हम इसके ऊपर हल्का हल्का पानी छिड़केंगे। केचुए के जो मुर्गी है, मेंढक है, चूहे है, कुत्ते हैं, नेवला और गिरगिट, ये इसके दुश्मन है, तो इनको हमको बचा के रखना है। अंत में हम जो है नीम की पत्तियां और जो चारा फसल के अवशेष है उन दोनों को मिला करके अंतिम एक परत जो है इसके ऊपर 3-4 इंच की लगाएंगे। बस ध्यान रखने की जो बात है वो ये है कि इस बेड की ऊंचाई जो है वो 1.25 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब ये चाय की पत्ती के समान नज़र आने लग जाए तो 2-3 दिन तक इसमें पानी छिड़कना बंद कर दें, और खुली जगह में जहाँ सूर्य की रोशनी आ रही है वहाँ पर इसका ढेर लगा दें। तो जब ढेर लगाएंगे तो इसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो केचुए जो है वो उस खाद के अंदर ढेर में घुस जाएंगे, और ये इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट खाद जो है बन करके तैयार हो जाती है। जिस प्रकार से आपने देखा कि परत दर परत हमने जो है वर्मी कंपोस्ट की बेड लगाई है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से ही लगाई जाए। ये सारी जो सामग्री है उसको इकट्ठा करके हम सीधा ही उसको वर्मी कंपोस्ट की बेड लगा सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट खाद का पैकेट है जो बिल्कुल एकदम से चाय की पत्ती की तरह नज़र आ रहा है। ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद है इसके अंदर ये विशेषता होती है कि इस खाद के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको पैराट्रॉपिक झिल्ली कहते हैं। ये पैराट्रॉपिक झिल्ली जो है सिंचाई जल के वाष्पीकरण को कम करती है, तो इससे किसान भाइयों को ये फ़ायदा होता है कि जहाँ 5 पिलाई कर रहे हैं अगर वहाँ पे 3 पिलाई करेंगे तो फसल की पैदावार जो है उसमें कोई कमी नहीं होगी। वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर एंटीबायोटिक होता है, इसलिए इसको जिस फसल में भी आप काम में लेंगे उसमें बीमारियाँ कम लगेगी। जिस खेत में भी इस खाद का उपयोग किया जाएगा उसके अंदर खरपतवार कम उगेंगे, दीमक की समस्या नहीं होगी और सफ़ेद लट नहीं लगेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रासायनिक उर्वरकों की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर और सस्ता विकल्प है जिसके मार्फत हम ये वर्मी कंपोस्ट खाद की एक घर पे फैक्ट्री लगा सकते हैं। आप देखें कि DAP और यूरिया की कोई किसान फैक्ट्री नहीं लगा सकता, लेकिन रासायनिक खादों की जो निर्भरता बढ़ती जा रही है वो वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से हम कम कर सकते हैं। अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की जो खाद होती है उसकी तुलना में इसके अंदर 5 गुना नाइट्रोजन, 6 गुना फास्फोरस और 4 गुना पोटास होता है। जिस जगह 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद की जरूरत होती है वहाँ मात्र वर्मी कंपोस्ट 3 टन की ही आवश्यकता होती है। ये वर्मी कंपोस्ट खाद जो है हम फल फूल और सब्जी वाली फसलों के अलावा अनाज वाली फसलों में भी उपयोग में लिया जा सकता है। फल फूल और सब्जी की अगर खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें डालना चाहिए, उसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। और जहाँ फील्ड क्रॉप है, जो फसल लगा रहे हैं, वहाँ पे 5 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से डालते हैं और सब्जी वाली फसलों के अंदर 7.5 टन प्रति हेक्टर की दर से डालते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम जानेंगे एक सफल किसान की कहानी। उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं प्यारे से भीली गीत को।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपनी बातें।
1: किसान साथियों, कार्यक्रम की अगली कड़ी में आइए सुनते हैं एक सफल किसान की दास्तां।
2: मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ।
1: भीड़ से हटकर सोचना, भीड़ से अलग होकर चलना, इनकी अपनी एक पहचान है।
2: 10 से 20 साल पहले यही रासायनिक खेती करता और जो लोग कर रहे हैं वही खर्चा करता, लेकिन मैंने धीरे धीरे ये देखा कि पैदावार 1-2 साल जरूर बढ़ती है इससे, और 1-2 साल पैदावार बढ़ने के बाद में मैंने देखा कि हर साल इसकी मात्रा बढ़ाना पड़ती है अपन को, चाहे खाद हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे हर्बिसाइड हो, हर साल इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा अपन को बढ़ाना पड़ती। तो मेरा भी 20 साल पहले का ही बता रहा हूँ आपको कि इतना लेवल आ गया था 15 से 20 साल पहले का कि जो अपन खर्चा जितना लगा रहे हैं इसमें उतना खर्चा बराबर ही हो जाता है, समझो कुछ भी नहीं बचता है, सारी चीजें बाजार से क्रय करने में ही अपना जो आमदनी आती वो लग जाती है। तो मैं थोड़ा सा परेशानी में आ गया था कि क्यों ना अपन इस खेती को कुछ चेंजेस करें या कुछ अलग हटके करें। तो पहले तो मैं औषधि की तरफ मुड़ा, तो औषधि फसल में मैंने सर्वप्रथम जीरा और अजवाइन और काल में एक तुलसी अश्वगंधा इसके ऊपर थोड़े थोड़े एरिया में एक एक क्यारी क्यारी में डेमोनेशन के रूप में डाला और उससे देखा सीखा अपन ने कि इसमें दूसरी फसलें हैं उसकी तुलना में क्या अपन को प्रॉफिट मिलता है। तो मेरे को जो परंपरागत फसलें थे उससे करीब 2 गुने से 3 गुने तक उसमें प्रॉफिट मिला। मैं जब भी कोई 70 साल का 75 साल का 80 साल का जो बुजुर्ग रहता है तो शाम सुबह कम से कम आधी घंटा तो उसके पास में मैं बिताता हूँ, चाहे मेरे गांव का हो, चाहे पास के गांव का हो, चाहे जिले का कोई भी हो। तो मैं उनको बात जटिलता से ये सीखता कि आप पहले कोई खाद डालते या कोई पहले आप दवाई डालते, तो बोलते कि बिल्कुल भी नहीं डालते। तो मैंने उनसे चीज़ें सीख के क्षेत्र में शुरू करा तो लोग कुछ लोग तो पागल समझते कि यार ये तो खाद नहीं डाल रहा है, नहीं ये तो ये नहीं कर रहा, तो इसको क्या पैदा होगी और इससे क्या क्या उत्पादन मिलेगा। उस साल मैंने जो यील्ड कमाई, जो उपज कमाई, वो जो दूसरी किसान कमा रहे थे उससे समझ लो कि 20% उपज मेरे को ज़्यादा मिली। मेरे को धीरे धीरे इसकी तरफ किसानों को भी जो बताने के लिए भी हो गया कि सर्टिफाइड भी आपको कराना जरूरी है जैविक खेती के साथ में। तो मैंने किसी का 1st ईयर है, किसी का 2 साल है, किसी का 3 साल है, ऐसे करके कम से कम 75 से 100 किसान को मैंने जो सर्टिफाइड करवाया है। और उनका मार्केट की जहाँ समस्या आती है तो मैं उनके जो जहाँ जैविक हाट लगते हैं, जैविक जो फार्मर का जो प्रोडक्ट खरीदती है कंपनियाँ, उनसे मैंने मिलवाया और उनका जो प्रोडक्ट है वो उनके वहाँ पे, जैसे मैं पूरे सभी तरह की क्राप तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ, तो कोई ग्रेन पैदा कर रहा है, कोई पल्सेस दाल पैदा कर रहा है, कोई फूल भी पैदा कर रहा है गेंदा का, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक कहाँ पे मार्केट है उनका और ऑर्गेनिक कौन खरीदता है। तो उनका पैदावार से लगा के मार्केटिंग तक का करवा रहा हूँ, तो लोग भी खुश है। 10 एकड़ जमीन वाला यदि एक 30x10 का यदि एक वर्मी कंपोस्ट का शेड बना ले तो मैं समझता हूँ कि उसको बाजार से कोई खाद पानी लाने की जरूरत नहीं है। और ये देख रहे हो ये जो दवाई बनाने का है, इसकी विधि भी मैंने बताई, कुछ खाद भी अपना घर का, दवाई भी अपने घर की, प्रोडक्ट ऑर्गेनिक के आपके पैसे भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो इससे बढ़ के और क्या खेती हो सकती है जैविक खेती। अश्वगंधा, तुलसी, शतावरी, कोच, तुलसी दो तरह की लेता हूँ, राम तुलसी, श्याम तुलसी, काल में अजवाइन, हल्दी, अदरक और गराड़ू, मेथी दाने, कलौंजी, स्टेविया, मूसक दाना, यहाँ तक कि इसबगोल और चंद्रसूर, कम से कम 15 से 20 तरह की फसलें खरीब और रबी की मैं मेडिसिनल फसल उगाता हूँ। और जो फील्ड में जाके भी मैं बताता हूँ, जैसे बहुत सारे क्षेत्र में वो नरवाई जलाने का प्रचलन है, तो वहाँ पे मैं जाके बताता हूँ उनको कि आप 1 एकड़ में गेहूं की नरवाई जला रहे हो तो आधा एकड़ में जलाओ आप, और आधा एकड़ में गेहूं के जो डंठल रहते हैं उसको रोटावीटर से उसी में मिलाओ खेती में, और इस आधा एकड़ का और उसका जो नरवाई जलाई उसका अंतर आपको पानी गिरेगा वहीं से मालूम पड़ जाएगा। यदि आपने रोटावीटर से जो नरवाई अंदर रोटावीटर से मिलाई है उसमें फर्स्ट पानी जो गिरेगा तो वो खेत से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा, उसकी पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी। और जो आपने नरवाई जलाई है उसमें जो ऊपर से जीवाणु बैक्टीरिया जो 1-2 इंच के जो ख़त्म हो गए उसमें आपको पानी बिल्कुल भरा हुआ दिखेगा या बखेत से बाहर जाता हुआ दिखेगा।
0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि एवं जैविक खेती के लाभ, तकनीकी विधियां आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। लीजिए दोस्तों, हमारे साथ आज मौजूद हैं रेखा कामत जी, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, जो गायकी है रेखा जी की, उसको विटनेस करेंगे हम आज, उसको देखेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे, अपनी आत्मा, अपनी सोल में उतारेंगे उस म्यूजिक को। देन वी विल नो हाउ एग्जैक्टली अ टैलेंट कुड एक्चुअली राइज। रेखा कामत मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज के कलाकार के इस नए एपिसोड में। हमारे सभी सुनने वाले, जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं आज के कलाकार के, वो इंतजार कर रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए, आपकी म्यूजिक को जानने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को समझने के लिए। तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बहुत थोड़ा सा हमें बताइए ना, भला कौन है आप, हु आर यू एंड वेयर आर यू एंड व्हाट डू यू डू।
1: ओके, थैंक यू समीर जी। मैं हूँ रेखा नाडकर्णी कामत। मैं अपने आप को नाडकर्णी कामत बुलाती हूँ। मैं बेंगलुरु की हूँ और यहाँ करीबन 12-13 साल से सेटल हुए हैं हम। इससे पहले हम लोग चेन्नई में थे कुछ सालों के लिए, और मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, सो माय इन्फ्लुएंस ऑफ मुंबई इज मोर ऑन मी देन ऑफ द अदर स्टेट्स। सो मैं एक बैंकिंग प्रोफेशनल थी। सो इन 2020 जब कोविड हुआ तो मैंने ये अर्ली रिटायरमेंट लिया, और उसके बाद मैं एक फिनटेक कंपनी, मेरे एक दोस्त के साथ मैंने एक फिनटेक कंपनी में ज्वाइन किया, मलेशियन बेस्ड फिनटेक कंपनी, और उधर एक 4 साल तक मैं उनके साथ थी। फिर मैंने सोचा कि अभी बस हुआ, मुझे थोड़ा अपना हॉबीज से हॉबीज को आगे लेना है, म्यूजिक को आगे लेना है, कोई सोशल सर्विस करना है, इसलिए मैंने छोड़ दिया, काम छोड़ दिया। और अब तो मैं पिछले 5 सालों से म्यूजिक में हूँ, और फिर हमारे मठ में सोशल सर्विस करती हूँ, सेवा करती हूँ। अच्छी तरह से चल रहा है लाइफ।
0: ऑलराइट, तो दोस्तों आपने जाना कि रेखा जी कौन है, कहाँ है, क्या करती हैं। चलिए एक ये प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन तो आपका रेखा जी से हो गया, रेखा जी को थोड़ा बहुत आपने समझ लिया। अब आपको रेखा जी के म्यूजिक से भी मिलवाते हैं, जरा उससे भी मिलिए, उसका भी मजा लीजिए, उसकी भी पर्सनालिटी को समझिए। लीजिए पेश करता हूं ये गीत जो रेखा जी ने बहुत प्यार से हमारे लिए तैयार किए।

0: बहुत खूब रेखा जी, क्या स्टार्ट,
1: थैंक यू,
0: अमेजिंग। और रेखा जी, आपने पीछे जो कहा ना आपने इंट्रोडक्शन में, तो उसमें से मेरे को एक बात सुनाई दी और एक सवाल मन में उठ गया। तो आपके म्यूजिक के बारे में अभी बात करते हैं, लेकिन हमारे दोस्तों के लिए और खास करके मेरे लिए, पर्सनली मेरे लिए बहुत इंक्विजिटिव हो रहा हूं मैं ये जानने के लिए कि आपने कहा आप मुंबई में ही पैदा हुए, इज दैट राइट?
1: यस,
0: ओके। और इसके बाद आप मतलब पढ़ाई लिखाई बड़े हुए सब कुछ मुंबई में हुआ, करेक्ट?
1: हाँ, सब कुछ मुंबई।
0: मुझे ये बताइए, मुंबई की लाइफ, उसकी मुंबई में, मुंबई की भी अपनी एक पर्सनालिटी है, अपनी एक शख्सियत है, मुंबई की पर्सनालिटी ने आपकी पर्सनालिटी पर क्या असर डाला है? आप कैसे मुंबई से इन्फ्लुएंस होकर किस तरह के इंसान बने हो, जरा ये बताइए ना।
1: मुंबई एक ऐसी जगह है, इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। मैं जहाँ पली थी, बड़ी हुई थी, वो विले पार्ले करके एक सबब था मुंबई में। तो हम एक सोसाइटी में रहते थे, कम्युनिटी में रहते थे, और उधर का वातावरण बहुत अलग है इधर से, बेंगलुरु से या चेन्नई से। तो वहाँ वी वे अबाउट 62 फैमिलीज, एंड एक दूसरे से इतना मिलाप था, और यू नो इट वाज लाइक अ वन बिग फैमिली। हम लोग फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, और बचपन में तो फ्रेंड्स की बहुत ही, फ्रेंड्स से बहुत लगाव होती है। तो हम साथ में खेलते थे, साथ में बाहर जाते थे, पढ़ते थे, और छोटे छोटे घर थे वहाँ पे। फिर भी हम लोग बहुत खुश थे उधर। अगर कोई आया वन बेडरूम किचन में, हमारे हमारे उनके लिए भी जगह थी सोने के लिए। तो मुंबई इज दैट टाइप ऑफ अ सिटी विच वेलकम्स एनी वन और एवरी वन इन टू देयर फोल्ड, एंड दैट इज अ कल्चर विच हैज गॉन इन टू मी, इट्स इम्बाइब्ड इन मी, एंड यू नो आई फील वेरी प्राउड टू से कि यू नो आई एम फ्रॉम मुंबई ऑलवेज। ओके, सो वो एक यू नो दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड थिंग इज आई वॉज इन मुंबई फॉर 21 ईयर्स। तो आफ्टर दैट मेरी शादी जल्दी हुई और मैं चली गई वहाँ से, बट इसलिए मैं उधर काम नहीं कर सकी, सो आई विल नॉट बी एबल टू टॉक अबाउट एनी वर्क एरिया इन मुंबई। बट द पीपल, मेनली द पीपल, द वे दे आर सो फोर्थकमिंग, सो हेल्पफुल। एंड इवन आज भी मैं मुंबई गई तो मुझे कुछ फर्क नहीं नजर आ रहा है। आई फाइंड दैट सेम अपनापन इन द पीपल, इवन इफ यू डोंट नो अ पर्सन एंड यू आर इन नीड, ओके यू आर ऑन द रोड, यू आर इन नीड ऑफ समथिंग, देयर विल बी टू और थ्री पीपल कमिंग एंड हेल्पिंग यू आउट। सो दैट इज मुंबई फॉर मी।
0: वाओ, अमेजिंग। मतलब मेरे पूछने, अगर इसको थोड़े से डिफरेंट एंगल से अगर मैं कहूं, मेरा पूछने का मतलब ये था कि जैसे बड़े नॉर्मल रूटीन लैंग्वेज में कहते हैं ना, अरे यार तुम तो बम्बैया हो, बम्बैया। सो हाउ मुंबई एक्चुअली मेक्स अ पर्सन बम्बैया, वो मैं जानना चाह रहा था कि मुंबई ने आपको बम्बैया कैसे बना दिया।
1: मेरे ख्याल से मुंबई एक हैप्पी गो लकी सिटी है।
0: ओके,
1: वहां के लोग ऐसे बहुत ज्यादा किसी एक चीज पे एक चीज लेके नहीं बैठते, ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आज कुछ हुआ, अच्छा बुरा कुछ हुआ, वो इन्वॉल्व होंगे वहां पे, बट कल से अपना काम शुरू करेंगे,
0: एज
1: इफ नथिंग हैज हैपेंड। सो दैट इज बम्बैया।
0: ओके, दैट्स नाइस। बस यही रेखा जी, बस यही तो सुनना चाहता था मैं कि उनकी ऑलवेज लिविंग स्पिरिट जो है, हाँ, कोई परवाह नहीं पड़ता, उनकी स्पिरिट इतनी स्ट्रांग है, इतना कुछ झेल, हाँ, लेते हैं, नुकसान हो जाता है, ब्लास्ट हो जाते हैं, फिर भी दे आर ऑलवेज लाइव, दे आर ऑलवेज गोइंग, दैट्स द ब्यूटी ऑफ मुंबई, ब्यूटीफुल।
1: यस,
0: चलो दोस्तों, आज एक खालिस, बिल्कुल ही खालिस, एकदम पक्के मुंबईया से मुलाकात हुई रेखा जी से मिलकर। चलिए दो बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से गीत रेखा जी के ही गाए हुए मैं पेश करूं, एंड देन विल कम बैक टू नो अबाउट द म्यूजिक ऑफ रेखा जी।

0: What a start. Beautiful. क्या बात है.
1: थैंक यू समीर जी.
0: चलो रेखा जी, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की अभी इच्छा है, लेकिन अपने दोस्तों को ना थोड़ा सा आपके म्यूजिक से मिलवाते हैं. उन्होंने सॉन्ग आपके सुन लिए, उनको पता चल गया है कि व्हाट इज योर टेक्सचर, व्हाट्स योर पैशन इन द म्यूजिक, योर डेप्थ, एवरीथिंग. लेकिन आप अपने मुंह से बताओ मैम, ये आपने पीछे कहा ना कि मुंबई से 21 साल के बाद यू गॉट मैरिड एंड यू वेंट टू सम अदर सिटी एंड देन यू गॉट बिजी एंड देन यू हैड बीन अ प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल बैंक में थे ना, आपने बताया था शायद. एंड देन आपको इतना वक्त शायद नहीं मिला कि आपने अपने कोई अपने पैशन को परस्यू करते. एंड देन यू गॉट अ चांस टू स्टार्ट परस्यूइंग योर पैशन विच इज सिंगिंग, राइट. एक बात बताओ रेखा जी, why singing only? इतना वक्त गुजर गया था, कोई और पैशन भी तो हो सकता था, सिंगिंग ही क्यों, म्यूजिक ही क्यों, अचानक म्यूजिक की तरफ कैसे घूम गई आप?
1: ओके, why music? Because मैं बचपन से म्यूजिक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग हॉबी रहा है बचपन. इन द सेंस मैं आपको बताऊंगी तो शायद आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा संगीत का सफर शुरू हुआ तब मैं सिर्फ 9 महीने की थी. मेरी माँ बताती थी कि बताती है अभी भी वो बोलती हैं कि रेडियो पे, तब उन दिनों रेडियो पर एक लोकप्रिय मराठी राष्ट्रगीत अक्सर बजाया करते थे. तो एक दिन जब वो मुझे गोद में लिए बैठी थी तो उन्होंने मुझे गुनगुनाता हुआ सुना.
0: Oops.
1: तो वो सॉन्ग, वही गीत, तो वो थोड़ी हैरान हो गई और उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया और पूछा, जो मैं सुन रही हूँ आप भी सुन रहे हो क्या? तो वो कंफर्म हो गया कि यू नो इट वाज द सेम सॉन्ग दैट वाज गेटिंग प्लेड इन द रेडियो दैट आई हैड पिक्ड अप. मैं तो बात नहीं कर सकती थी तो गुनगुना रही थी. सो दैट्स हाउ माय म्यूजिक जर्नी स्टार्टेड. सो आई थिंक दैट इज that was there in my blood because my parents, my father and his brothers, cousins and all always used to sing bhakti geet and you know they used to sing, means they were all, it was a hobby for them. So probably that came to me also and I never looked beyond music. Yes, maine to ek 2-3 saal bharatnatyam sikha hai lekin उसके म्यूजिक टुक द यू नो प्रायोरिटी ओवर डांस. सो दैट्स व्हाई आई एम सो मच इनटू म्यूजिक. उसके बाद यू नो लाइक यू सेड आफ्टर मैरिज इट टुक अ बैक सीट बिकॉज ऑफ काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए थे और बच्चे थे, करियर था, घर संभालना पड़ा. इसलिए फॉर अबाउट 20-25 years आई जस्ट हैड टू स्टेप असाइड. और फिर मैंने 2020 में फिर से शुरू किया गाने.
0: वाओ रेखा जी, आप गुस्सा मत करना, लेकिन 9 महीने की उम्र में, 9 महीना राइट,
1: नाइन मंथ्स
0: की उम्र में आपने गुनगुनाना शुरू किया. नाउ दैट इज स्लाइटली स्केरी, डर लग रहा है सुन के. अरे यार, कोई भी मम्मी अपने 9 महीने की बच्ची को गुनगुनाते सुनेगी गोद में तो वो डरेगी नहीं क्या? ओह माय गॉड. अच्छा, बट ऑलराइट, दिस इज जस्ट अ लाइटर पार्ट ऑफ इट. लेकिन डू यू एक्चुअली रिमेम्बर व्हिच वाज दैट सॉन्ग व्हिच यू हैड बीन हमिंग?
1: Mummy remembers.
0: Okay, kaunsa?
1: It is called, it's a Marathi Rashtragit. It is called Manus Kicha Shatru Sange Yuddha Amuche Suru Jinko Kimha Maru Jinko Kimha Maru.
0: Whoa.
1: So it was, music diya tha isko Vasant Desai ji ne aur singer the Mahendra Kapoor ji. Ye ek film ka song tha, Chota Jawan Kar.
0: महेंद्र कपूर, ओ माय गॉड, महेंद्र कपूर तो मतलब पैट्रियोटिक सॉन्ग्स में गॉड है, आई अंडरस्टैंड. अच्छा, रेखा जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ना, वो वाला जो सॉन्ग है जो अभी आपने बताया मराठी में, है ना, कैन यू पॉसिबली ट्राई सिंगिंग वन लाइन थिंकिंग दैट यू आर ओनली 9 months ओल्ड? ट्राई करो ना, ट्राई करो ना, अच्छा लगेगा. पतली सी प्यारी सी बच्ची की आवाज में ट्राई करो ना. वाओ दोस्तों, कुड यू कैच इट? सुना आपने भाई? ठीक है, 9 महीने की एक बच्ची इसी तरीके से तो हमिंग करेगी ना यार. वाओ दैट इज सो क्यूट. अच्छा रेखा जी, मुझे सच बताना, बिल्कुल सच बताना, दिल पे हाथ रख के बोलना, आपको 9 महीने की उम्र में ले गया था ना मैं अभी?
1: हाँ.
0: आप थे ना वहीं पर अपनी मम्मी के पास, अपनी मम्मी की गोद में, छोटा सा 9 महीने का बेबी, एंड देन यू हैड बीन हमिंग. दैट इज सो ब्यूटिफुल. चलिए, मुझे खुशी हुई कि मैं कुछ तो आपके काम आया, आपको लेकर गया आपकी 9 महीने की जिंदगी में. वाह. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा गीत सुनते हैं जो रेखा जी ने हमारे लिए रिकॉर्ड किया है. देन विल कम बैक हियर.

0: Alright, amazingly beautiful. चलिए वापस आते हुए आपके म्यूजिक के बारे में थोड़ी सी एक बात और करते हैं फटाफट. नंबर वन, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, किस तरीके का म्यूजिक आपको पसंद है? तो मैं कैटेगराइज कर देता हूँ, बॉलीवुड, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक, मराठी, मे बी सूफी, मे बी यू नो गजल, भजन. आपने बताया अभी आपके मम फादर एंड ब्रदर दे आर सिंगिंग भजन इन मराठी. सो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, नंबर वन. नंबर टू, जल्दी से मुझे अपने फेवरेट सिंगर मेल एंड फीमेल्स के बारे में बताइए.
1: पहला क्वेश्चन आपका था कि विच टाइप ऑफ सॉन्ग्स आई लाइक, राइट?
0: म्यूजिक.
1: हाँ, तो म्यूजिक. ओके, सो मुझे सॉफ्ट और सेमी क्लासिकल गाने बहुत पसंद है. भजन, अभंग, भक्ति गीत गाने में मुझे बहुत मजा आता है. मैं अपने मठ में, हमारा मठ है बेंगलुरु में, और मंदिर में भजन गाती हूँ. उधर हारमोनियम, तबला और साइड रिदम के साथ वातावरण ही अलग होता है. okay. और वो भक्ति रस से भरा हुआ होता है. तो दिस इज अबाउट द भजन एंड अभंग. क्यों मुझे सॉफ्ट और सेमी क्लासिकल पसंद है? बिकॉज आई फील माई वॉइस इज मेंट फॉर सॉफ्ट एंड सेमी क्लासिकल गाने. तो मैंने ट्राई किया है हल्ला गुल्ला सॉन्ग्स, बट मुझे लगता है कि मुझे सॉफ्ट और सेमी क्लासिकल से रहना चाहिए. मुझे वो पसंद है.
0: okay.
1: और टू आंसर योर सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी, इसके अलावा मुझे हिंदुस्तानी क्लासिकल सुनने में बहुत पसंद है. मैं क्लासिकल कॉन्सर्ट्स में जाती हूँ. मुझे ये क्लासिकल क्लासिकल रागास जब मैं सुनती हूँ तो

0: मुझे बहुत शांति मिलती है, मुझे मेरा स्ट्रेस होता है वो दूर हो जाता है, इसलिए म्यूजिक इज अ वेरी ब्यूटिफुल वे टू रिलीव योर स्ट्रेस ऑल्सो. सो दीज आर द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट आई लाइक. वेयर फेवरेट सिंगर इज कंसर्न, वैसे तो आई थिंक हिंदुस्तानी म्यूजिक इज वेरी ब्यूटिफुल, और देर आर मेनी मेनी सिंगर्स हु सिंग ब्यूटिफुली, बट मैं तो वो दो बहनों के साथ हमेशा लगी रहती हूँ, वो है लता जी और आशा जी, और दे आर माई फेवरेट सिंगर्स. उनके उनके गानों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. लता जी के जो छोटे छोटे हरकत होते हैं और वो ठहराव होता है, वो गाना सिंपल लगता है लेकिन आप जब गाने के लिए शुरू करेंगे तो पता चलता है कि कितना कठिन है और कितना रियाज करना चाहिए एक गाना गाने के लिए. सिमिलरली विद द आशा जी, उनका तो बहुत क्लासिकली बेस्ड गाने बहुत है, तो वो सीखने में मुझे बहुत, मीन्स आई डोंट सिंग इट परफेक्टली बट मुझे वो सीखना बहुत पसंद है. सो दीज आर माई टू फेवरेट्स समीर जी.
1: वाह, आई गेट योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट। बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, हमने ये भी जाना अभी कि रेखा जी की म्यूजिक में पर्सनल पसंद क्या है, वो किस तरीके के गीत गाना पसंद करती हैं, और सिंगर्स कौन से सिंगर्स हैं जिनको वो आइडियलाइज करती हैं। बहुत खूब, चलिए ना पेश करता हूं ये गीत जो रेखा जी की ही आवाज में हमें वापस सुनने को मिलेंगे। आनंदित होइए, डूब जाइए।

0: बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। नाउ रेखा जी, अब आपकी पर्सनालिटी पर वापस आते हैं, ठीक है। हम आपके म्यूजिक तो सुन ही रहे हैं और उसके बारे में हम अपने अंदर बहुत सारी यू नो इमेजिनेशंस और विजुअलाइजेशंस एंड एक इम्प्रेशन हम बना ही रहे हैं, कोई फाइट नहीं है। लेकिन अब आपके बारे में जानना चाहते हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो यूजुअली हम अपने आप से भी नहीं पूछ पाते, भूल जाते हैं, वक्त नहीं मिलता या हम अपने आप को अरेंज नहीं कर पाते। तो उसी तरीके के कुछ सवाल आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट इंट्रोस्पेक्शन भी हो सके और हमें आपके बारे में जरा जानने को भी मिल जाए। ओके ना?
1: ओके।
0: अब सबसे पहले ये बताओ मेरे को, अगर आपको ये पता होता आज तक की जिंदगी में, इफ इट ऑल यू वुड हैव नोन कि कोई आपको जज नहीं करेगा किसी भी हरकत के लिए, कोई नहीं कहेगा कि अरे ये क्या कर रही हो बचपन से लेकर आज तक है और ये तो गलत है और ये है वो है, अगर कोई आपको जज नहीं कर रहा होता तो आप इस पूरी दुनिया से अलग क्या करती? कुछ ना कुछ होता है हमारे मन में जो हम चाहते हैं, अरे यार अगर मेरे को फ्री हैंड दे दिया जाता ना तो मैं ये कर डालता, ऐसा कुछ?
1: मैं वैसे आई एम क्वाइट अ स्पिरिचुअल पर्सन, सो प्रोबेबली आई वुड हैव गॉन एंड सेटल्ड इन अवर मठ, क्योंकि उधर का वातावरण इतना अच्छा रहता है, इतना अच्छा रहता है, इतनी शांति होती है उधर, और आई कांट एक्सप्लेन कि जो मेरे मन में जो फीलिंग आता है वहाँ जाके, तो वो बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है।
0: ऑलराइट, तो आर यू ट्राइंग टू से कि आपको जब से आपने होश संभाला, चलिए बच्चे थे तो नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जब से होश संभाला और आपको ये लगा कि अगर मैं बिल्कुल आजाद होती तो ये करती, तो आप क्या उसी वक्त से आप मठ में जाना चाहती?
1: मैं जाती हूँ अब भी मठ में, साल में 2-3 बार जाती हूँ, लेकिन देर आर रेस्पॉन्सिबिलिटीज समीत जी, विच इज इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मैंने जो बोला इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर कुछ भी नहीं होता तो मैं उधर जाके रहना पसंद करती।
0: राइट, आई गेट इट, बहुत खूब। तो दोस्तों इस तरीके के कुछ, सच बोलूं आपको, इस तरीके के कुछ ख्याल मेरे भी दिमाग में काफी समय तक आते रहे, अभी भी हैं और मैं काफी नजदीक हूं उस चीज के। मैं हमेशा सोचा करता था कि अगर मेरे बस में होता और जिंदगी ने कभी कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मेरे साथ कर दिया कि आई वुड बी लेफ्ट ऑल अलोन, तो एक जगह है विच इज देयर इन माई माइंड, मैं उसको विजुलाइज भी करता हूँ और उस मंदिर में जाके मैं बैठ भी चुका हूँ, देख भी चुका हूँ। सो हमेशा ही विजुलाइज करता कि मैं उस मंदिर में जाकर उस एक रॉक के नीचे जाकर दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर बैठ जाता फॉर एवर, एंड देन बुक्स बुक्स और बुक्स और बुक्स और बुक्स पढ़ता रहता। वहां पर लोग बाग आते हैं कि अरे अरे बाबा बैठा हुआ है, इसको कुछ भीख दे देते हैं, कुछ खाने को दे देते हैं, तो मैं उनसे बहुत बहुत पोलाइटली बोलता कि इफ यू वॉन्ट, मतलब गॉड ब्लेस यू किड, इफ यू वॉन्ट गिव मी समथिंग गिव मी अ बुक, तो वो भी कहते हैं पागल है क्या, ये किताब वाला बाबा है। सो दोस्तों मेरा पूछने का मतलब यही था कि अगर आपके दिल में कुछ ऐसा है जो आप आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हैं, सो थिंक अबाउट इट, समडे यू वुड बी एक्चुअली एबल टू डू इट। चलिए इन द मीनवाइल इट्स गहरे विचार को सोचते सोचते रेखा जी के गीतों को ना भूल जाएं, आइए ना लुत्फ उठाएं उनके इन गीतों का।

0: बहुत खूब, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटीफुल रेखा जी। रेखा जी मुझे ये, या थैंक यू, मुझे ये भी बताओ जिंदगी में अभी लेट्स से कुछ 5 सालों की बात कर लें, लेटेस्ट 5 ईयर्स यूं कह लीजिए कोविड के बाद, है ना, कोविड के बाद का जो भी जिंदगी रही है, जमाना रहा है, क्या उसने आपको कुछ नया सिखाया? डिड यू लर्न समथिंग, समथिंग न्यू?
1: जी हाँ, कोविड में मैं कोविड से बात करूंगी क्योंकि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन यू नो ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टर कोविड। सो जब कोविड आया तो हम लोग सब घर में थे, तो तभी की बात है हमने कुछ फ्रेंड लोगों ने मिलकर एक ऑनलाइन म्यूजिक ग्रुप चालू किया, उसका नाम था गुरुप्रसाद स्वरमाला। बेसिकली माय फ्रेंड्स फ्रॉम मुंबई वेयर आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप, सो हमने वो शुरू किया और हम लोग स्टार मेकर पर गाते थे और यू नो वी यूज्ड टू डू ऑनलाइन शोज and we used to do online videos. So, तब मुझे बहुत सीखने को मिला क्योंकि मुझे ये video making में बहुत interest है। तो वो मैं अपना interest अपने मेरे एक friend को, he's an expert, so उससे मैंने सीख के मैंने videos सब बनाने शुरू किए besides singing. So that's when it started the journey with music again. और कोविड के बाद दैट इज आफ्टर 23 ओके व्हेन पीपल कुड स्टेप आउट एंड ऑल दैट, हमने सुभाष जी मेरे पति और मैंने एक कैरोके ग्रुप चालू किया इधर बैंगलोर में। इट वाज बेसिकली फॉर इट वाज फॉर सीनियर सिटीजंस। वी स्टार्टेड विद 25 पीपल। वी वांटेड, वी सॉ कि हमने देखा कि सीनियर्स बहुत लोनली फील कर रहे थे और कोविड के बाद उनको बहुत कोविड बहुत इफेक्ट हुआ था ऑन एवरीबॉडी बट सीनियर्स वर फीलिंग इट मोर। सो जिनको गाने की गाने में इंटरेस्ट है लेकिन आज तक वो नहीं गा पाए, फॉर सम रीजन दे डिडंट गेट अ प्लेटफॉर्म, उन लोगों को हमने पूछ के हमने एक ग्रुप चालू किया। तो फ्रॉम 25 नाउ 2 ईयर्स लेटर वी आर 150 पीपल। इट्स नॉट ओनली सीनियर्स बट यू नो इवन द यंगस्टर्स हैव स्टार्टेड जॉइनिंग अस। वी मीट एवरी मंथ एंड अवर मोटो इज एवरीबडी कैन सिंग। सो हम लोग जज नहीं करते किसी को, हम लोग उनको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। हम घर में, हमारे घर में प्रैक्टिस सेशंस रखते हैं बिफोर द प्रोग्राम so that they get the confidence, and believe it or not, today the group is singing so well, so well, from what they were to what they are today. So isme, you know, you feel a lot of, there's a lot of satisfaction. Okay, so this is what I've been doing. And isme kaam rehta hai, like I do the videos after the program, we take all the, capture all the videos, we put it on our YouTube channel, so people feel important or they are very happy with, you know, this whole thing. So that is what I'm doing now after COVID.
0: Right. Amazingly beautiful. Dosto, jab Rekha ji abhi ye sari ki sari baat bata rahi thi na, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी स्टोरी बोल रही हूँ, क्योंकि कोविड के कुछ समय बाद ही हमारा ये रेडियो शुरू हुआ, आज के कलाकार का विचार दिमाग में आया और फिर धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। आज हमारी मोर देन 500 मेंबर्स की फैमिली है, अमेजिंग अमेजिंग सिंगर्स हैं, अमेजिंग सिंगर्स हैं। तो वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रेखा जी मेरी कहानी बता रही हो, my story had been hijacked but no, that is so beautiful, you know, dosto, ek chote se paudhe ko laga ke usko nurture karke bada karne ka jo anand aata hai na, wo Rekha ji ne paya hai. Kya aapke paas bhi wo koi isi tarike ka mauka hai, koi experience hai, hame bataiye na, bahut maza aayega. Bahut khoob Rekha ji, thank you so very much. क्या तो पर्सनालिटी है, क्या तो शख्सियत है, क्या विचार है और क्या संगीत है। ओ अमेजिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लगा। बस आज जो नई फैमिली आपने पाई, बात कीजिए उनसे, कहिए उनसे कुछ।
1: ओके, एज अ पार्टिंग नोट मुझे ये कहना है कि संगीत से जुड़े रहना, बिकॉज संगीत एक थेरेपी है। ये एक व्यक्ति के जीवन में बहुत शांति, बहुत बदलाव लाती है, पॉजिटिव बदलाव। और इट्स क्वाइट पॉसिबल, यू नो, द यंगस्टर्स हु आर लिसनिंग हियर ऑन द चैनल, इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग पॉसिबल, इट इज ट्रू कि आज आपको अपना करियर और करियर को बनाना और अपने परिवार की जिम्मेदारियां में व्यस्त हो जाते होंगे आप, लेकिन संगीत से हमेशा जुड़े रहना किसी भी तरह से, फॉर अ लिटिल वाइल। गाना गाते हो तो गाना सीख लीजिए, अगर वाद्य बजाते हो तो उस

0: वो सीख लीजिए, थोड़ा सा टाइम मे बी वंस अ वीक निकाल के ये जारी रखना, क्योंकि भविष्य में ये आपको शांति, खुशी और मानसिक शक्ति देने में बहुत सहायक होगा।
1: वाह, थैंक यू सो मच रेखा जी। मैं मानता हूँ हमने मैंने मैंने मैं अपनी बात करूं और आपकी बात में भी ये लगा था, हमने काफी सारा वक्त यूं ही जाने दिया, अपने पैशन को परस्यू नहीं किया, क्योंकि
0: हाँ
1: हमारे पर जिम्मेदारियां बहुत थी और ये है वो
0: सही।
1: है। वेल रेखा जी, मैं इसको एक्चुअली सच्चाई नहीं मानता, अगर पैशन होता, हमारे अंदर आग होती ना, तो हम उन सब जिम्मेदारियों के चलते भी कर लेते। बट चलिए, लेट आए कोई बात नहीं, लेकिन सही आ गए आप। सही, अब बच्चों को सलाह दे रही हैं कि अभी से बेटो, बच्चों शुरू करो, छोड़ना मत, क्योंकि ये बहुत प्यारा शांति का मार्ग है। तो दोस्तों, आपने सुना रेखा जी को, रेखा कामत जी को, कैसे तो वो बम्बैया हैं और क्या उनके विचार हैं। थैंक यू सो मच रेखा जी, बड़ा मजा आया आपसे बात करके।
0: थैंक यू सो मच समीर जी।
2: कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी ये दिल है के इसको जुनून है।
1: दोस्तों, आज के कलाकार के इस सुरीले से सफर में बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल आपके दिल में एक मीठी याद छोड़ गई होगी। दोस्तों, कुछ गीत खत्म नहीं होते, बस दिलों में बस जाते हैं, और जब भी याद आते हैं तो फिर से मुस्कुराहट बिखेर जाते हैं। तो हम फिर आएंगे नए सुरों और नए कलाकारों के साथ, तब तक अपने दिल को बस यूं ही गुनगुनाने दीजिए। नमस्कार।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः। आइए दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। एंड द गेस्ट वी हैव टुडे टू डिस्कस स्पिरिचुअलिटी एंड टू लर्न अबाउट रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी एंड इट्स प्रैक्टिसेस, वी हैव ए वी जयरमन सर। तो आगे बढ़ते हुए मैं बस उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में थोड़ा हमें बताएं, भला वो कहां हैं, क्या करते हैं, कौन है वो। सो जयरमन सर, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस ब्यूटिफुल लवली मॉर्निंग एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टॉक टू अवर लिसनर्स।
1: या आई एम जयरमन फ्रॉम बेंगलोर। सो आई ओरिजिनली I belong to Bombay during my school and college days, and then I completed my engineering in Bombay and started my career from Tata Electric, and then moved on to Middle East for my further career, and I would stay in Middle East, Saudi, Bahrain, UAE, Qatar, Muscat. Ultimately, from Muscat, I retired and then came and settled in Bangalore. So, but after my retirement, I chose another career. That is, I pursued medical alternate therapy in acupuncture and acutherapy, acupressure. I took master's diploma and then MD also in acupuncture, and then now I'm practicing in Satya Sai Hospital as a voluntary service. On weekly basis I go there and then practice at home also the same therapy, treating patients on a voluntary service. This is my
0: प्रोफाइल। गुड, ग्रेट। तो दोस्तों, आपको पता चला कि एवी जयरमन सर एक्यूप्रेशर के थ्रू भी कई सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। चलिए तो एवी सर, हम जिस बारे में बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हमारे जीवन में पूजा यानी कि भगवान से जुड़ने का बहुत सारे तरीके होते हैं और हम लोग उसमें बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, तो हम उसको नाम दे देते हैं अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी। किसी एक भगवान के बारे में बात ना करते हुए, ये जो पूरी विधा है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मेडिटेट करना, प्रेयर करना, भगवान के ध्यान में मग्न हो जाना, अपने आप को पीसफुल करना, इसको स्पिरिचुअलिटी अगर कहें, तो हमें थोड़ा अपने वर्ड्स में स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लेन कीजिए।
1: हाँ, एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी नो ब्रॉड वर्ड बोल सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी बचपन में कुछ अलग मीनिंग होता है। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी बेसिकली बचपन में हमको हमारे माता पिता हमको इंट्रोड्यूस करते हैं भगवान के श्लोक बोलने के लिए। सो दैट इज वेयर वी गेट इंट्रोड्यूस टू गॉड बेसिकली। तो मदर एंड फादर आर द फर्स्ट गुरुस हू टीच यू फ्यू श्लोकास एंड इंट्रोड्यूस टू गॉड। से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सुबह नाश्ते ना धो के भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं इसके सामने खड़ा हो जाओ, हाथ इस करके नहीं नो यू स्टार्ट चैंटिंग, दे विल टीच यू फ्यू श्लोकास, दैट इज स्टिल एम्बेडेड इन योर ब्रेन। बचपन में जो सीखते हैं वो काफी अस्त तक रह जाते हैं ब्रेन, तो मम्मी की इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। I remember going, to temples with the parents, and then papa ki thoda guzar gaye main 6 saal mein, so my mummy became my father and mother basically. So I was always traveling with my mummy. So mummy mujhe probation ke liye leke jaati hai. So that was a little high for me. उनके लिए ठीक होगा, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रवचन होते हैं, यू नो, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, तो स्वामी जी वहां बोलते थे सो हम बोलो, व्हेनेवर यू डू एनीथिंग यू टेल सो। सो हम का यू नो संस्कृत मीनिंग इज आई एम दैट, सी आई एम गॉड बेसिकली। तो उसको संस्कृत में सो हम बोल देते हैं। तो वो बोलते हैं तो आप चलते टाइम सो हम बोलो, कान भरने टाइम बोल सो हम बोलो, घर में यू नो यू आर कुकिंग मदर को बोलते हैं। तो आई इवन यूज टू टीस माय मदर, अरे आप बोलते क्यों नहीं हो सो हम, रोड क्रॉस करने के टाइम भी सो हम बोलो। तो शी यूज टू चाइड मी, अरे रोड क्रॉस करने नहीं बोलेगा तो कोई गाड़ी आके मार देगा मुझे। तो आई यूज टू टीस हर, बट आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ दैट स्टेटमेंट। एंड देन माय इम्प्लॉयर्स वाज यू नो when I was the youngest fellow of 5 sons and 1 sister. So I was the youngest and I was just 6-7 years, and she used to read a lot of adhyatmic text, you know, about all the saints. I used to just sleep in her lap basically, just, and this went on into my subconscious mind. That is what is wonderful. I was not listening, but during sleep it has gone subconscious mind, and all these stories I remember even now. That is the beauty of it. All those saints' ka life histories. So this has helped me a lot, you know, becoming religious. आप कह सकते हैं, which helped me in my later life. Then that is you know spirituality ka first lessons जो है, it was very useful in my life. Then college days में I got associated with a mission, with a religious mission where they were teaching Bhagavad Gita. That was another great blessing. तो Bhagavad Gita और spirituality के काफी connections हैं. Prayer actually is a you know, it is antyatmik shuddhata bolte hai na, it is for purification of the mind. Initially bachpan mein to prayer aise hi hota hai ki mujhe acche marks milna hai, I want to get good marks. It starts like that, you know, and then prayer starts with the chanting of you know om. Om jo syllable hai,
0: right sir,
1: teen akshar ka a u n m, and that really gives you the solace and you know peace in the mind. And something surprising when we go to temple is we see the God standing in front of him and we close our eyes. Why? We have come all the way to see the temple.
0: Correct.
1: Hum apne aankh ko aankh band kar dete hain. That is because we reflect God in our own conscience. We pray for the well-being of the family. It starts with ourselves, then family, then community. It goes on expanding. तो बचपन में सिर्फ हमको हमको बोला जाता है अरे आंख बंद कर लो। We used to even little bit slightly आंख सड़क खोल के देखते हैं क्या होता है देखें। So, but later on when we start studying or knowing about God, spirituality, the spiritual texts like Bhagavad Gita, and we then we get to know what is the depth of the whole thing. See hamare body, hamare jism hote hain, mind hote hain, intellect hote hain, buddhi, man buddhi. Then we are when we chant om sincerely and you know closing our eyes, you actually reflect God in your own antaratma.
0: Right sir. यहाँ पर एक और बात भी आ जाती है सर, आप बोल रहे थे तो मेरे को ख्याल आया, आपने बोला मंदिर में जाके हम आंखें बंद कर लेते हैं और वी विश फॉर द वेल बीइंग ऑफ एवरीबॉडी. पर मुझे लगता है मंदिर में हम गए हैं, ऐसा ही मेरे दिल में विचार आया, थॉट आया सर, मंदिर गए हैं, भगवान के दर्शन करने गए हैं, तो हम आंखें खोल के उनका दर्शन क्यों नहीं करते, हम आंखें क्यों बंद कर लेते हैं, जबकि हम गए वहां पर उनका दर्शन करने के लिए ही तो हैं. तो हमें भर भर के उनको देखना चाहिए, उनकी मूर्ति को प्यार से सराहना चाहिए कि क्या है, कैसे हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितने पावरफुल हैं. वी शुड कीप ऑन डूइंग दैट. Instead, we just close our eyes. So, मुझे समझ में नहीं आया.
1: That is the beauty of the whole thing. You know, God is guiding you to look at yourself. तुम अपने अंतरात्मा को देखें.
0: अरे तो सर वो घर पे भी तो आके कर सकते हैं, उधर ही क्यों?
1: क्योंकि बाहर जो है, बाहर जो yes, you are looking at God. You are looking at God. And आपने देख लिया काफी. Then what is next? You know. Then you can get distracted. With the surroundings, you know.
0: Okay.
1: जो जो आजू बाजू में को इधर उधर हिल रहे हैं, चल रहे हैं, तो by closing your eyes, you are able to concentrate on the God and your prayers, and then slowly you are looking inwards.
0: All right.
1: क्योंकि बाहर की दुनिया इतना हलचल मची हुई है, तो अब अंदर की देख. That is what they and all the scriptures say, you know. Look at inside. Turn your direction inside. Because बाहर की दुनिया तो materialistic है. It is not giving you full solace. Yes, it gives you more desires rather than, you know. And then मन अशांत हो जाते हैं. अरे हमको वो चाहिए, ये चाहिए. Whereas when you start looking at inside, that peace, especially when you chant Om. We generally have meditation session in the morning. So, उसमें वही होता है कि आप chanting करो, Om Om reverberate करो, chant loudly, closing your eyes. So this is what gives you solace, peace of mind.
0: All right.
1: Ultimately, we want to be happy, is it not? We want
0: Absolutely.
1: To be happy.
0: Absolutely.
1: Yes. Happiness is not outside. That's what the scriptures say. Happiness is inside.
0: Okay, I get it.
1: Yeah.
0: तो दोस्तों जाहिर से बात है हमको मंदिर में जाकर आंख बंद करनी इसलिए होती है कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो भी ईश्वर का स्वरूप हमने देखा वो हमारी आंखों में बसा रहे. तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक भजन का आनंद लें, फिर वापस आते हैं एवी सर के पास.